सुप्रभात। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलो हर्ट्स के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी

0: ने कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

संत ज्ञानी कहते हैं कि अपने आप को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है किसी और को प्रसन्न करने का प्रयास करना। इसलिए प्रसन्नता का चंदन औरों के माथे पर लगाइए, आपकी उंगलियां स्वयं महक उठेंगी।

ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

शक्ति का तेज पुंज प्राणों का संचार करता है, मन को आलोकित करता है। आलोकित प्राणों के साथ श्वास श्वास मुखरित होती है और अंतःस्थल के इस उद्घोष के समक्ष समस्त अंधकार नतमस्तक हो जाता है। सत्य, प्रेम, दया और करुणा जैसे सद्गुणों की विजय होती है। इसलिए सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करें, उस शक्ति पुंज की वंदना करें।

जीवन नश्वर है, सबसे जुड़ा रहकर भी वो सबसे अलग है, विशिष्ट है। जैसे जैसे इस विशेषता का ज्ञान होता है, अंतर्मन शक्तिवान ऊर्जावान होता जाता है, और ये ज्ञान ईश्वर की कृपा से ही संभव है, ईश्वर की भक्ति से ही संभव है।

शक्ति के विभिन्न रूप हैं। हर रूप में सरलता और आनंद के दर्शन होते हैं। पक्षियों के कलरव में, दिनकर की मुस्कान में, हवा के झोंके से झूमती हर शाख में, हर प्राणी के अंतर में बसे प्रकाश के निर्झर में शक्ति ही है, ईश्वर ही है। आइए इसी शक्ति में ईश्वर के दर्शन करें, ईश्वर को प्रणाम करें।

0: वंदना में आज आपने समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण रचना के पश्चात अनूप जलोटा, सुमन कल्याणपुर, हरिओम शरण और साथियों की गाई कुछ भक्ति रचनाएं सुनी। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रीराम चरितमानस गान, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन, विषय है अपनी जड़ें, आलेख भारती परिमल।
1: अक्सर देखा जाता है कि जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होंगी वो पेड़ भी उतनी ही मजबूती के साथ टिका रहता है। तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते जो अपनी जड़ों को मजबूत रखते हैं। जड़ों का मजबूत होना इस बात का परिचायक है कि उसके संस्कारों ने उसे सींचा है, तभी जड़ें इतनी मजबूत हैं। मानव की जड़ों को समझना हो तो हमें उसके संस्कारों को देखना होगा, तभी हम उसके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जड़ों का आशय अतीत से भी है। वर्तमान की कोख में अतीत का बीज होता है, भविष्य की नींव भी अतीत से ही तैयार होती है। जो अपना अतीत भूल जाता है वो आगे चलकर सब कुछ भूल जाता है। अतीत की गलतियां ही मानव को तराशती हैं। इतिहास हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम उन गलतियों से सबक सीख सकें जो हमारे पूर्वजों ने की थीं। उन गलतियों को न दोहराना ही हमारा पहला कर्तव्य है। जो जड़ों से दूर होता है वो अपने भविष्य की बुनियाद को ही तोड़ देता है। हमारे बीच ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त की। इसके बाद भी वो अपने पुराने दिनों को

0: नहीं भूल पाए। एक घटना याद आती है, एक बहुत बड़ी प्रेस के मालिक अपनी बहुत बड़ी प्रिंटर मशीन के पास एक पुरानी प्रिंटर मशीन को रखा करते थे। लोगों ने कई बार इसका कारण पूछा, वे हमेशा टाल देते। एक बार उनकी संतानों ने उस मशीन को हटवा दिया, इससे वे काफी नाराज हुए। बच्चों को डांटते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस व्यवसाय की शुरुआत इसी मशीन से की थी, इसी मशीन से ही मैं आज बड़ी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक बन पाया हूं। मैं अपने अतीत को याद रखते हुए ही सफलता के इस मुकाम पर पहुंचा हूं। यह मशीन मुझे अपने संघर्ष के दिनों की याद दिलाती है, मेरी कोमल भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। आज इस व्यवसाय में मुझे बड़ा घाटा भी हो जाए तो यह मशीन मुझे संबल देगी। मुझे विश्वास है कि मैं इसी मशीन से फिर वही मुकाम हासिल कर लूंगा। ये मशीन मुझे कभी दुखी होने नहीं देगी। तब बच्चों ने समझा कि आखिर ये पुरानी मशीन इस नई मशीन के पास क्यों रखी है। जीवन में भी यही होता है, अपनी जड़ों से दूर होने वाले दुखी होते हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाती हैं वो कमजोर होकर एक दिन उखड़ जाता है। मजबूत जड़ों के वृक्ष कभी धराशायी नहीं होते। सुनहरे भविष्य की ओर तभी बढ़ा जा सकता है जब हम अतीत को याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक उस नाविक की तरह जो वर्तमान के पानी में रहते हुए पतवार चलाता है। उसकी नजरें अतीत की ओर टिकी होती हैं, पर वो भविष्य की ओर बढ़ता रहता है। बरसों बाद यदि कोई अपनी मातृभूमि की ओर लौटता है तो उस क्षेत्र की माटी का एक एक कण उसे अपनी ओर बुलाता है। इंसान भावनाओं में बहकर उस माटी से जुड़ जाना चाहता है, वो उसी माटी में रम जाना चाहता है। इसे ही कहते हैं जड़ों से जुड़ाव। असल में अपनी धरती, अपनी माटी की खुशबू, अपनी बोली, अपना पहनावा, ये सब तत्व मिलकर जड़ का निर्माण करते हैं। ये सब हर किसी के अंदर रचा बसा होता है और सारी दुनिया एक तरफ और अपनी जड़ से जुड़े रहने का एहसास एक तरफ। लेकिन जिस प्रकार अपनी जड़ों से जुड़े होने की खुशी अतुलनीय है, ठीक उसी प्रकार उनसे दूर होने का गम भी। हमारी जड़ें लगभग पेड़ पौधों की जड़ों जैसी ही होती हैं। जिस तरह पेड़ पौधों की जड़ें न दिखाई देते हुए भी उनका अभिन्न एवं महत्वपूर्ण अंग होती हैं, उसी तरह इंसान की जड़ें भी हमेशा उसके अंदर ही विद्यमान होती हैं। अंतर केवल इतना है कि पेड़ पौधे चाहे आसमान की बुलंदियों को क्यों न छू लें, वे सदैव अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। इसे एक तरह से आप उनके लिए प्रकृति का वरदान कह सकते हैं, लेकिन मनुष्य शायद प्रकृति के इस वरदान से वंचित रह गया। इस संसार में कभी पेट की खातिर या किन्हीं और कारणों से उसे अपनी जड़ों से दूर होना पड़ता है। यकीन माने ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एकाएक अपनी जड़ों से दूर होने पर इस चीज का एहसास कर पाते हैं। अधिकतर या तो सुख सुविधाओं की चकाचौंध में खो जाते हैं या फिर कुछ इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनके पास ये सब सोचने का वक्त ही नहीं होता। लेकिन इस दुनिया की भाग दौड़ में इंसान कितना भी क्यों ना भाग ले, देर सबेर उसे अपनी जड़ें ही याद आती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कृषि चर्चा, विषय है सोयाबीन में बीज उपचार एवं टीकाकरण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रतनदीप सोनी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज की कृषि चर्चा में हम आपसे बात करेंगे सोयाबीन के बीजोपचार और टीकाकरण के संबंध में। विभिन्न बीमारियों से सोयाबीन के बचाव के हेतु बीजोपचार अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा रोग ग्रसित पौधों के मरने से उपयुक्त पौध संख्या में कमी एवं उत्पादन में हानि होती है। अतः सभी किसान भाइयों की सलाह है कि बोनी करने के पहले सोयाबीन बीज को अनुशंसित पूर्व मिश्रित फफूंदनाशक पेन फ्लू पेन फेन तथा ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 38 FS के 1 मिलीलीटर मात्रा 1 किलोग्राम बीज के साथ उपचारित कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो दूसरा है कार्बोक्सिन 37.5% तथा थायरम 37.5% का जो मिश्रण आता है 3 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ उपचारित कर सकते हैं, अथवा

0: थायरम 2 ग्राम एवं कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ, और यदि जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा वेरिडी उपलब्ध है तो 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में पीला मोज़ेक बीमारी तथा तना मक्खी का प्रकोप भी देखने को आता है, ऐसे क्षेत्रों में किसान भाई सजग रहें और अनुशंसित मात्रा में फफूंदनाशक से बीज उपचार करने के पश्चात, जो हमने पहले बताया है, कीटनाशक थायोमिथॉक्सम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के साथ, अथवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1.25 माने 1.25 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के साथ बीज उपचार करने की अनुशंसा की जाती है, ताकि मोज़ेक रोग और फल तना मक्खी कीट के प्रकोप से फसल को बचाया जा सके प्रारंभिक तौर पर। जो उपरोक्त हमने आपसे अनुशंसित कवकनाशियों और उपचारित बीज को छाया में सुखाने के पश्चात जैविक खाद का यदि हम से उपचारित करना चाहते हैं, जैसे ब्रेडी राइजोबियम कल्चर तथा PSV कल्चर दोनों को, यदि पहले से इनका उपचार किया गया है, किया जाता रहा है, तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ इसका टीकाकरण करना है और तुरंत बोनी के हित उपयोग में लाना है। यदि नई ज़मीन में हम कर रहे हैं तो सोयाबीन की खेती करने की स्थिति में हम जैविक खाद की मात्रा जो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करते हैं राइजोम कल्चर PSV कल्चर, उसकी जगह में 10 से 15 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए, ताकि राइजोबियम का इनाकुलेशन अच्छे ढंग से हो सके और वातावरण के नत्रजन और भूमि में उपलब्ध फास्फोरस तत्व का अवशोषण पौधों के हित में अधिक से अधिक हो सके। कृषक गण भी से ध्यान रखें कि क्रमानुसार फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक से बीजोपचार के पश्चात ही जैविक कल्चर खाद का द्वारा टीकाकरण करना चाहिए। साथ ही कल्चर व कवकनाशियों को एक साथ मिलाकर कभी भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए, जबकि जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा वेरिडी का उपयोग करने की स्थिति में अनुशंसित कीटनाशक से बीजोपचार पश्चात तीनों जैविक उत्पाद राइजोबियम कल्चर एवं PSV कल्चर तथा ट्राइकोडर्मा वेरिडी को मिलाकर बीज का टीकाकरण कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से यदि हम व्यवस्थित ढंग से क्रमानुसार सोयाबीन के बीज का उपचार करते हैं तो पौधों में लगने वाली फफूंद जनित बीमारियां और बीज में जो कीट का प्रकोप होता है, विषाणुओं का प्रकोप होता है, उनसे अब फसलों को बचाया जा सकता है। यह विशेष ध्यान देने की बात है, यदि इनमें चूक होती है तो दिक्कत आ सकती है और हमारी फसल रोगों से और कीटों के प्रकोपों से प्रभावित हो सकती है, हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति ना आने पाए इसलिए हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों। और जहाँ तक बीज की बात है, सोयाबीन की, बीज का अंकुरण पहले कर लेना चाहिए, परीक्षण हो जाए, ताकि कम से कम 100 दानों में 70 दाने उगते हों। ऐसे बीज का प्रयोग अनुशंसित बीज दर प्रति हेक्टर के हिसाब से या प्रति एकड़ के हिसाब से काम में बुवाई के लिए लाना चाहिए। और जो भी हम बीज लें, अच्छा होगा कि बीज उत्पादक संस्थाओं से लिया गया हो, बीज प्रमाणित हो और इस बीज को उचित फफूंदनाशी रसायन से उपचारित किया गया हो। आज की कृषि चर्चा में किसान भाइयों, बस इतना ही।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था वित्तीय निरीक्षणं संसदीय विशेषाधिकाराः विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविधपक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे।

0: निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको जानकारी दे दें आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:20 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2005 की जानकारी मध्य प्रदेश बीवी जी राम जी योजना के उपायुक्त श्री मनोज सिंह से। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस पर चर्चा प्रधानाध्यापक एवं वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत शर्मा से और साथ ही साथ भारत भवन में आयोजित गायन पर्व की जानकारी भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रेम शंकर शुक्ल से। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा होगा सुबह 8:30 पर। गांधी चर्चा आप सुन सकते हैं 9:15 पर। फिल्म संगीत का समय है 9:30। 10 बजे आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सजीव फोरन कार्यक्रम आपसे की बात करें। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला होगा, इसमें सुनिए पद्मावती शालिग्राम का गायन। राग होगा देसी। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।

12 बजे आपके फरमाइश कार्यक्रम होगा। 12:30 पर होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक हंसना मनाहे की दूसरी कड़ी। दोपहर 1 बजे महिला संसार, 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत, 1:45 पर होगा सुगम संगीत कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान रहेगा। फिल्म संगीत का समय है दोपहर 2 बजे, 2:30 पर आपके फरमाइश कार्यक्रम होगा। संध्याकालीन सभा में शाम 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा। युववाणी प्रस्तुति होगी छतरपुर केंद्र की। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे। पुनः फिल्म संगीत 6:30 पर आप सुन सकते हैं। किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा शाम 7:21 पर। रात 8 बजे आप सुनेंगे सुर्खियों में। 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिए।

खेल जगत, ये कार्यक्रम होगा रात 9:30 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम के खिलाड़ी अंश बहोत्रा से बातचीत। रात 9:45 पर फिल्म संगीत आप सुनेंगे और रात 10 क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। समय याद रखिए, रात 10:00।

ये थे आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में कहा, भारत विश्व की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था। स्कूल चले अभियान के दौरान ही संदीप ने विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गो से शुरू। और प्रदेश में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, आज हरदा नर्मदापुरम समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की

0: सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आज साझेदारी को और भी गतिशील तथा प्रगाढ़ बनाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा,
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: वहीं जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि सहयोग के कई क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। इस अवसर पर दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में इन दिनों स्कूल चले अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल अलग अलग विभागों की हुई समीक्षा बैठक में इस पर जोर दिया। डॉ. यादव ने कहा कि सांदीपनी विद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा उत्कृष्ट नवाचार है। स्कूल शिक्षा विभाग इसकी राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग के लिए कार्ययोजना तैयार करे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों में धर्मशाला, सराय, अन्य क्षेत्र, प्याऊ, पेयजल टंकी, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन निर्माण के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल मंत्रालय में विभिन्न प्रासंगिक विषयों पर विभागों की प्रगति और आगामी कार्ययोजना के संबंध में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल को शासन द्वारा दी गई जमीन की भेल के लिए वर्तमान में अनुपयोगी भूमि उनसे वापस लेने के प्रयास किए जाएं। प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में नर्मदा समग्र की बैठक में अपर मुख्य सचिव ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मां नर्मदा की भव्य आरती, नृत्य गायन, प्रदर्शनी, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। मुख्यमंत्री ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि अमरकंटक में जैव विविध प्रबंधन संस्थान और नर्मदा कोष पोर्टल भी बनाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देश पर चर्चा होगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो चुकी है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र

के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 6 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन होकर नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई होगी। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की छटनी और 16 जुलाई तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल समेत 11 जिलों में कल से रुक रुक कर तेज बारिश हुई। सतना और झाबुआ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। सतना में बालिका स्कूल परिसर में पेड़ गिरने से 2 युवतियां घायल हो गई हैं। दमोह में लगातार बारिश होने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। इंदौर में भी रात से कई क्षेत्रों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुना, बालाघाट समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की भी आशंका है। इंग्लैंड आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन के केनिंगटन ओवल में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन ही बना सका। रविवार को लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलस स्टेडियम में कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले के बमन गांव आखई में कल विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBGRAMJI योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। आगर मालवा जिला पुलिस को ई विवेचना प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले के सभी थाना क्षेत्रों के 153 विवेचकों को टैबलेट दिए गए। अशोकनगर जिले में सभी शासकीय विभाग और संस्थाएं अपने अपने स्तर पर नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता अभियान और गतिविधियां संचालित करेंगी। ये निर्देश कल कलेक्टर ने एक बैठक में दिए। भोपाल ने नगर निगम और फायर विभाग ने कल एमपी नगर स्थित 2 कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की। धार जिले में तेजी से विकसित हो रहे देश के महत्वाकांक्षी पीएम मित्रा पार्क का इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल दौरा किया। इंदौर संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने कल झाबुआ के विभिन्न गांवों का सघन भ्रमण कर कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुहानी सी भीगी सी सुबह में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल शिखा जैन के साथ।

दोस्तों, जो फ़कीरी सा ताज रखते हैं वो ठोकरों में भी ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन आज के सफर में। दोस्तों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कथन था कि मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते। इस बात का अर्थ ये है कि मन का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर मन में विश्वास और हौसला हो तो कोई परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, मैदान हो या जिंदगी की जंग,

केवल ताकत से नहीं बल्कि टिके रहने के हौसलों से जीती जाती है। आज के समय में हम देखते हैं कि हमारे बच्चे और युवा भी मोबाइल में आने वाले रील के समय की तरह शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं। वे कामयाबी या मेहनत का कोई शॉर्टकट ढूंढना चाहते हैं। दुनिया की तमाम सारी शॉर्टकट चीज़ें हमें मानसिक तौर पर मजबूत नहीं होने देती। हम जल्दी गिवअप करना सीख जाते हैं या हार से झल्ला से जाते हैं। जीवन में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर जंग को जीता जाए, बल्कि ज़रूरी तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए।

मानसिक तौर पर मजबूत नहीं होने देती। हम जल्दी गिव अप करना सीख जाते हैं या हार से झल्ला से जाते हैं। जीवन में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर जंग को जीता जाए, बल्कि ज़रूरी तो ये है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। इसलिए हार से घबराइए नहीं दोस्तों, हर हार एक कदम हमें जीत की ओर ले जा रही होती है। बस आप अपनी कोशिश जारी रखिएगा और हम हर रोज़ आपको ले जा रहे होते हैं कुछ रोचक जानकारियों और स्वस्थ मनोरंजन की तरफ।

इटला थे बलखाते मानसून की दस्तक हो या पल पल रंग बदलते मौसम का हाल सब कुछ लेकर आता है नमस्कार भोपाल। आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम के रंगों को। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर। जानकारी देंगे आपको भारत भवन में आयोजित गायन पर्व की और चर्चा होगी विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2005 की। पर फिलहाल कार्यक्रम में वक्त समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का। सबसे पहली खबर में मानसून प्रदेश के 99% हिस्से तक पहुंचा। आज 44 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। मानसून ने गुरुवार को प्रदेश के 99% हिस्से को कवर कर लिया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक नीमच जिले का ऊपरी हिस्सा छोड़कर मानसून प्रदेश के बाकी हिस्सों में पहुंच चुका है। इस बीच भोपाल शाम 6 बजे तक आधा इंच बारिश हुई। इसके कारण सिर्फ 2 घंटे में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। इसके बाद बीते 24 घंटे में प्रदेश के 16 शहर कस्बों में भारी बारिश दर्ज की गई। और अमरनाथ यात्रा आज से हर 2 किलोमीटर पर ऑक्सीजन बूथ बने। आज से अगले 57 दिन ग्रेटर हिमालय की ऊंची वादियों में बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजेंगे। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिव

0: शिवलिंग के दर्शन करेंगे। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती बेस कैंप से पहले जत्थे को बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना किया। 4,822 श्रद्धालुओं का जत्था 259 वाहनों के सुरक्षा घेरे में निकला। और क्रूड 2-3 माह सस्ता रहे तो घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रणदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2-3 महीने तक कम रही तो पेट्रोल डीजल के दाम घटाने पर विचार किया जा सकता है। और इंजीनियरिंग पहले राउंड की मेरिट लिस्ट जारी, कॉलेजों का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, दूसरे में 12वीं के आधार पर भी होंगे प्रवेश। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए काउंसलिंग का दौर जारी है। तकनीकी शिक्षा संचालनालय में प्रवेश के लिए पहले राउंड की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसी मेरिट के आधार पर 3 जुलाई को कॉलेजों का सीट अलॉटमेंट जारी किया जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए 7 जुलाई का समय मिलेगा। और अब भोपाल बनेगा सिटी ऑफ लिटरेचर, वैश्विक मंच पर बढ़ेगा साहित्यिक मान। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और झीलों के लिए मशहूर भोपाल अब दुनिया भर के पुस्तक प्रेमियों और साहित्यकारों का नया ठिकाना बनने जा रहा है। शहर जल्द ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दर्ज कराने की दहलीज पर है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए MP पर्यटन विभाग ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के सहयोग से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के रोड मैप तैयार करने पर मंथन कर चुका है। और डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज बढ़ रहे हैं और बचने के लिए आपको ही जागरूक रहना होगा। समाचार पत्रों से फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम में मनोरंजन और मुलाकातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
1: मैं हूँ पूर्ण चंद वडाली।
2: मैं हूँ प्यारे लाल वडाली।
1: आप सुन रहे हो कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार भोपाल।
0: आपने अपने रेडियो सेट मोबाइल और DTH पर ट्यून इन किया है आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। आइए मुलाकात करते हैं हमारे पहले खास मेहमान से। दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। आज का दिन पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, आज की चर्चा हमसे कर रहे हैं वरिष्ठ प्राध्यापक और वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत शर्मा।
3: देखिये धीरे धीरे अगर आप देखें अपने आसपास तो हम हर तरफ से पॉलीथीन से घिरे हुए हैं। पहले तो हम इसको यूज करते थे सिर्फ सामान लाने ले जाने में, लेकिन अब हम चाय लेने जाते हैं तो चाय भी पॉलीथीन में आती है। हम कोई सब्जी और वो खरीदते हैं मार्केट से तो वो भी वो गर्म उसको पॉलीथीन में डाल देता है। इसी तरह से चाय और वो भी जो कप होता है उसमें अंदर लाइनिंग में भी माइक्रो प्लास्टिक्स लगी होती है। तो ये जो पॉलीथीन है ये सिंगल यूज प्लास्टिक्स होती है। एक्चुअली में पॉलीथीन ये 7 तरह की होती है और उसमें से जो एक ये वाली है वो पॉलीइथीन एक पॉलीमर है, राइट, और ये बनता है पेट्रोल से। सो पेट्रोल का एक बाय प्रोडक्ट है इथिलीन, उसी से पॉलीइथिलीन बनता है। और तो ये इन्वायरमेंट के लिए जितना हानिकारक है उतना ही इसलिए भी हानिकारक है क्योंकि इसकी उत्पत्ति एक फ्यूल की तरह से उससे हो रही है ना। अब जो ये पॉलीथीन है इनका जो शेल्फ लाइफ है जो डिग्रेडेबल लाइफ है वो बहुत लंबी है, राइट। सो कई बार तो कई तरह के जो पॉलीथीन्स होती हैं वो और जो ये मटेरियल रहता है प्लास्टिक मटेरियल इसको डिग्रेड होने में सदियों भी लग सकती हैं, कई 100 साल भी लग सकते हैं। इसी तरह से पॉलीथीन एक चीज़ है, फिर हम पैकेजिंग मटेरियल में यूज़ करते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो हम पान गुटखा और उसको हम छोटे सैशे में रखते हैं, शैम्पू के सैशे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स पॉलीथीन्स में आती हैं मटेरियल में, राइट, जिसको डिग्रेड करना बहुत मुश्किल है। अब इसको डिग्रेड करने के 3 मेन प्रोसेसेस हैं। एक है कि हम उसको केमिकली प्रोसेस करें, लेकिन जब भी हम केमिकल यूज़ करते हैं एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, उसमें एनर्जी बहुत लगता है और साथ में जो केमिकल प्रोसेस है वो अभी बहुत लिमिटेड स्केल पर ही हो सकता है। उसमें क्या होगा कि जो पॉलीथीन है उसको हम वास्तव में जो पॉलीमर्स हैं उसको वास्तव में मोनोमर्स में ले आएँ और फिर से रीयूज कर पाएँ। दूसरा तरह है कि हम जो भी प्लास्टिक पॉलीथीन्स हैं इसको हम ब्रेक करें बाय मैकेनिकल वे, उसमें भी हम उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ एक चीज़ से कन्वर्ट करके दूसरा बना सकते। जैसे कि आपने प्लास्टिक को ब्रेक किया और उससे हमने कारपेट बना लिया, लेकिन वो एक या दो बार ही कर पाएंगे, हमेशा के लिए नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि हम एंजाइम का यूज

0: सकते हैं और वो नेचुरल तरीके से पॉलीथिन को डिग्रेड कर सकता है, लेकिन उसकी क्षमता बहुत कम है अभी। और दुनिया की रिसर्च इसी तरफ चल रही है कि हम पॉलीथिन भी ऐसी बनाए, ये मटेरियल ऐसा बनाए, पैकेजिंग मटेरियल जिसको हम आराम से डिग्रेड कर पाए, वो इकोनॉमिकल भी हो, क्योंकि इसको यूज करने का रीजन ही यही है क्योंकि बहुत सस्ता है। इस समय सिर्फ इंडिया में शायद हम 400 मिलियन टन ये हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। तो जब ये इन्वायरमेंट में जाता है तो सबसे ज्यादा ये जाता है सॉयल में, और जब ये सॉयल में जाता है तो बेसिकली जो सूरज की किरणें हैं उससे ये थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन होता है, जिससे कि वो लीचिंग होती है, और लीचिंग जब होती है तो वो सॉयल में एक लेयर बना देता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, जिससे कि जो नाइट्रस ऑक्साइड और ऐसी गैसेज हैं जो कि और ज्यादा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई 100 गुना ज्यादा इन्वायरमेंट को गर्म करने के लिए, जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग चल रही है उसमें, फिर ये सॉयल की फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है, फिर सॉयल से ये पानी में जाता है, पानी से फिर ये इंसान और डिफरेंट जो जीव है उन सबके अंदर आए। अच्छा, दूसरा तरीका ये, इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक तो तरीका है कि हम इसको ठीक से मैनेज करें, वेस्ट को हम उसको ठीक से कलेक्ट करें, पॉलीथिन और प्लास्टिक जो अलग अलग मटेरियल है उसको सेग्रीगेट करें, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करें, राइट। लेकिन इंडिया में ऐसा हो नहीं पा रहा है, बाहर के देशों में होता है। सो ये वाला जो मटेरियल है, फिर जब हम इसको ठीक से वो नहीं कर पा रहे हैं तो ये जब पानी में जाएगा, लीचिंग होगा, तो ये जो इन्वायरमेंटल जो एक्वेटिक लाइफ है उनको तो नहीं पता मछली को, तो वो इसको गल्फ करते हैं खाने की चीज समझ के, और वो इतना खा लेते हैं कि उनके पेट में जगह ही नहीं बचती है, राइट। तो वो खाना की जगह नहीं बचती, इसी तरह से उनको चोकिंग हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी इनके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी हैं। दूसरा, जब हम इसको जलाते हैं, क्योंकि ये एक आसान तरीका है, जो भी गाँव में और उसमें जिनको नहीं पता, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस है ना, तो उनको तो यही है कि दिन भर में उन्होंने जितना भी वो कप्स में चाय बेची या जो भी प्लास्टिक पन्नी इकट्ठी हुई उनको एक तरफ साइड में लिया और शाम को जला दिया। उससे जो गैसेस पैदा होती हैं वो अपने आप में बहुत हानिकारक हैं, क्योंकि वो कैंसर कॉज कर सकती हैं, हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है उसको खराब कर सकती हैं, इम्यून डिसऑर्डर्स कर सकती हैं, कोलेट्रल कैंसर कर सकती हैं, और भी खतरनाक ये है कि वो जो हमारे शरीर में जो फैट है वो उसे जुड़ जाती है, तो उससे क्या है कि वो फैट में एक्युमुलेट होती रहती है और बॉडी में जमनी शुरू हो जाती है।
1: कई सारे जो धरती पर जीव है, गाय है या फिर और भी जो शाकाहारी जीव है, इनके अंदर भी हम काफी सारा प्लास्टिक देख रहे हैं और काफी सारे जीवों की मृत्यु भी इस प्लास्टिक की वजह से हो रही है, और जाने अनजाने हम भी काफी सारा प्लास्टिक जो है वो ईट कर रहे हैं। तो हम इस चीज से बच पाए, इसके लिए हमें किस स्तर पर अवेयर होने की जरूरत है?
0: ये तो मेनली एक गवर्नमेंट का ही डिसीजन हो सकता है कि हम प्लास्टिक को कैसे यूज करें, तो कैसे मैनेज करें। अब जैसे कि जापान में अगर हम देखें तो वहां पर जैसे डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक होते हैं, 7 तरह के अलग अलग प्लास्टिक होते हैं, उसको उसी तरह से सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग दिन पे इकट्ठे किया जाता है। मान लीजिए हमने जैसे इंडिया में सिर्फ प्लास्टिक और जो अदर ज्वलनशील या खाद्य वो है उसको अलग कर भी लिया, वेस्ट को, कचरे को, तो भी उसमें कई तरह के प्लास्टिक मिक्स हैं। अगर हम उसको भी अलग अलग नहीं करेंगे तो उसको भी हम रिसाइकल नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसको यूज कर भी रहे हैं तो हम इसको प्रॉपरली रिसाइकल करने लायक बनाएं, पहले तो ये रिसर्च लेवल का भी क्वेश्चन है और दूसरा मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन है। और दूसरा, इससे बेहतर वो हो सकता है कि हम वापस अपने पुराने तरीकों पे जाएं, उनको मोर इकोनॉमिकल बनाएं, प्लास्टिक्स को पूरी तरह से खत्म कर दें, शायद पूरी तरह ना भी कर पाए, क्योंकि प्लास्टिक सिर्फ वही नहीं है जो कि हम पॉलीथीन और उसकी बात कर रहे हैं, उसके अलावा 60% प्लास्टिक उसमें भी यूज होती है, जैसे हमारे कार में, घर में, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मटेरियल्स में, शायद वो, और वो भी उतनी ही हानिकारक है। मेरा सजेशन यही है कि आप सब लोग बिना सोचे समझे पॉलीथिन का यूज करते हैं। अगर हम सिर्फ एक घर से थैला भी ले जाएं तो हम काफी तरह से, मतलब एटलीस्ट 8 या 10 सब्जी अगर हम खरीदे तो 8-10 पॉलीथिन तो अवॉइड कर ही दे, तो उससे तुम्हारा पर कैपिटा पॉलीथिन कंजम्पशन है ना, वो कम होगा, और तरह से हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। और साथ में जलाना और ऐसे ही फेंक देना वो तो और भी गलत है।
1: जी, आज के दिन के अवसर पर हमसे बात करने के लिए और प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट को हमारे सभी लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है।
0: धन्यवाद आप सबको। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने डेली यूज में प्लास्टिक का यूज कम से कम करें, तभी हमारा जो आसपास का वातावरण है वो साफ भी होगा। धन्यवाद।
2: अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर अभी आप सुन रहे थे प्राध्यापक और वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत शर्मा को। दोस्तों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, पर इनका लगातार बरसना बड़े बड़े कटाव का और बहाव का कारण बन जाता है। उसी प्रकार हमारे अकेले के प्रयास भले ही छोटे हों, लेकिन इनका निरंतर जारी रहना बड़े बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल और हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 7:40:30 और कार्यक्रम में वक्त हुआ है हमारे अगले मेहमान से मुलाकात का। और आज का कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आप सुन रहे हैं शिखा जैन के साथ। दोस्तों 1 जुलाई से मनरेगा अब विकसित भारत जी राम जी हो गया है। अब श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की बजाय 125 दिन तक रोजगार मिल सकेगा। इस विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2005 की अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं मध्य प्रदेश वीबी जी राम जी योजना के उपायुक्त श्री मनोज सिंह जी।
1: यह मैम भारत सरकार की बहुत ही अनूठी स्कीम है जिसमें कि मनरेगा से नाम परिवर्तित करके बीबीजी राम जी किया गया है। इसमें कुछ बहुत सारे नए फीचर्स जोड़े गए हैं। पहला फीचर तो मैम यही है कि लोगों को पहले 100 दिन की मजदूरी मिलती थी, अब 125 दिन की मजदूरी मिलेगी। दूसरा जो प्रमुख डिफरेंस ये है, अंतर ये है कि पहले प्रशासनिक मद में 6% राशि मिलती थी, अब प्रशासनिक मद में 9% राशि मिलेगी। तीसरा मैम इसमें अंतर ये है कि पूरे कार्यों को 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है जिसमें कि 318 कैटेगरी के काम है, जिसमें कि मुख्य रूप से जल संरक्षण के काम है, रोजगार के काम है, इसके बाद अधोसंरचना के काम है। इसके अलावा मैम इसमें एक महत्वपूर्ण फीचर जोड़ा गया है कि अगर कोई चरम मौसम आता है या कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, सुनामी है, बाढ़ है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे कार्य का प्रावधान करके रखा है। एक महत्वपूर्ण अंतर और है इसमें कि इसमें मजदूरी की गारंटी दी गई है, काफी उसके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस उसमें जारी किए गए हैं। इसके अलावा AI का उपयोग है, PM गति शक्ति का उपयोग है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग है, तो बहुत सारे इसमें नए फीचर्स मैम इसमें जोड़े गए हैं जिससे कि इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। एक और महत्वपूर्ण है कि पंचायतों को 2047 तक जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत, उससे बीबीजी राम जी योजना को अलाइन किया गया है। उसमें उनने क्या किया है कि पंचायतों को हम 3 कैटेगरी में उनके आज के डेवलपमेंट पैरामीटर्स के आधार पर डिवाइड करेंगे, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, और उसके हिसाब से हम करेंगे मैम। एक और महत्वपूर्ण फीचर है मैम, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, कृषि प्रधान देश है, इसमें किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनकी हमेशा एक शिकायत रहती थी कि हमको कटाई के लिए, बुआई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो इसके लिए एक्ट में ही प्रावधान किया गया है कि 60 डेज बीबीजी राम जी के कार्य शिथिल रहेंगे और स्टेट गवर्नमेंट

0: गवर्नमेंट इसके लिए नोटिफाई करेगा। तो ये मैम इसके ब्रॉड फीचर्स हैं, और अगर अपन चर्चा करना चाहे तो विस्तार से कर सकते हैं।
1: जानना चाहेंगे इस योजना में एलिजिबिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया पहले था, क्या वही क्राइटेरिया अब भी है?
0: जी मैम, वही क्राइटेरिया है। इसमें बस थोड़ा सा अंतर है ये कि इसमें विशेष जो कैटेगरी है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए जो मजदूर रोजगार कार्ड है वह अलग बना हुआ है। इसके अलावा सोशल ऑडिट भी वर्ष में दो बार कंपलसरी किया गया है, और उसके भी रूल्स जो हैं काफी कठोर बनाए गए हैं। तो ये इसमें फीचर है। मैम,
1: दैनिक भुगतान जो पहले कुछ किया जाता था, क्या उस भुगतान को अब बढ़ाया गया है?
0: मैम, कल से 300 रुपीज अ डे ये मजदूरी निर्धारित हो गई है, और बेरोजगारी भत्ता का भी प्रावधान है कि अगर हम 15 दिन में काम नहीं दे पाए तो 16वें दिन से 0.05% के दर से उसको विलंब प्रतिकर मिलेगा।
1: एक घर से कितने लोग जो है वो इसी योजना में एनरोल्ड हो सकते हैं?
0: मैम, सामान्यतः जो ब्लड से, जो खून से, दत्तक से, या एक रसोई में खाना खाते हैं उनका एक जॉब कार्ड बनता है। मैम, एक राशन कार्ड जिनका है उनका होगा, और वे चाहे तो एक साथ कर लें रोजगार के लिए, या चाहे तो अलग अलग करें, लेकिन हमको साल भर में 125 डेज की मजदूरी हमको उनको देनी है, रोजगार देना है उनको।
1: और अपने घर से कितने डिस्टेंस पर, कितने किलोमीटर की दूरी पर उन्हें ये रोजगार दिया जाएगा?
0: मैम, हमारा तो ये है प्रावधान इसमें कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही देंगे, अधिकतम 5 किलोमीटर के दायरे में देंगे, और 5 किलोमीटर के दायरे से ज्यादा अगर बेचते हैं तो 10% एडिशनल हम उनको देंगे मजदूरी भुगतान।
1: इससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश की इकोनॉमी में ग्रोथ को आप किस तरह से देखते हैं?
0: बहुत ही महत्वपूर्ण आएगा, कंसंट्रेटेड ग्रोथ है, और इस वर्ष भारत सरकार ने 1,50,000 करोड़ इंक्लूडिंग स्टेट शेयर किया है। तो 5 साल की अगर कार्य योजना देखें तो 7,50,000 रुपया भारत सरकार का आवंटन है। मध्य प्रदेश के लिए अभी तक 5,000 करोड़, 5,023.03 करोड़ का आवंटन है। तो इससे तो मैम आएगा, क्योंकि हम फोकस्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं,
1: सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात साथ साथ काम होगा।
0: और इसमें मैम डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं। युग धारा है, पूरा डिजिटल मैप बन रहा है, पानी का, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री का, तो ये सारा का सारा इसमें हम लोगों ने समाहित किया हुआ है।
1: क्या निवेदन करना चाहेंगे आप सुनने वाले सभी उन हमारे मजदूर भाइयों से, या फिर उन लोगों से जो इस योजना में अपीयर होना चाहते हैं?
0: सब लोग अपना जॉब कार्ड, सबका जॉब कार्ड बना हुआ है, अगर नहीं बना है तो मजदूर गारंटी कार्ड जो है अपने जनपद सरपंच जी के पास जाएं, सीओ साहब के पास जाएं, और अधिक से अधिक सरकार की इस स्कीम का लाभ लें, और अपने गाँव का विकास करें, विकसित ग्राम पंचायत बनाए, विकसित, ताकि हमारा जो प्रदेश है विकसित प्रदेश बन सके।
1: जी सर, हमसे बात करने के लिए और इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सारा आकाशवाणी परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2005 की अधिक जानकारी हमें दे रहे थे मध्य प्रदेश वीबी जी राम जी योजना के उपायुक्त श्री मनोज सिंह जी। दोस्तों, निश्चित तौर पर इस तरह की योजनाएं और प्रयास विकसित भारत की राह में मील के पत्थर साबित होंगे, और हम 125 दिन नहीं 365 दिन आपको देते रहेंगे एक स्वस्थ मनोरंजन।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, आप किसी भी सामाजिक, साहित्यिक या सांस्कृतिक संस्था से जुड़े हैं और जनहित में कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसकी जानकारी या सूचना हमें ज़रूर दें, क्योंकि कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के माध्यम से हम पहुंचते हैं लाखों श्रोताओं तक। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हमारे अगले खास मेहमान से मुलाकात का। दोस्तों, राजधानी के भारत भवन में आज से 3 दिवसीय गायन पर्व का आयोजन होने जा रहा है। इस गायन पर्व को पर्व की संज्ञा क्यों दी गई है, इस गायन पर्व की अधिक जानकारी हमें दे रहे हैं भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रेम शंकर शुक्ल।
1: बहुत ही अच्छा सवाल किया, पहले तो इसी को धन्यवाद। दरअसल हमारे देश में गायन एक ऐसी विधा है जो हमारे किसी उत्सव, त्योहार, कहीं भी हो उसमें गायन ही हम गाते हैं। ज्यादातर हमारे घरों की, लोकांचलों की महिलाओं ने एक उनकी अपनी अलग तरह की रागदारी है जिसमें हमारी परंपराएं हैं, संस्कार हैं, रिचुअल्स हैं, तो इसको लेकर पर्व कहना तो भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुकूल ही है। इसके पीछे एक जिसको कहना चाहिए कि मूल बहुत जो लक्ष्य है, तो हमारा जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जो गढ़ है, केंद्र है, सौभाग्य है कि दो हमारे पास है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर घराना जो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है और मैहर घराना, सीनिया घराना भी उसको लोग बोलते हैं। तो जब दो घराने हम बिलोंग करते हैं तो ऐसे में बहुत सारे गायक, वादक, कलाकार जाहिर है इन घरानों से निकले हैं। गायन पर्व अकेला नहीं बल्कि हम लोग कहा जाए कि पूरी तरह से म्यूजिक का करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल भी करते हैं और वोकल भी करते हैं, लेकिन गायन एक ऐसी विधा है कि जो मनुष्य की, मैं इसको कहूँगा कि जब से धरती पर मनुष्य आया और जब तक रहेगा, तो यह विधा गायन उसके कंठ का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। तो एक इतनी मूलगामी विधा है, तो उसको पर्व के रूप में मनाने या उसको अवसर देना, उसके कलाकार को बुलाना, जो कला प्रेमी हैं वो उन कलाकारों को सुन सके, उनसे मिल सके, बातचीत कर सके। और गायन की परंपरा जो हमारे देश की है बहुत बड़ी, तानसेन आखिर क्यों इतने प्रसिद्ध हैं, अपने गायन से ही तो हैं, गायन के सम्राट हम आप सब बोलते हैं। और ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो ध्रुपद की शैली के कलाकार हैं, स्वामी हरिदास जिनके कहते हैं तानसेन भी शिष्य रहे हैं, तो ऐसे एक ध्रुपद की लंबी परंपरा है। ऐसे में गायन को केंद्रीकृत करना एक, मैं कहूंगा कि सुंदर संयोजन कहा जा सकता है। जो आगे आपने सवाल किया कि इसमें जो हम 3 दिन का कर रहे हैं, 3 से 5 जुलाई तक, तो 3 जुलाई को आप देखेंगे कि अभी युवा या युवतम कलाकार कह सकते हैं स्वाति तिवारी हैं जो ग्वालियर घराने को ही बिलोंग करती हैं, और फिर जयपुर घराने को बिलोंग करती हैं अश्विनी भिड़े देश पांडे, तो उनका गायन हमने शुरू के दिन किया। दूसरे दिन हमने किया कि हमारी जो संत परंपरा है, हमारी जो ध्रुपद शैली है या हवेली संगीत है, ऐसे में कौन से कलाकार काम कर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं कि रुचिरा केदार और आस्था गोस्वामी जी को हमने बुलाया है। रुचिरा केदार ग्वालियर घराने की गायकी में निष्णात कलाकार हैं, और जो आस्था गोस्वामी हैं गिरजा देवी की शिष्य रही हैं बनारस।

0: घराने को बिलोंग करती हैं, और जो हवेली संगीत है या भक्ति संगीत है उसके गायन में निष्णात कलाकार हैं। इन दोनों कलाकारों की हमने जुगलबंदी रखा है 4 जुलाई को। 5 जुलाई को जो समापन कर रहे हैं तो आप देखेंगे बनारस घराने के कलाकार हैं ऋषि कुमार जी, तो उनका गायन होगा। जो समापन कर रहे हैं तो जयपुर घराने की ही गायिका है मंजरी असनारे खेलकर, तो उनका गायन होगा। अब ऐसे में आप देखेंगे कि जयपुर घराने और ग्वालियर घराने की घरानेदार गायकी हमको सुनने मिलेगी, और बनारस घराने, तीन घराने आप एक ही 3 दिन के कार्यक्रम में आप देखेंगे कि हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे की और चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जुलाई में आयोजित है पावस का, हमारे देश में ऋतुओं का बहुत महत्व है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कई ऋतुओं के देश में हम रहते हैं, 6 ऋतुएं हमारे देश में मानी गई हैं, तो 6 ऋतुओं के देश में हम रहते हैं। बारिश और बसंत पर बहुत गायन है, डांस है, सब कुछ है। तो पावस का आप इस समय आर्द्रा नक्षत्र चल रहा है, तो आर्द्रा में आर्द्रा बारिश का बहुत बड़ा नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसे में पावस पर गायन पर्व करना, मुझे लगता है कि जो इसको हमारी जो बड़ी एक सुदीर्घ परंपरा है उसके अनुकूल काम करना है, और हमारी संस्कृति का गायन के प्रति जो समादित भाव है, समादर का भाव है, उसको भी एक तरह की प्रणत देना है। और इसमें वरिष्ठ को, युवा को, कलाकारों को हमने बुलाया। भारत की अग्रिम पंक्ति के जो गायक गायिकाएं हैं उनमें से उनका नाम है। तो इससे गायन के क्षेत्र में हिंदुस्तानी संगीत में क्या काम हो रहा है उसका एक जायजा भी मिलता है कि चलो इस तरह का कर रहे हैं। फिर अपन तीन घराने को साथ सुनते हैं तो लगता है देखो बनारस की ये स्टाइल है, उसका ये मिजाज है, जयपुर का ये मिजाज है, ये स्टाइल है, ग्वालियर का ये ढंग है, ये तरीका है, ये लहजा है। तो अब ये सब एक विविधता का हम मतलब अपनी डाइवर्सिटी को कैसे गायन के क्षेत्र में वोकल दुनिया में देखें, यह भी इसका एक प्रयत्न करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम बनाते हैं, और भारत भवन कोई चीज़ यूं ही नहीं कर देता कि मतलब प्रोग्राम के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे प्रोग्राम के पीछे एक दृष्टि होती है जैसा कि हमने आपको बताया, और प्रतिदिन शाम को 7 बजे से शुरू होगा। मैं आकाशवाणी के माध्यम से सभी गायन प्रेमियों को सादर आमंत्रित करता हूँ। ये काफ़ी इस्टेब्लिश सीरीज है, बड़े कलाकार चाहते हैं कि गायन पर में उनको बुलाएं। सब आ चुके हैं कई कलाकार इसमें, बड़े कलाकार जैसे नाम आ रहा है अभी बेगम परवीन सुल्ताना जी को हमने बुलाया था, एक बार हमने उस्ताद राशिद खां साहब को बुलाया था। तो एक बड़ी इस्टेब्लिश है ये हमारी जो सीरीज है, ये एक तरह का अपने आप में अनूठा है कि हम प्रोग्राम करते हैं, कलाकार की आवभगत करते हैं, उसको हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुरूप उसको पत्रम पुष्पम भी देते हैं, यहाँ आए तो उसका सम्मान करें, उससे शिष्टाचार से सभ्यता से पेश आए, ये भी है। लेकिन कला प्रेमियों की इतनी इज्जत है कि हम मतलब नाटक छोड़ के एक दो प्रोग्राम अपवाद कह सकता हूँ, बाकी सब निःशुल्क होता है। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि हमारे शहर के लोग, हमारे प्रदेश के लोग बड़ी बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में आएँ, और इन कलाकारों का भी मनोबल उससे बढ़ता है, और भारत भवन का तो मनोबल बढ़ता ही है। हम दर्शक श्रोता का बहुत सम्मान करते हैं, वो लोग आएँ, उन्हीं के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। को भी धन्यवाद, और आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार।
1: गायन पर्व, इस आयोजन की अधिक जानकारी अभी हमें दे रहे थे भारत भवन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री प्रेम शंकर शुक्ल। दोस्तों, बारिश और मानसून अब हमारे शहर में दस्तक दे चुका है। एंजॉय जरूर कीजिए इस मौसम को, पर बहुत सारी सावधानी के साथ, क्योंकि कोई भी मौसम तब तक ही खूबसूरत है जब तक हमारे अपने हमारे साथ हैं।

0: इस खूबसूरत से गीत के साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, इस उम्मीद के साथ कि आप सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के साथ हमारे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल का आनंद भी ज़रूर लेते होंगे। तो कल फिर इंतज़ार कीजिएगा नमस्कार भोपाल का एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपनी रेडियो मित्र शिखा को, नमस्कार।
1: अभी नमस्कार भोपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी

0: व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।

0: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और
2: न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR
0: मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है।

0: जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29th July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers, and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorists.

कहते हैं सुंदरता आकर्षण का कारण हो सकती है, परंतु प्रेम तो व्यवहार से ही जन्म लेता है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरमई सवेरा में। और आज के सफर में मैं हूँ आपके साथ नेहा सोनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, कहते हैं कि ज्ञान के बिना व्यक्ति सत्य और जीवन के लक्ष्य को समझ नहीं पाता है। अज्ञान दूर करें। अज्ञान हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं होता है, वह सत्य को समझ नहीं पाता है। उसे ये भी स्पष्ट नहीं हो पाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या होना चाहिए और जीवन को कैसे जीना चाहिए। अज्ञान की वजह से व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है और सत्य से दूर हो जाता है। इसलिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाता है और जीवन को सही दिशा भी देता है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, जीवन में सफलता का सबसे बड़ा सूत्र आत्म जागरूकता है। आत्म जागरूकता यानी स्वयं को सही रूप में जानना और समझना। इसका अर्थ है कि अपनी सोच, भावनाओं, गुणों, कमियों, इच्छाओं और क्षमताओं के प्रति सजग रहना। जब व्यक्ति ये पहचान लेता है कि उसकी ताकतें क्या है, उसे किन बातों में सुधार करना है और जीवन में उसका लक्ष्य क्या है, तब वह बेहतर निर्णय ले पाता है। आत्म जागरूकता व्यक्ति को आत्मविश्वास, संतुलन और सही दिशा प्रदान करती है। यही आत्मविकास और सफलता की मजबूत नींव है। अपनी क्षमताओं को पहचाने, अच्छे विचारों और उच्च चरित्र को हमें अपनाना चाहिए। हमेशा हमें सही का, सत्य का साथ देना चाहिए और ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए। और हाँ, डर को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए।

0: तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है, और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे।

0: हाँ भाई समझा।
1: तो संयम, वफादारी और कॉन्डोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं, और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: दोस्तों, छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती है। जैसे देर से उठना, समय का पालन ना करना, भोजन व्यर्थ छोड़ना, अनावश्यक बातें करना और दूसरों की कम सुनना, अधिक शंका करना या हर परिस्थिति में नकारात्मक सोच रखना जैसी आदतें देखने में साधारण लगती जरूर है, लेकिन ये मन को कमजोर भी बनाती है। लगातार नकारात्मक विचार व्यक्ति के आत्मविश्वास और उत्साह को प्रभावित करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दें और सकारात्मक सोच, अनुशासन के साथ अच्छे व्यवहार को अपनाएं।

0: एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, शांत और स्थिर मन अत्यंत शुभ होता है। जैसे उबलते हुए जल में वाष्प और धुंध के कारण हमें अपनी छाया दिखाई नहीं देती, वैसे ही क्रोध के समय हमारी सही समझ नहीं बनती है। जब मन शांत और स्थिर होता है तब हम स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। क्रोध मन को विचलित कर देता है जिससे विचार धुंधले हो जाते हैं, वास्तविकता समझ में नहीं आती। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखें ताकि हम सही दिशा में सोच सके और अपने जीवन को संतुलित बना सके।
4: NASA is still running Punjabi.

0: सुरमई सवेरा कार्यक्रम में यहाँ रुकते एक छोटे से विराम के लिए। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश भारत की गति और व्यापकता के साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, स्कूल चले अभियान के दौरान अधिकाधिक संदीपनी विद्यालय भवनों का लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों पर विकास के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान और अन्य रियायत स्वरूप में दिया जा सकता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू और कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो चुकी है। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की आखिरी तिथि 13 जुलाई है। और मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बालाघाट समेत 19 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, आइए पुनः रुक करते हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा की ओर। श्रोताओ, कहते हैं कि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब खुद पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। विश्वास वह शक्ति है जो इंसान को उसकी सीमाओं से ऊपर उठाकर असंभव की दीवारों को भी तोड़ने का साहस देती है। जब रास्ते अंधेरे से भर जाते हैं, मंजिल धुंधली दिखने लगती है, तब विश्वास ही वह दीपक बनता है जो भीतर से रोशनी जलाता है। यह ना दिखने वाली ऊर्जा मन को स्थिर रखती है, दिल को ये यकीन दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा जरूर आता है। विश्वास केवल उम्मीद नहीं बल्कि कर्म को दिशा देने वाली शक्ति है। जब व्यक्ति स्वयं पर और अपने प्रयासों पर विश्वास करता है, तब हार भी उसे तोड़ नहीं पाती बल्कि और मजबूत बना देती है। गिरकर उठना, टूटकर फिर से जुड़ना, ये सब विश्वास की ही देन है। वही विश्वास इंसान को ये सिखाता है कि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का एक जरूरी पड़ाव है।

श्रोतो, आप सुन रहे हैं सुरमई सवेरा कार्यक्रम। और सुबह जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर आती है, अंधकार दूर हो जाता है। इस समय वातावरण शांत रहता है और इस समय नया काम करने के लिए सबसे अच्छा होता है। हम इस समय का सदुपयोग करके नए विचार और कार्य शुरू कर सकते हैं। सुबह का समय ध्यान, योग और नई शुरुआत के लिए सबसे अच्छा होता है। तो हम भी आपसे ये कहेंगे कि चाहे मौसम सर्द हो या गर्मी क्यों ना हो, चाहे बारिश हो रही हो, थोड़ा समय अपने आप के लिए निकालिए और इससे सुबह के समय अपने आप को दीजिए। थोड़ा सा योग करिए, कुछ विचारों को अपने जीवन में लेके आइए।

अश्रोताओं, चलते चलते हम बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रातों में सोने ना दे। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्यों को बड़ा रखिए और उस दिशा में कदम बढ़ाते जाए जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाने में आपकी मदद करते हैं। फिलहाल आज के सुरमई सवेरा कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अहिंसा की कसौटी ही ये है कि अहिंसक संघर्ष में उसके उपरांत कोई विद्वेष बाकी न रहे और शत्रु मित्र बन जाएं। दक्षिण अफ्रीका में जनरल स्मट्स के साथ मेरा यही अनुभव रहा। शुरू में वो मेरे कट्टर विरोधी और आलोचक थे, आज वो मेरे अन्यतम मित्र हैं। समय बदलता है और प्रणालियों का ह्रास हो जाता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि अंततः केवल अहिंसा और अहिंसा पर आधारित चीजें ही बची रहेंगी। असहयोग यद्यपि सत्याग्रह के शस्त्रागार का मुख्य शस्त्र है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सत्य और न्याय पर दृढ़ रहते हुए विरोधी का सहयोग प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। अहिंसक विधि का सार ये है कि ये विरोध को समाप्त करने का प्रयास करता है, स्वयं विरोधियों को नहीं। अहिंसक संघर्ष में तुम्हें कुछ हद तक जिस व्यवस्था का तुम विरोध कर रहे हो उसकी परंपरा और रूढ़ियों को मानना पड़ता है, इसलिए विरोधी शक्ति के साथ किसी तरह का संबंध न रखना सत्याग्रही का ध्येय कभी नहीं हो सकता। उसका ध्येय तो उस संबंध का रूपांतरण अथवा शुद्धिकरण है।

मैं असहयोग को इतना शक्तिशाली और शुद्ध साधन मानता हूं कि अगर इसका इस्तेमाल सच्ची भावना से किया जाए तो ये पहले ईश्वर के साम्राज्य की कामना करने के समान होगा, जिसके बाद सब कुछ स्वयं प्राप्त होता जाता है। तब लोग अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाएंगे। वे अनुशासन, आत्मनियंत्रण, संयुक्त कार्रवाई, अहिंसा, संगठन आदि उन सभी बातों का मूल्य पहचान पाएंगे जिनसे कोई राष्ट्र महान और अच्छा दोनों बनता है, केवल महान नहीं। असहयोग जैसा शुद्ध, हानि रहित और फिर भी कारगर साधन दूसरा नहीं है। विवेक पूर्वक इस्तेमाल करने पर इसके कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आने चाहिए और इसकी गहनता पूर्णतया लोगों की बलिदान करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। हमने ना कहने की शक्ति खो दी थी। सरकार से ना कहना निष्ठाहीन और प्रायः द्रोहपूर्ण माना जाने लगा था। सहयोग करने से जानबूझकर इनकार करने की ये तकनीक उसी प्रकार की है जैसे कि किसान बुआई से पहले जमीन की निराई करना जरूरी समझता है। कृषि के लिए जितनी जरूरी बुआई है उतनी ही जरूरी निराई भी है। फसल जब बढ़ रही होती है तब भी निराई की खुरपी किसान के दैनंदिन प्रयोग की चीज होती है। राष्ट्र का असहयोग राष्ट्र की शर्तों पर सरकार से सहयोग करने का निमंत्रण है, जो कि प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार और प्रत्येक अच्छी सरकार का कर्तव्य है। असहयोग राष्ट्र की ओर से चेतावनी है कि वो सरकार की प्रतिपाल्यता से संतुष्ट नहीं है। अहिंसक असहयोग आंदोलन और पश्चिम के ऐतिहासिक स्वाधीनता संघर्षों के बीच कोई साम्य नहीं है। ये पशुबल या घृणा पर आधारित नहीं है। इसका ध्येय अत्याचारी का सफाया करना नहीं है। ये आत्मशुद्धिकरण का आंदोलन है। अतः इसका उद्देश्य अत्याचारी का हृदय परिवर्तन है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कच्चे धागे इस फिल्म का ये गाना है। आवाज है अलका याग्निक, हंसराज हंस और साथियों की। आनंद बख्शी ने गाने को लिखा है और संगीत है नुसरत फतेह अली खां का।

फिल्म संगीत में लीजिए अब सुनिए पटियाला हाउस, इस फिल्म का गाना महालक्ष्मी अय्यर, हार्डकोर मास्टर सलीम और साथियों की आवाजें हैं। अन्विता दत्त ने गाने को लिखा है और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

फिल्म संगीत में लीजिए, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मौसम का गाना। तौशी रैना और साथियों की आवाज़ है, संगीत है प्रीतम का और गाने को लिखा है इरशाद कामिल ने।

ये गाना है फिल्म अपने से, हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला की आवाज़ें हैं, साथ ही साथ अमृता का की भी आवाज़ें। हिमेश रेशमिया का संगीत है और गाने को लिखा है समीर ने।

उड़ता पंजाब इस फिल्म का गाना सुनिए, दिलजीत दोसांझ की आवाज़ है। श्री शिव कुमार बटालवी ने गाने को लिखा है और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भोपाल जिले की चिट्ठी। आलेख ताहिर खान, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भोपाल जिले में कल झमाझम बारिश हुई। इसके साथ ही मौसम खुशनुमा होने से शहरवासी खुश नजर आए। आपको बता दें कि इस बार मॉनसून ने 24 जून को प्रदेश में प्रवेश किया था। इसके बाद करीब 9 दिन में पूरे मध्य प्रदेश में मॉनसून फैल गया। हालांकि इसकी एंट्री सामान्य समय से करीब 9 दिन देरी से हुई है। देरी की वजह से किसान समय पर फसल की बुआई नहीं कर पाए। हालांकि अब निरंतर बारिश होने के चलते किसान फसल की बुआई में लग गए हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम एक बार फिर जर्जर भवनों को लेकर सक्रिय हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी भवन मालिकों और सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नगर निगम के सर्वे के मुताबिक भोपाल में 3,435 भवन जर्जर हैं। इनमें 2,464 सरकारी और 971 निजी भवन शामिल हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 740 सरकारी और 17 निजी भवन अति जर्जर श्रेणी में हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। रेलवे प्रशासन ने रानी कमलापति अगरतला स्पेशल ट्रेन में LHB कोच लगाने का निर्णय लिया है। भोपाल के रानी कमलापति से ये ट्रेन 9 जुलाई और अगरतला से 12 जुलाई से LHB रैक के साथ चलेगी। वहीं 23 जुलाई और 26 जुलाई से संशोधित LHB कोच संरचना लागू होगी। इसके अलावा इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस का सीहोर स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव देने और पुणे दानापुर दैनिक स्पेशल ट्रेन की संचालन अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश की विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 2,548 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ जमीनी स्तर पर पोषण और बाल विकास सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना है। भर्ती के तहत 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 1,767 पद आंगनवाड़ी सहायिका के लिए निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकों के सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व डीन डॉक्टर भानु दुबे रहे। शुभारंभ डॉक्टर तृप्ति सक्सेना के स्वागत उद्बोधन सर्वधर्म प्रार्थना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। सत्र को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है। 5 दिवसीय मॉनसून सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक सदन के पटल पर रख सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों की सूची के अनुसार करीब 11 अहम विधेयकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल की RCVP नरोना प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी में विगत रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पल्स पोलियो अभियान सुमन पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत की और स्टेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट 2.0 पॉलिसी का अनावरण किया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बीते रविवार को भोपाल में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। भोपाल जिले में करीब 3.32 लाख बच्चों को पोलियो रोधी खुराक देने का लक्ष्य रखा गया था। भोपाल के रविन्द्र भवन में बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित समिट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के उद्योग निवेश और युवाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही जनवरी 2027 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी। भोपाल में मुहर्रम पर्व

अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर निकले मातमी जुलूसों में जहां कर्बला की शहादत को याद किया गया, फतेहगढ़ इमामे गेट, हमीदिया रोड, करोंद और पुराने शहर के अन्य इलाकों से सुबह से ही ताजिए निकले, अलम बुराक और धार्मिक परचमों के साथ जुलूस निकाले गए। जिला प्रशासन द्वारा भोपाल शहर के विभिन्न इलाकों में कोचिंग संस्थानों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की व्यापक जांच की जा रही है। संचालित कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण कर कमियां मिलने पर कोचिंग संस्थान को सील करने की भी कार्रवाई जारी है। भोपाल में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति विकसित की जा रही 6 कॉलोनियों पर एक साथ बुलडोजर कार्रवाई की है। करीब 82 करोड़ रूपये मूल्य की जमीन पर किए गए अवैध विकास कार्यो को हटाते हुए प्रशासन ने सड़कें, गेट और बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे भोपाल जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम महिला संसार।

0: कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को दिव्या का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आओ सखी बात करें लेकर, जिसमें आप 0755 STD कोड के साथ 266090 नंबर डायल करके हमसे बात कर सकती हैं। तो लगाइए नंबर 266090 और हमसे बात कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत। सखियों, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके फ़ोन का। आप सुनिए अपनी पसंद के गीत, हमें इस नंबर पर फ़ोन लगाकर, नंबर है 266090। एक सखी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सखी इस समय सुन रही हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम आओ सखी बात करें।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: नमस्ते,
0: नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रही हैं?
1: शिवानी मेहरा, नीमच से।
0: शिवानी जी, नीमच से, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम, मेरा नाम है कसूर और गाने के बोले जिंदगी बन गए हो तुम।
0: जिंदगी बन गए हो तुम, कौन सी फिल्म बताई आपने?
1: कसूर, कसूर,
0: कसूर फिल्म की
1: जी।
0: और शिवानी जी, कैसा है मौसम आजकल आपके यहाँ?
1: मौसम तो बहुत मस्त है, रोज सुबह सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है यहाँ पे।
0: और पानी की बारिश तो हो रही है, लेकिन पानी की बचत भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। और ये
1: तो बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो किस तरीके से आप अपने घर में पानी की बचत को मैनेज करती हैं?
1: मैम, हम सब्जी वगैरह का पानी धो के पेड़ पौधे में डाल देते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी।
1: कपड़े धोते हैं तो कपड़े के पानी से आंगन वगैरह धो लेते हैं, नाली वगैरह साफ कर देते हैं।
0: यही स्मार्ट बचत कहलाती है। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आपके पसंद का गीत भी तैयार है। तो लीजिए अपने रेडियो सेट पर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू।

0: हेलो हेलो, हाँ नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ।
0: नंदिनी कहाँ से बोल रही हैं?
1: सागर से।
0: सागर से कौन सा गीत सुनेंगी नंदिनी?
1: जो मूवी का नाम है होगी प्यार की जीत।
0: होगी प्यार की जीत फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगी?
1: उसका एक सॉन्ग है ना, तालों में नैनीताल, ये वाला।
0: तालों में नैनीताल
1: जी,
0: यही से शुरुआत है, तालों में नैनीताल।
1: जी जी यही से शुरुआत है।
0: अच्छा, एक गीत और भी बता दे नंदिनी।
1: एक और तो फिर आप, मूवी का नाम है सत्या।
0: सत्या फिल्म का, ठीक है। पहला गीत तो आप सुनना चाहती होगी प्यार की जीत से, तालों में नैनीताल। और नंदिनी कैसा चल रहा है आपके यहाँ बारिश का मौसम?
1: मौसम अभी ठीक ठाक है, कल बारिश हुई थी और अभी भी बादल ही है। और
0: तो
1: आपके यहाँ?
0: हमारे यहाँ भी बारिश थोड़ी शुरू हो गई है। और नंदिनी इस समय जो लाइट का प्रॉब्लम है वो कभी कभी हो जाता है, तो आप लाइट बचत के लिए क्या स्मार्ट तरीका अपनाती हैं अपने घर में?
1: लाइट बचत के लिए हम
0: जी
1: इमरजेंसी बल्ब रहते हैं वो चार्ज करके रखते हैं,
0: हाँ,
1: और टॉर्च वगैरह, और अपने फोन भी चार्ज करके ही रखते हैं।
0: हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बचत
1: जी
0: कैसे करती हैं? हाँ आप,
1: यानी कि जो हमें जैसी जरूरत पड़ती है वैसे ही करते हैं, क्योंकि हम ना ज्यादा यूज नहीं करते।
0: चलिए ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत भी तैयार है
1: और
0: नंदिनी?
1: ये गाना डेडिकेट आपको रानू दीदी का।
0: चलिए धन्यवाद आपका, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: ओके मैम, नमस्ते।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: जया, मैं बात कर रही हूँ मंदसौर से।
0: जी, मंदसौर से जया बात कर रही हैं। कौन सा गीत सुनेंगी
1: मैम? मूवी नाम तेरे नाम और गाने बोले क्यों किसी को वफा के बदले में।
0: फिल्म कौन सी बताई?
1: तेरे नाम।
0: तेरे नाम फिल्म का। क्यों वफा के बदले किसी को वफा नहीं मिलती?
1: जी
0: ऐसा गीत आपको क्यों पसंद है? बहुत पर्सनल।
1: थोड़ा सा हम ऐसे सेट से थे, इसलिए सोचा हम भी फोन लगाते हैं, लग जाए तो फिर हम ये वाला सॉन्ग सुनेंगे।
0: चलिए, बारिश भी आ गई है, मौसम हसीन हो गया है, तो ऐसे में तो
1: हमें आज तो दिन दिन बारिश हो रही है।
0: हाँ, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कोई गीत हमारे श्रोता सुनेंगे। और चलिए, आपका गीत भी आ गया है, तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो,
1: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को
0: इस वक्त बहनें अपनी पसंद के गीत सुन रही हैं एक फ़ोन कॉल पर, और नंबर है 2660902। आप इस नंबर पे डायल कर सकती हैं और सुन सकती हैं अपने पसंद के गीत और बात कर सकती हैं हमसे। सखियों, कहते हैं बचत का आशय जो होता है भविष्य में अपनी चीज़ों के हिस्से से होता है, तो बचत करना सीखें, चाहे वो पानी की हो या बिजली की हो। एक और सखी हमारे साथ हैं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से।
0: रानू देवास से बात कर रही हैं, कौन सा गीत सुनेंगी?
2: मूवी का नाम है कलाकार और गाने के बोल हैं नीले नीले अंबर पर चांद जब आए।
0: कलाकार फिल्म से गीत सुनेंगी, नीले नीले अंबर पर चांद जब छा जाए।
2: और आज हम ना थोड़ा लेट प्रोग्राम में आए हैं, इसलिए तो कुछ कॉल ज्यादा लग गए शायद, मेरे हिसाब से 2-3 लग चुके हैं।
0: नहीं, बिल्कुल।

0: इन गीत हो
1: हाँ
0: चुके हैं और आपकी पसंद का
1: ओके
0: गीत
1: जी
0: भी हम ढूंढ रहे हैं। और
1: जी
0: नीले नीले अंबर पर चांद जब छा जाए, कलाकार मूवी से आपने
1: जी
0: सुनना चाहा है। और पानी इस वक्त अच्छा गिरने लग गया है धीरे धीरे, तो पानी की बचत के लिए, पानी के संरक्षण के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगी अपनी सखियों को?
1: मैं टिप्स तो दे देती, बट अभी ना थोड़ा सा बिजी हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड को हुआ है
0: चलिए,
1: मेरा
0: तो फिर
1: आज, मैं
0: अपनी
1: सोच रही
0: पसंद
1: था
0: का गीत
1: अभी,
0: सुनिए आप
1: वरना फिर
0: और
1: दिक्कत
0: एंजॉय
1: इतनी बड़ी है।
0: कीजिए।
1: हाँ

0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैम खुशबू पाटीदार बात कर रही हूँ।
0: खुशबू बात कर रही हैं, कहाँ से?
1: मालखेड़ा से।
0: मालखेड़ा से, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैम मोरा ना में चांदनी और गाने के बोले लगिया सावन की फिर वो झड़ी है।
0: चांदनी फिल्म का लगी सावन की वो झड़ी है, बहुत सुंदर सा गीत चुना है आपने और वक्त के अनुरूप चुना है, बहुत प्यारा सा गीत है। और खुशबू कैसे चल रही है आपके यहाँ, बारिश का एंजॉय कर रही हैं?
1: अभी तो हम खेत पे हैं, बारिश हो रही है, निंदाई में लगे हुए हैं, मेड़ बना रहे हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसी का इंतज़ार सभी किसान कर रहे थे कि बारिश हो और काम शुरू हो।
1: जी
0: तो
1: मैडम
0: लाइट आ रही है अच्छे से? और आप लोग खेतों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरीके से करते हैं, बचत कैसे करते हैं?
1: ट्यूबवेल है ना, बोरिंग गुजारा की ना, और बारिश का तो है ही सही, बारिश आती फिर हो जाता है।
0: अच्छा जी, लीजिए तो
1: तो बारिश
0: आपके
1: आती फिर
0: पसंद
1: ट्यूबवेल
0: का
1: से
0: गीत
1: है।
0: भी तैयार है खुशबू जी, तो सुनिए अपने रेडियो सेट पे अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं?
1: मैं शाहिना बात कर रही हूँ मंदसौर से।
0: शाहिना मंदसौर से बात कर रही हैं, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैडम गाना सुनना है, मूवी के नाम है हम आपके हैं कौन, और इसी में गाना है ये मौसम का जादू है मितवा।
0: हम आपके हैं कौन फिल्म से सुनना चाहती हैं आप? ये मौसम का जादू है मितवा, बहुत प्यारा सा गीत चुना है आपने। और मौसम सुहाना हो चला है और सब लोग खुश हो रहे हैं, किसान भी खुश हैं और सब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। और ये वक्त ऐसा भी है कि इस समय हम लोगों को पानी को बहुत अच्छे से और संरक्षित भी करना है, बचाना भी है। तो
1: मैडम मेरे यहाँ तो क्या है, खेती वगैरह है तो फिर पानी की बचत तो हम लोग करते ही, हमारे यहाँ दो कुएं भी हैं, तीन ट्यूबवेल हैं, तो
0: जी
1: हम
0: जी
1: लोग क्या बचत तो करते हैं, जितनी जरूरत होती है उतना ही उपयोग में लेते हैं।
0: बिल्कुल, रिचार्ज हो जाते हैं जो भी
1: जी,
0: पानी
1: जी,
0: के
1: मैडम।
0: स्रोत हैं, और अगर उसमें पानी भी कलेक्ट हो जाता है जो हमारे काम आता है, बहुत अच्छी बात है। और आपके पसंद का गीत भी तैयार है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम महिला संसार, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्र संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसमें सुनिए पद्मावती शालिग्राम का गायन, राग है देसी।

0: अभी आप सुन रहे थे शास्त्र संगीत का कार्यक्रम रागमाला, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होगा। 3 अगस्त को मतगणना के साथ नतीजों की घोषणा की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका सृजन और टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन का कल प्रदेश भर में उत्साहपूर्ण शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में

0: जिला प्रशासन द्वारा जन सम्मेलन सह लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। और मौसम विभाग ने आज हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, छिंदवाड़ा, पांडोना और बालाघाट समेत 19 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो देर किस बात की, जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें आपके फ़ोन कॉल्स का है बेसब्री से इंतज़ार, तो कीजिए कॉल और सुनिए अपनी पसंद के गीत। जी
2: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
1: शेख हैदर खान रतलाम से?
2: हाँ, सुराना जिला रतलाम।
1: रतलाम से तो कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया है, खैरियत में है मैडम।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मौसम कैसा है आपके यहाँ का?
2: मौसम तो मैडम आज 5:30 बजे से करीबन 2 घंटा मतलब अच्छी बारिश हो गई है।
1: हाँ हाँ,
2: और पानी की जरूरत भी थी। सोयाबीन की बोनी भी हो चुकी है।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो कई जगह पर हमने सुना है कि लोगों ने अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं कर पाए हैं कि पानी बार बार गिर रहा है।
2: हाँ, मैं कई जगह तो मैडम पानी अभी तक गिरा भी नहीं है।
1: सही कह रहे हैं।
2: हाँ, हमारे आसपास भी मतलब ये जावरा तहसील है, इसमें भी पानी नहीं है फिलहाल।
1: हाँ चलिए, तो शेख साहब आज कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है
1: हाँ
2: नदिया के पार।
1: अरे वाह, नदिया के पार के तो सभी गीत बड़े प्यारे हैं।
2: हाँ, सचिन और साधना की फिल्म थी है।
1: हाँ जी,
2: तो उसका गीत है कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया।
1: बिल्कुल, ये गीत आप बिल्कुल सुन पाएंगे, लेकिन कल सुबह 11 बजे से जो प्रोग्राम आएगा उसमें।
2: हाँ हाँ,
1: है ना। चलिए, अच्छा कॉल आपने कब किया? एक हफ्ते तो हो चुके होंगे ना आपके कॉल को?
2: नहीं, मैं तो ज्यादा दिन हो गए मैडम, 15-20 दिन हो गए, मैं तो बोनी में लगा हुआ था।
1: चलिए कोई बात नहीं,
2: 2-4 दिन से।
1: बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कॉलर्स है ना, जैसे कल लगाया आज फिर लगा दिया, तो हम उनसे बात तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपना रजिस्टर चेक करते हैं तो पता पड़ता है उन्होंने तो कल ही बात की थी, तो हमें उनका प्रोग्राम में फिर उनका कॉल नहीं ले पाते।
2: तो नहीं, वो सही है ना, मतलब 15-20 दिन की गैप भी देनी चाहिए हर श्रोता।
1: बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से हम लोगों ने ये सिस्टम किया है कि हर श्रोता को मौका मिल सके।
2: सही है,
1: है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच शेख साहब।
2: ओके ओके, थैंक यू, है ना मैडम
1: जी, नमस्ते,
2: शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो,
0: परम आदरणीय दीदी, सादर सा प्रेम प्यार सा नमस्कार।
1: नमस्कार। इतने जोश से कौन साहब बोल रहे हैं?
0: जी दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप लोग कैसे हैं?
1: हम बहुत अच्छे हैं। मथुरा में तो भयंकर गर्मी पड़ रही है शारदा जी।
0: जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बारिश नहीं हुई है अभी तक मानसूनी,
1: हाँ
0: और मानसून पहले भी वर्षा नहीं हुई थी। हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं तो चमचमाती हुई धूप है, हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं,
1: हाँ
0: लेकिन उमस भरी गर्मी बरकरार है।
1: बहुत तेज, क्योंकि अभी जस्ट हम मथुरा से होकर ही आए हैं 2-3 दिन पहले, और सब बीमार पड़ गए हैं। इतनी भयंकर गर्मी है वहां पर।
0: जी, गर्मी तो बहुत है दीदी, और उमस वाली गर्मी अब परेशान कर रही है। आसपास के क्षेत्रों में कुछ कुछ वर्षा हो जाती है, बूंदाबांदी
1: हाँ
0: होती है, जिसके कारण से उमस काफी बढ़ गई है, और उमस जो है बहुत गर्मी के साथ साथ में बेचैनी उत्पन्न करती है।
1: बेचैनी, बिल्कुल। चलिए शारदा जी, बताइए अपनी पसंद का गीत।
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है संगीत।
1: संगीत।
0: जी, इसका शीर्षक गीत है
1: हाँ जी।
0: संगीत जहाँ है गीत वहाँ है, गीत जहाँ है प्रीत वहाँ। बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत है,
1: हाँ, अनुराधा
0: इस बात को
1: पौडवाल
0: ध्यान के
1: और
0: साथ में लता
1: सुरेश,
0: जी जा रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं ये।
0: और सारी दीदी आपने हमारी गलती को सही कर दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको।
1: कोई बात नहीं, तो ठीक है शारदा जी, कल के प्रोग्राम में आप अपनी पसंद का गीत जरूर सुन पाएंगे। ठीक है, कॉल करने
0: जी,
1: के लिए
0: हृदय से
1: बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: आज मैं ग्राम बालोगा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ
0: जी कन्हैयालाल जी, कैसे
1: जी
0: हैं?
1: मैडम। हाँ मैडम, भाई बढ़िया आनंद मंगल।
0: कॉल आपने एक हफ्ते बाद ही किया है ना?
1: हाँ
0: हाँ जी, चलिए और सुनाइए, क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है, आनंद मंगल है। सफर कर रहे हैं अब।
0: आज कहाँ जा रहे हैं?
1: हम वहां से आए हैं, शीतला मंदिर से वापस धर्मनगर के पास जा रहे हैं, बालोदा
0: अच्छा, तो
1: लखा।
0: कन्हैयालाल जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: दिन वो बरखा, बरखा रानी जरा जिनका बड़ा सबक फिल्म का है ना।
0: सबक।
1: हाँ सबक, बरखा रानी जरा
0: हाँ
1: जिनके बरसो मेरा दिल जरा
0: हाँ जी,
1: जिनके बरसो।
0: बहुत अच्छा गाना है ये, मुकेश की
1: हाँ
0: आवाज़
1: सबक,
0: में।
1: हाँ सबक फिल्म का बहुत
0: हाँ
1: पुराना
0: हाँ बिल्कुल, आपका प्रोग्राम में, ये कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत सुन पाएंगे।
1: है।
0: ठीक है, कल
1: कितने बजे आए?
0: 11 बजे से प्रोग्राम आएगा तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का गीत, और हमारे बीच जो बातचीत हो रही है वो भी आप सुन सकेंगे।
1: आपका कैसा हाल चाल है? आपका
0: आवाज़ में बहुत डिस्टरबेंस है इसलिए मैं आप माफ़ी चाहूँगी
1: बढ़िया है, आनंद मंगल है। और
0: जी।
1: क्या?

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैम जी।
0: जी। शुभ नाम
1: मैं अरविंद अग्रवाल।
0: जी। अरविंद जी, क्या हाल हैं आपके?
1: जी एकदम बढ़िया है। आप भी अच्छी होंगी ऐसी आशा करते हैं जी।
0: बिल्कुल, आपकी
1: मेरी
0: आशाओं पे।
1: कविता जी से बात हो रही है आज?
0: हम्म,
1: कविता रावत जी से बात हो रही है
0: जी, थैंक यू वेरी मच आवाज पहचानने के लिए।
1: जी।
0: कहाँ से बोल रहे हैं अरविंद जी?
1: जी मैं श्रीनगर जिला महोबा उत्तर प्रदेश से। जी
0: बहुत बढ़िया। कैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में बारिश का?
1: कल तो हुई थी वो थोड़ी बारिश लेकिन उमस फिर भी है अभी भी।
0: अभी वो लगकर जो मानसून आना चाहिए ना, लगातार बारिश होती है और ठंडक हो जाती, वो मौसम नहीं आ पा रहा ना।
1: जी मोबाइल तो वैसे दिखा रहा है कि आज भी बारिश होगी।
0: हाँ, लेकिन अभी लगातार बारिश नहीं हो रही है, इस वजह से हर जगह उमस के कारण सभी लोग परेशान हैं, है
1: जी
0: ना। और परिवार में सब कुशल मंगल?
1: सब आशीर्वाद है आपका, भगवान की कृपा है जी।
0: चलिए, हमेशा बनी रहे। और बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा घात
0: घात।
1: जी। झूम
0: उसका कौन सा गीत?
1: का चांदी का जी।
0: अच्छा, हाँ बिल्कुल, मिल गया हमें ये गाना तो।
1: मिल तो जाएगा ही
0: हाँ, बड़ी अनोखी चॉइस है आपकी।
1: जी। थोड़ी आज अलग हटके सुन रहा हूँ,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: फास्ट संगीत थोड़ी जी।
0: बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। और हर टाइप का संगीत हमको सुनना ही चाहिए, है ना। तभी तो हम अपने बच्चों को भी ये सिखा पाएंगे कि ये इसमें क्या है, इसमें कौन सा राग है, क्या है, ये सारी बातें, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी कॉल करने के लिए।
1: जी आपका भी धन्यवाद कॉल लेने के लिए।
0: जी नमस्कार,
1: आपका दिन शुभ हो।
0: आपका भी दिन शुभ हो। हेलो हेलो हेलो हेलो।

0: हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। जी
0: बाबू यादव, सारनाथ वाराणसी। पहली
1: जी नहीं
0: बार बात हो रही है ना बाबूनाथ जी आपसे? होती
1: दीदी, ये बहुत ही रहती है। हाँ,
0: रहती है, मतलब मेरे से नहीं हुई है।
1: आपका परिचय जानना चाहूँगा।
0: कविता रावत
1: ओ हाँ दीदी, ठीक कह रहे, पहली बार हो रही
0: है
1: है।
0: ना, अपनी पहली बार बात हो रही है।
1: हाँ
0: सोचिए,
1: जी
0: इतने सालों में पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: दीदी, आपकी वो जो गीत सागर में आप जो कार्यक्रम देती थी
0: हाँ जी,
1: उसमें आपका गीत सागर में मतलब सुनता था, अच्छा लगता था, और मैं
0: अच्छा
1: पत्र भी भेजता था।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ,
0: चलिए, थैंक यू वेरी मच।
1: तो वहाँ आपका नाम सुन,
0: जी,
1: और हम पत्र भी भेजते थे, अच्छे अच्छा लिखते थे। आप थी और वही वो क्या थी, सिंह थी, सरिता सिंह थी, क्या थी?
0: सुनीता सिंह।
1: हाँ, सुनीता सिंह जी। तो आप लोगों के विचार जो है बहुत अच्छे लगते थे गीत सागर में।
0: अभी भी प्रोग्राम
1: हाँ
0: आता है, लेकिन शिफ्ट
1: हाँ
0: ड्यूटी रहती है तो किसी कारण से अभी नहीं कर पा रहे हैं।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बस आप सबका स्नेह ऐसे ही हम लोगों के साथ बना
1: हाँ
0: रहे।
1: दीदी, बहुत अच्छा लगता है आप लोग प्रस्तुत करती हैं, अच्छा लगता है, आपसे सीख मिलती है, ज्ञान मिलता है। हाँ
0: ये बात सही है। और आपस में बातचीत करके ना अपने बहुत सारे समस्याओं का हल भी निकलता
1: जी, बिल्कुल
0: है
1: जी
0: ना? बस यही तो उद्देश्य है हमारे रेडियो का।
1: जी जी
0: चलिए बताइए बाबूजी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: दीदी देखिए, मेरे यहाँ कल से बारिश हो रही है, तो
0: हाँ जी,
1: बनारस का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो
0: हाँ
1: इस अवसर पर हमको एक गाना सुनवा दीजिए, फिल्म जुर्माना का है,
0: हाँ हाँ
1: और वो आपकी सजन सावन में
0: अच्छा,
1: हीरा राजा ने
0: जुर्माना
1: गाया
0: का।
1: हुआ है, तो
0: देख,
1: वही
0: हो
1: वाला
0: गए,
1: सुनवाइएगा,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दो लाइनें कहना चाहूंगा, इजाजत देंगी तो, कि
0: हाँ
1: कहते हैं कि अशकों की जुबान नहीं होती और लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती, और मिले जो प्यार से तो कद्र करना यारों, मोहब्बत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सही बात। अच्छा बाबू यादव जी, एक बात बताइए, ये जो गीत के बोल है ना, ये है सावन के झूले, है
1: जी
0: ना? चलिए ठीक
1: जी
0: है,
1: जी जी जी
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत खूबसूरत है, मौसम के अनुरूप है। हाँ,
0: अच्छा,
1: मेरे यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: चलिए ठीक है, चलिए
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते।

0: जेंट्स तो करते ही नहीं है, वो फिर आके अपनों को ही सफाई करनी पड़ती है पूरी।
1: सही बात है, सबके है ना डिपार्टमेंट अलग-अलग है। अच्छा जीनत जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगी आप?
0: मैं सुनूंगी 1942 एंड लव स्टोरी का, है ना, रिम
1: अच्छा।
0: झिम रिम झिम रिम
1: सबके मन में आजकल यही
0: झिम।
1: चल रहा है ना। तो बारिश मतलब रिमझिम रिमझिम शुरू हो गई है।
0: जी हो गई ना, इंदौर में भी आ गया पानी।
1: हाँ, आ तो गया लेकिन अभी उतना फुर्ती से नहीं आया।
0: जी उतना तो नहीं हुआ, मगर थोड़ी ठंडक राहत
1: हल्की
0: हो गई
1: पुल्की,
0: गर्मी
1: हल्की
0: से।
1: पुल्की कह सकते हैं। हाँ
0: जी
1: ठीक है, चलिए धीरे धीरे ही सही आएगा, तो आ ही रहा है।
0: जी
1: चलिए जीनत जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, कॉल करने के लिए धन्यवाद, और कल 11 बजे अपना प्रोग्राम आप सुन सकती हैं।
0: जी शुक्रिया मैम,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते
1: जी। मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: जी। जीनत जी, कैसी हैं आप?
1: जी। अच्छी हूँ,
0: क्या चल रहा था अभी?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ को भी ढेर सारे काम होते हैं भाई।
1: घर के काम निपटा है। मम्मी के वहां से कल आई हूँ, मंदसौर से घर का काम संभालू।
0: हाँ, सही बात है, और बहुत काम होते हैं, और कहीं बाहर से आओ तो काम और दुगने हो जाते हैं।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्ते।
1: नमस्कार मैडम जी। जी
0: शुभ नाम बताइए अपना।
1: मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था, कोलार रोड भोपाल से। हाँ,
0: आपसे तो पहले भी बात हो चुकी है।
1: पहले बात हुई होगी 1 या 1.5 महीने पहले। जी,
0: हाँ, और क्या हाल है आपके?
1: एकदम बढ़िया। और काम वाम भी अच्छे से चल रहा है, और मौसम भी अब थोड़ा बहुत अच्छे से हो गया, मतलब ठंडा मौसम हो गया, बारिश भी हो गई
0: चलिए राम बाबू जी, आपको हमारी आवाज पसंद नहीं है क्या? तो
1: है। जी, बिल्कुल है ना पसंद।
0: आपने हमारे सारे सवालों के जवाब लगातार दे दिए, हम तो कोई सवाल ही नहीं कर पाए आपसे।
1: नहीं,
0: चलिए कोई बात नहीं, और
1: मैं
0: बताइए कौन से गीत सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सब बढ़िया है।
0: हाँ।
1: और मौसम मौसम सब अपना भोपाल का तो सब ठीक ठाक है, अभी तो नॉर्मल है, ना ज्यादा बारिश ना कुछ भी नहीं, अभी शुरुआत हुई है
0: बिल्कुल सही बात
1: ना।
0: है।
1: और आपकी आवाज की रही बात, तो आपकी आवाज बहुत बढ़िया है, और आपकी जो प्रस्तुति है प्रोग्राम की
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: अच्छी सी है, कोई बात की दिक्कत नहीं, हमको बहुत पसंद है, सभी श्रोताओं को पसंद है।
0: जी, थैंक यू वेरी मच।
1: जी,
0: बताइए कौन से गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म है आज की आवाज।
0: आज की आवाज।
1: हाँ, उसमें एक गाना बहुत प्यारा गाना है, दिल ही दिल में ले लिया दिल मेहरबानी आपकी, ये वाला गाना
0: बिल्कुल सही बात है, ये बहुत प्यारा गाना है और ये
1: है।
0: मिल भी गया मुझे।
1: हाँ जी, बिल्कुल,
0: तो कल
1: मुझे
0: 11 बजे।
1: विश्वास है अपने आकाशवाणी के मध्य प्रदेश में जरूर बिल्कुल बराबर मिलता है, ये हर एक गाने मिल जाते हैं।
0: हाँ, हर गाना।
1: हाँ, वो कभी कभी सर्चिंग में हो जाता है, कभी नहीं भी आ पाते, लेकिन रहते
0: बिल्कुल
1: जरूर है बराबर। जी
0: सही बात है ये तो।
1: जी
0: बिल्कुल कल 11 बजे से प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का गीत।
1: जी बिल्कुल,
0: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद जी,
0: जी।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते। दिल

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: फोन करें जी। सुनो जी,
0: जी हाँ
1: लगता है कि कविता जी बोल रही क्या
0: हाँ जी
1: बात है।
0: नमस्ते
1: नमस्ते कविता जी, अब आप भी बताइए कि मैं कौन बोल रहा हूँ।
0: मैं बहुत अच्छे से पहचान रही हूँ, लेकिन माफी चाहती हूँ, नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी।
1: चलो थोड़ी सी ऑप्शन दे रहा हूँ। फूल।
0: हाँ जी, फूल सिंह जी, खजुराहो से।
1: अरे
0: देखिए हमें एकदम आवाज सुनते ही लगा कि ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी है, लेकिन नाम क्लिक नहीं हो रहा था
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: कोई बात,
1: बहुत सारे श्रोता हैं
0: बहुत सारे श्रोता हैं, लेकिन हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं।
1: जी। हमारे जितने उद्घोषक हैं बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी है।
0: थैंक यू वेरी मच हम सभी की तारीफ के लिए। और बताइए क्या हाल है आपके, और खजुराहो का मौसम कैसा है?
1: खजुराहो का मौसम तो अब तो खजुराहो का मौसम दिलदार है, बिल्कुल झूमता हुआ। कितना प्यारा मौसम के बढ़ियाल। अब पानी गिर गया है, दो
0: हाँ
1: एक दो पानी गिर गया अभी तो। कल भी पानी बहुत बरसा हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में,
0: हाँ।
1: और अब तो खजुराहो का मौसम बहुत दीवाना है। हाँ,
0: अरे वाह क्या बात है मतलब अब
1: देखिए
0: तो
1: घूम
0: घूमने लायक मौसम बन गया।
1: जी, बिल्कुल। गर्मियों भर छोड़ के जो है बरसात में और ठंडियों में तो घूमने का खजुराहो का आनंद कुछ और ही हो जाता है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हाँ,
0: चलिए
1: और
0: अब
1: जो
0: बहुत
1: वहाँ की
0: जल्दी।
1: पार्किंग है, जो वहाँ की खजुराहो की जो पार्किंग है, वहाँ की जो पेड़ पौधे जो छटाएं हैं वो इतनी मनोहर इतनी मनमोहक लगती हैं कि लगता है कि देखते ही रहे। जी
0: आपकी शब्दावली बहुत अच्छी है
1: जी
0: चलिए फूल सिंह जी, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैं अब श्रोताओं को बता दूं कि मैं श्रोताओं में फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ। और देखिए कविता जी, क्या है कि अभी ऐसा मधुर मौसम, इतना प्यारा मौसम हो हमारे यहाँ, तो क्या पूरा मध्य प्रदेश में भी बारिश हो रही होगी शायद।
0: आज तो नहीं हुई है, लेकिन रात को थोड़ा बहुत पानी गिरा है।
1: जी, हमारे यहाँ तो मनकारी में खजुराहो में बहुत पानी गिरा है रात में, अभी भी पानी बादल है और रिमझिम रिमझिम बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में बार बार मन कह रहा है कि एक गीत है, फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी।
0: अच्छा
1: हेलो,
0: हाँ जी, आवाज आ रही है मुझे।
1: हाँ, खड़खड़ की आवाज आई कुछ।
0: वो अब थोड़ा डिस्टरबेंस तो होगा, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो
1: हाँ
0: थोड़ा सा तो होगा।
1: जी, फिल्म का नाम है खतरों के खिलाड़ी
0: हाँ जी
1: और गीत की बोल है कि तेरी मेरी प्यार भरी बातों में आग लग गई जी बरसातों में।
0: हाँ मिल गया हमको ये गाना, और बहुत अच्छा गाना है,
1: अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज साहब की
0: मोहम्मद
1: आवाज
0: अजीज
1: है।
0: जी। तो बिल्कुल कल के प्रोग्राम में आप अपना गीत जरूर सुनिएगा।
1: और कविता जी, ये गीत आपको डेडिकेट रहेगा। और हमारे प्रेमदास बाबा जी है, बेटा सिंह यादव जी हैं, मणिराम पाल जीतन पाल जी हैं, वो दिनकर सिंह चित्रकूट धाम से हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं,
0: बिल्कुल जी,
1: और हमारी
0: धन्यवाद।
1: बहन है पूनम सिंह कानपुर से, उनको भी डेडिकेट, सभी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: चलिए बहुत बहुत आभार।
1: बहुत बहुत कविता जी, आइए, स्वागत है, बार बार स्वागत है, बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत स्वागत है, आइए स्वागत है।
0: बिल्कुल आएंगे, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: पांडे।
0: श्रीवास देश पांडे कहाँ से? अच्छा, इंदौर से बोल रहे हैं। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: परछाइयाँ
0: ठीक है, आपकी परछाइयों का मिल जाएगा, हम जरूर सुनवाएंगे।
1: मुंडे
0: आपकी परछाइयाँ मैं देख के बताती हूँ कौन सा गीत है। कौन सा?
1: मुंडे
0: अच्छा, अगर मुझसे मोहब्बत है। बिल्कुल, ये
1: हाँ
0: गीत आप बिल्कुल सुन पाएंगे कल के प्रोग्राम में। ठीक है,
1: हाँ
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ, और
1: वो
0: कल,
1: मैं बचपन में बीमार हुआ था।
0: हाँ मैं समझ सकती हूँ, आपकी आवाज़ से मुझे लग रहा है, लेकिन आप अपनी, बिल्कुल
1: आपको कभी आसमान
0: अब वो मिलेगा तो मैं कभी फिर सुनवाऊंगी, लेकिन आज आपकी परछाई फिल्म का ये गीत आप जरूर सुन सकेंगे, कल 11 बजे सुनिएगा।
1: हाँ ठीक है मालूम है।
0: जी, चलिए, धन्यवाद।
1: हाँ ओके।
0: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते बहन जी, नमस्ते।
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ बहन जी।
0: अच्छा मांगीलाल जी, कैसे हैं
1: जी,
0: आप?
1: बस बढ़िया हूँ दीदी, आपकी दुआ से बढ़िया हूँ, भगवान की कृपा से। और मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगी।
0: हाँ हम बहुत बढ़िया हैं। आप सभी का प्यार हम सभी के साथ है। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: बहन जी, फिल्म का नाम रहेगा चित्रलेखा,
0: अच्छा।
1: और गाने के बोल रहेंगे, छा गए बादल नील गगन पे, घुल गया कजरा सांझ डले। जी
0: वाह, बहुत ही प्यारा गीत है ये। मतलब बहुत कम
1: हाँ
0: लोगों ने इसको सुना होगा,
1: हाँ
0: है ना?
1: जी
0: ठीक है, तो ये गीत ज़रूर हमको मिल भी चुका है, और कल के
1: जी
0: प्रोग्राम में आप अवश्य सुनिएगा अपनी पसंद का ये
1: जी
0: गीत।
1: जी बहन जी, कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ?
0: बिल्कुल कर लीजिए।
1: फूलचंद पाल जी हेमनकारी से, दिनकर सिंह हैं चित्रकूट धाम से, बेटा सिंह यादव जी हैं, प्रेमदास पावा जी हैं, और गोपाल ओझा जी हैं ककवासा मध्य प्रदेश से, और इन सभी को ये गाना डेडिकेट रहेगा बहन
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: जी।
1: नमस्कार बहन जी,
0: नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। देर आए दुरुस्त आए, लास्ट कॉलर हो तुम। नंदिनी
1: कॉलर हूँ मैं।
0: जी
1: ओ
0: हाँ।
1: माय गॉड, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ बताएं।
0: हाँ हो जाता है कभी कभी। और क्या हाल है
1: हाँ
0: तुम्हारे? बहुत टाइम बाद तुमसे बात हो रही है।
1: हाँ मैंने ना 6 मंथ बाद कॉल किया है
0: ओ
1: आज, क्योंकि
0: बाप रे, 6 महीने तक इतना लंबा इंतजार। और बताओ और क्या हाल है?
1: ठीक है मैम। और आप कैसी हैं?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं।
1: जी, तो आज तो मैं सॉन्ग सुनूंगी। मूवी का नाम है भूतनाथ रिटर्न।
0: अच्छा, भूतनाथ रिटर्न।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: सॉन्ग उसमें है ना, पार्टी तो बनती है।
0: हाँ।
1: ये वाला सॉन्ग सुनेंगे और डेडिकेट आपको रानू दीदी को रहेगा।
0: हाँ जी ठीक
1: और मैं
0: है।
1: एक बात और कहना चाहती हूँ।
0: हाँ
1: एक दीदी थी वंदना उपाध्याय है ना, वो हमें याद कर रही थी, उनके लिए थैंक
0: अच्छा, वंदना उपाध्याय।
1: यू। जी, वो हमको एक दिन याद कर रही थी तो उनके लिए थैंक
0: लेकिन वो अनाउंसर पैनल में तो नहीं है?
1: यू। नहीं, वो वहाँ की है, जबलपुर की। अनाउंसर
0: अच्छा, चलो
1: नहीं है, वो कॉलर है। जी
0: कॉलर है ना। चलो ठीक है ठीक है,
1: जी
0: तुम्हारे ये इन बातों के जरिए उन तक ये मैसेज पहुंच ही जाएगा। ठीक है
1: जी जी
0: नंदनी,
1: जी
0: चलो ओके बाय बाय।
1: ओके मैम, बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अनुमति दीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटल के बेस कैंप से श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों को लोकार्पण और स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थ स्थलों पर विकास के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। ये प्रोत्साहन रजिस्ट्री शुल्क में छूट, अनुदान या अन्य रियायत स्वरूप में दिया जा सकता है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा की हैं। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। विरासत फिल्म का गाना है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें हैं, संगीत है अनु मलिक का और गाने को लिखा है जावेद अख्तर ने। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीक, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने इस गाने को पसंद किया है।

ये फरमाइश हम तक आई है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा की। और आप सभी ने पसंद किया है फिल्म हद कर दी आपने का ये गाना, जिसमें आवाज़ है जसपिंदर नरूला और साथियों की। आनंद राज आनंद का संगीत है और गाने को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: What's your problem?
1: By the way, तुम्हें क्या करना है?
0: By the way, कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, don't bother me.
0: Really?

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और ये फरमाइश हम तक आई है खंडवा से संजय, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आप सभी ने पसंद किया है फिल्म सोनी महवाल का ये गाना। आशा भोसले, शब्बीर कुमार की आवाज़ है, आनंद पक्षी के बोल है और संगीत है अनु मलिक का।

अब सुनिए फिल्म हिना का गाना आवाज़ लता मंगेशकर और साथियों की। रविंद्र जैन का संगीत है और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन ने इस गाने को पसंद किया है। और साथ ही साथ ये फरमाइश हम तक आई है पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू ने इस गाने को पसंद किया है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राजनीति का गाना, कविता सेठ और साथियों की आवाज़ है। समीर ने गाने को लिखा है और आदेश श्रीवास्तव का संगीत है। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता है कटनी से संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बड़ई और फिरन यादव, मुन्ना खान और साथ ही साथ ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी और संजय पुरी ने इस गाने को पसंद किया है।

राजनीति फिल्म का गाना था आदेश श्रीवास्तव की आवाज़ थी, संगीत भी था आदेश श्रीवास्तव का और गाने को लिखा था समीर ने और उसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसमें सुनिए धारावाहिक हंसना मना है की दूसरी कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक लड़का था गरीब, उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। भगवान को किस पते पे चिट्ठी लिखता? लिख दी, भगवान जी स्वर्गलोक। बस उस चिट्ठी में लिखा, भगवान जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे को अपनी स्कूल की फीस देना है और किताब कापी खरीदना है, मेहरबानी करके 100 रुपये भेज दें। अब चिट्ठी साहब पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दी। वो डब्बे से निकल के मुख्य डाकघर पहुँची। वहाँ पे जो जितने भी पोस्टमैन थे उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और बड़ा कुछ हंसी का माहौल बन गया। वो चिट्ठी जो थी वो सबसे बड़े जो पोस्टमास्टर थे उन तक पहुँच गई। उन्होंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था, भगवान जी स्वर्गलोक, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ और मेरे को फलाना ये सब स्कूल के पैसे देना है और ये वो सब 100 रुपये व्यवस्था भेज दें करके। अब वो पोस्टमास्टर विचार कर रहे हैं, सभी पोस्टमैन विचार कर रहे हैं कि देखो कितना प्यारा बच्चा है ये, इसने भगवान से 100 रुपये मांगे, अब कहाँ भगवान आएंगे, कहाँ उसको 100 रुपये देंगे। तो सभी डाक कर्मियों ने एक विचार किया, चलो भाई चंदा किया जाए। किसी के पास 5 रुपये थे, किसी के पास 2 रुपये थे, किसी के पास 10 रुपये थे, ऐसा करके चंदा किया गया। 75 रुपये चंदा हुआ। उस कार्ड में, पोस्ट कार्ड में उस बच्चे ने अपना पता ज़रूर लिखा था, भाई पैसे कहाँ पहुँचाए भगवान, तो पता ज़रूर लिखा था। तो सभी लोगों ने क्या किया, वो जब 75 रुपये जुड़ गए तो एक मनी ऑर्डर उस बच्चे को कर दिया। बच्चे को 75 रुपये का मनी ऑर्डर मिल गया, बच्चा खुश। उसने फौरन एक चिट्ठी लिखी भगवान को, पता वही, भगवान जी स्वर्गलोक। समाचार ये था, भगवान जी आपका भेजा हुआ 75 रुपये में 75 रुपये मुझको मिल गया है। मुझे विश्वास है भगवान जी कि आपने 100 रुपये भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने 25 रुपये खा लिए। मैं अपने कुत्ते के साथ एक दिन सुबह सुबह घूमने निकला, बाग बगीचे गया, यहाँ गया, वहाँ गया, बड़ा अच्छा लग रहा था, कुत्ते को चैन में बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक एक सज्जन मिले मुझे रास्ते में, वो कहने लगे, क्यों इस गधे को कहाँ ले जा रहे? मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा देखो इतना बढ़िया कुत्ता है ये मेरे पास और ये आदमी उस कुत्ते को देख के गधा बोलता है। मैंने फौरन बोला, भाई साहब ये कुत्ता है गधा नहीं है। तो वो भाई साहब मुझसे बोलते हैं, मैं आपसे नहीं आपके कुत्ते से पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे? लड़का बोलता है,
2: बाबूजी हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे।
1: तो उनके पिताजी बोलते, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। अच्छा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम क्या करोगे?
2: हम जब डॉक्टर बन जाएंगे ना पापा, तो हम लोगों का इलाज करेंगे, गरीबों का खूब खूब इलाज करेंगे, उनका सब गरीबों का हम फ्री में इलाज करेंगे। तो उनके पिताजी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने जब वो लड़का बड़ा हुआ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया।
1: मेरे घर के सामने अचानक एक गधा मर गया। मैंने देखा गधा मर गया, वो मेरे घर के सामने। तो संबंधित विभाग को मैंने टेलीफोन किया कि भैया ये यहाँ हमारे घर के सामने है, वो गधा मर गया है, आप लोग मेहरबानी करके आके उसको उठाओ ले जाओ। तो संबंधित विभाग वाले टेलीफोन पे मेरे को क्या जवाब देते हैं, कहले भाई ऐसा है आपके घर के सामने मरा है, तो क्रियाक्रम अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा, कोई धर्म की भी बात है, आपके सामने गधा मरा है आपके घर के सामने, तो क्रियाक्रम आप कराओ। मेरा दिमाग खराब, मैंने टेलीफोन पे उसी समय उनको जवाब दिया, खैर वो क्या है कि क्रियाक्रम तो मैं गधे का कर लूंगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि उनके सभी रिश्तेदारों को पहले बता दूं, है ना। क्यों भीखु भिखारी, यहां आओ, ये लो 1 रुपये मेरी तरफ से। और एक बात बताओ, तुम आज यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास क्यों भीख मांग रहे हो? पहले तो तुम मांगते थे सब्जी मंडी में, वहाँ सब्जी बाजार के आसपास। तो भीखू भिखारी मुझसे बोलता, हाँ बाबू जी हम पहले वहाँ सब्जी बाजार में ही भीख मांगते थे, वो रेलवे स्टेशन के पास हम इसलिए आज भीख मांग रहे हैं कि परसों नरसों हमारी लड़की की शादी हुई, तो दहेज में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा दामाद को, तो मैंने सब्जी बाजार वाला एरिया उसको दहेज में दे दिया।
0: और अब एक और हंसोड़।

0: विनय जैन।
1: एक साहब अपने किसी निजी काम से बंबई पहुंचते हैं और अपने बंबई में रह रहे मित्र के घर पहुंच जाते हैं। सारा काम कार्यालय का निपटाने के बाद जैसे ही शाम को पहुंचे तो उनके दोस्त का घर और उनकी हालत देख के थोड़ा सा जो मेहमान है उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि साहब ये हमारा दोस्त है, इनका छोटा सा घर है, एक कमरे का फ्लैट और उसमें सोने के लिए एक ही पलंग, चार बच्चों का घर, हस्बैंड वाइफ मिला के छः लोग। तो जैसे ही शाम होती है, सोने का समय आता है तो थोड़ा संकोच में मेहमान आ जाता है और मेज़बान से बोलता है, साहब हमें थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, आपका छोटा सा घर है और एक ही पलंग है, ऊपर से ये चार बच्चे हैं। तो दोस्त तो फौरन जवाब देता है, हाँ चिंता की कोई बात नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। साहब भी थोड़ा आश्चर्य में कि इंतजाम कैसे हो जाएगा। जैसे ही रात में सोने का समय आता है तो मेज़बान पहले अपने इकलौते पलंग पर अपने दोनों बच्चों को लिटाता है। 10 मिनट बाद वो बच्चे सो जाते हैं तो दोनों मियाँ बीबी दोनों बच्चों को एक एक कंबल में लपेट के दीवार से टिका के खड़ा कर देते हैं। उसके बाद दूसरे दो बच्चों को पलंग में लिटा देते हैं। 10 मिनट बाद वो दो बच्चे भी सो जाते हैं, उनको भी एक एक कंबल में लपेट के दीवार में टिका के खड़ा कर दिया जाता है और मेहमान से मेज़बान बोलता है, साहब आपके लिए पलंग तैयार है, आप सो जाएं। तो मेहमान बोलता है कि और आप लोग? तो साहब बोलते हैं कि हम लोग की चिंता नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। भैया भी बहुत थके हारे रहते हैं, पलंग पर लेटते ही से सो जाते हैं। जैसे भैया की नींद खुलती है तो आप भी कंबल में लपटे दीवार से टेके खड़े रहते हैं और पति पत्नी दोनों सोते रहते हैं।
2: एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं। अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
1: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तकिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई। हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुँचते हैं तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1, नमस्ते साहब, कहाँ से आए? साहब इंडिया से आए हैं। हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो? साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA, मतलब इंडिया। बड़े शाबाश, स्वर्ग में जाओ। दूसरे को बुलाया, हाँ साहब कहाँ से? फ्रॉम जापान। जापान की स्पेलिंग जानते हो? साहब JAPAN। बड़े शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया, बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहाँ भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे, हाउ? इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए, कौवा काँव काँव।

0: कौवा काव काव। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ, जापान वाले को बुलाया। बोले साहब लिखिए बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए घोड़ा।
1: एक साहब स्कूटर में चले जा रहे थे, बड़े बढ़िया मजे से चले जा रहे थे, गाना वाना गाते हुए, हॉर्न बजाते हुए। अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका, ए स्कूटर वाले भाई गाड़ी रोको। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, किनारे किया अपने वाहन को, और बातचीत चालू हो गई। किन की? वाहन चालक की और ट्रैफिक पुलिसमैन की। ट्रैफिक पुलिसमैन बोलता है, हाँ ये गाड़ी, ये स्कूटर आपका है? तो वो बोलते हैं, हाँ साहब हमारे स्कूटर है, साहब हमारे स्कूटर है, यही हम स्कूटर चलाता है। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आपके पास इस स्कूटर के चलाने का लाइसेंस होगा? तो वो सज्जन बोलते हैं, यस सर आई एम लाइसेंस होल्डर, हम लाइसेंस रखता है, अभी अभी आपको देता है अगर आप बोलता तो। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है, बिल्कुल दिखाइए, हमको चेक करना है। उन्होंने अपने दाहिने जेब में हाथ डाला, बाएं में डाला, आगे डाला, पीछे डाला जेब में हाथ, लेकिन लाइसेंस हो तो मिले ना, लाइसेंस तो था ही नहीं। तो वो सज्जन बोलते हैं, साहब ऐसा ऐसा ट्रैफिक पुलिसमैन साहब है, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, वो क्या के लाइसेंस हम घर में छोड़ दिया, साहब हम घर में लाइसेंस छोड़ दिया है, अगर आप बोलता तो अभी ला के देता आपको और आपको दिखाता। तो ट्रैफिक पुलिसमैन समझदार था, उसने कहा नहीं गलत बात, आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान किया जाएगा। तो वो बोलते हैं सज्जन, ऐसा छोड़ दो साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम हार्डली सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली, आई एम विदाउट लाइसेंस दिस टाइम, अभी लेके आता सर देता। पुलिस वाला बोलता नहीं, आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, आपका चालान किया जाएगा, आप अपना नाम बताइए। तो बोलते हैं साहब ऐसे हमारा नाम मत पूछो, आप घबरा जाएगा साहब। क्या क्या घबरा जाएगा? आप अपना नाम बताइए, आपका चालान किया जाएगा। वो फिर से बोलते हैं, छोड़ दो साहब हमारा नाम मत पूछो, आपको घबराहट होएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों हार्ट अटैक हो जाएगा? आप अपना नाम बताइए, हम प्रेम से लिखेंगे उसको और तरीके से लिखेंगे। तो वो सज्जन स्कूटर वाले बोलते हैं, अच्छा ट्रैफिक पुलिस मैन आप हमारा नाम लिखो। हाँ कह लेंगे, बोलिए। हाँ लिखो, हाँ बोलिए, हाँ लिखो, हमारा नाम है श्री वेंकट मल्लिका रावर्जुन रावण राव वल्द सिंह सुन्नी चिन्नप्पा नागलिंगम वल्द मच्च कच्च वरा नरसिंह वामन पुरुष राम रामकृष्ण बुद्ध कलंक पिल्ले। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, पुलिस वाला क्या बोलता है, ये तुम्हारा नाम है? अच्छा एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से।
0: साहब एक इंटरव्यू की तरफ लिए चल रहा हूं, जहां दो लोग एक इंटरव्यू देने जाते हैं, जो एक इंटरव्यू देने में एक आदमी तो बहुत ज्यादा फटाफट जवाब दिया करता है, वो साहब की कुछ ऐसी कयामत कहिए कि जिस बात को आप उनसे पूछिए उसका जवाब तुरंत दे दिया करते हैं, और दूसरे जो साहब रहते हैं उनके साथ वो थोड़ा सा जवाब देने में घबराते हैं और कुछ डरपोक किस्म के, कुछ कम या मंद बुद्धि के रहते हैं, तो वो बहुत घबराए हुए रहते हैं। तो जैसे घबराते हुए उनसे बोलते हैं,
2: बोले भैया वो तो इंटरव्यू देने में बहुत डर लगता है भैया, हम तो किनारे चुपचाप बैठ जाएंगे जाके।
0: तुम चिंता मत करो, तुम सबसे पहले हमारे साथ चलो, समझे? दिलेर वाला बोलता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम जैसा हम तुमको बोल देंगे बैठा देंगे किनारे, तुम बैठे रहना, और जैसे ही मेरा नंबर आएगा इंटरव्यू का तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू दूंगा और तुम बिल्कुल वहीं बैठे रहना, और जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के आऊँगा तो मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, तो उसके बाद तुम इंटरव्यू देना। डरपोक वाला भी थोड़ा सा तसल्ली में आ जाता है कि भैया इंटरव्यू देंगे तो हमको समझा देंगे कि हमको क्या बोलना है। सबसे पहले दिलेर जो हर बात का जवाब फटाफट दिया करता है, अंदर जाता है, उससे पहला सवाल किया जाता है, वो सवाल कुछ इस तरह रहता है,
3: बोले साहब ये बताइए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बोले साहब शाहजहां ने करवाया था। बोले साहब ये बताइए कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ? बोले साहब प्रयास तो 1857 से थे लेकिन 1947 में हो ही गया। बोले साहब ये बताइए कि मंगल ग्रह पर प्राणी बसते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है लेकिन क्या है इसे आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। बोले ठीक है भैया, ये तो साहब फटाफट जवाब देते हैं, इनको बिल्कुल बाहर करो। बोले आप जाइए, आपको बाद में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, तो जैसे ही डरपोंक वाला किनारे बैठा था तो उसको जाके इनके कान में पता नहीं क्या फूंक दिया, तो डरपोंक वाला भी सीना तान के अंदर इंटरव्यू देने के लिए तैयार। डरपोंक वाले से पहला सवाल किया गया, बोले हाँ साहब आपका नाम बताइए। बोले साहब शाहजहां। बोले आपका जन्म कब हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि। बोले साहब प्रयास तो 1857 से था, 1947 में हो ही गया। बोले भैया पागल आगल हो गए क्या, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है लेकिन इसे सिद्ध नहीं कर पाए आज तक।
4: दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं। काहे भाई जे तो माँ मोड़ा समझो इतो बड़ो हो गो, अबे हम कितने साल पहले देखे थे तो कितो छोटो रहो, नहीं अब कितो बड़ो हो गो। हाँ भाई कहाँ बताए, अब जब मोड़ा हम आओ समझो कि बड़ो तो हो गो है मल, बिल्कुल ऐसो बिल्कुल भाई मोड़ा हम आओ सनक सो गो पगला सो हो गो। काहे भाई का बात है, तुम आओ तो मोड़ा पहले तो छोटो सो दिखा तो अब इतो बड़ो हो गो। का भाई बड़ो ना हुए तो बड़ो हो गो, नहीं तो जा संतोष कहाओ जो संतोष है तुम आओ। हाँ भाई संतोष ही तो है भाई, भगवान का सम इतो बड़ो होगा, इतो सो देखो तो हाँ इतो बड़ो कितो बड़ो होगा भाई, इसकी उम्र कितनी क्या ला गई। अब जहाँ समझ लो भाई कि इनकी उम्र तो हमें याद नहीं। नहीं भाई मतलब कौन से सन में पैदा हुआ ये पूछ रहे। नहीं भाई अब सनन तो हम नहीं जाने, अब भूल जाते हैं इतनी उम्र हो गई। मैंने जे समझ लो कि जौन दिना हमारी सास मरी थी वो इतना जो संतोष भाव। जा समझ लो कि उतने सास मरी है और उतने हमें संतोष भाव। नहीं मगर ना वो हम ना डेट पूछ रहे हैं कि किस डेट को हुआ है, किस सन में हुआ है, ये हमको जानना जरूरी है। नहीं भाई अब जे समझ लो कि डेट तो मालूम नहीं है, अब जे समझ लो कि जब हमारे छोटे वाले देवर खो मने चोरी के सजा में इल्जाम में सजा भई थी तब ही हम आप संतोष भाव, हमको संतोष भाव। नहीं भाई तुझे समझो कि कौन से साल में कहलाओगी, मने 74 में कहलाओगी, 75 में कहलाओ। नहीं भाई अब जब 75 और 78 तो हम नहीं जाने, मगर जब समझ लो कि जो हमारे जेठ सास के भी जेठ लगते ना तो वो जेठ को हमारे उनके घर में वो फांसी लगा के उनकी बड़ी बड़ी लड़कियां खत्म हो गई थी तब हमें संतोष बहुत हो। मैंने जब जब जे घटनाएं घटी हैं हमारे घर में कि कौन को फांसी लगवा के मरो कि कौन जे हमाओ हथकड़ी में चलो गो अंदर, तो ये जहाँ से जो काम भाव रहते हमें संतोष भाव।
0: दो व्यापारी जो एक गुड़ और राशन का सामान बेचा करता था और दूसरा जो सिर में और हाथ पैर में लगाने वाले तरह तरह के तेलों का व्यापार किया करता था, इन दो व्यापारियों की एक छोटी सी घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दोनों अपनी अपनी दुकान में बैठे रहते हैं और ग्राहकों की कमी से परेशान रहते हैं। ना तेल वाले के पास तेल का ग्राहक आ रहा है, ना गुड़ वाले के पास गुड़ का ग्राहक आ रहा है। अचानक दोनों एक ऐसा एक प्लान बनाते हैं कि गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है,
5: देखो तेल वाले तुम भी अपनी दुकान में खाली बैठे रहते हो और मैं भी अपनी दुकान में खाली बैठा रहता हूँ, तो क्यों ना एक काम किया करें, हम तुम्हारी दुकान में आएंगे ग्राहक बनकर और तुम हमारी दुकान में आओगे ग्राहक बनकर। उससे क्या होगा?
3: अरे साहब उससे क्या होगा, चार लोग देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि भैया की दुकान में ग्राहक आते जाते रहते हैं। ये आइडिया दोनों को जम जाता है तो गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है कि पहले तुम हमारी दुकान में कुछ खरीदने के लिए आओ। तेल वाला ऐसे ही उसकी दुकान में आता है और उससे सवाल करता है,
5: क्यों भाई साहब ये गुड़ कैसे दिए? ये साहब तरह तरह के गुड़ हैं, ये गुड़ 40 रुपए किलो है, ये गुड़ 30 रुपए किलो है और ये वाला गुड़ 35 रुपए किलो है। तो एक काम कीजिए साहब, ये वाला गुड़ हमको दे दिए 2 किलो बोतल में।
3: बोतल में? अरे यार तेल वाले व्यापारी भाई तुम्हारी बुद्धि भी बोतल ही में है, है? तुम तेल बेचते हो तो तुम्हें हमेशा बोतल याद रहती है, गुड़ कभी बोतल में बेचा जाता है? अरे गुड़ के लिए आदमी घर से थैला लाता है, थैला थैला, समझे? तुमको ये बोलना चाहिए कि भाई हमको थैले में गुड़ चाहिए तो तुम बोल रहे हो कि बोतल में है। तुम एक फिर से जाओ अब फिर से आना हमारी दुकान में, हम बैठे अब सुधार के बोलना। दोबारा तेल वाला आता है गुड़ की दुकान में, फिर वही सवाल करता है, साहब वो गुड़ चाहिए था? हाँ कितना चाहिए था, कौन सा चाहिए था साहब? ये वाला क्या भाव? हाँ ये
5: 30 रुपए किलो है। साहब ये वाला 2 किलो दे दो,

0: बोतल में।
1: अरे यार प्रण, फिर बोतल में बोल दिया, तुम बोतल क्यों जोड़ते हो साथ में? एक बात समझ में नहीं आती, तुम व्यापारी हो तेल के है? तो तुम अच्छा एक काम करो, तुम हमारी सीट में आके बैठो, हमारी दुकान में तुम बैठो और हम अपनी ही दुकान में तुम्हारे सामने आके ये जाके सवाल करते हैं। देखो कैसे बोलते हैं, देखो तुम ऐसे बैठ जा ऐसे। हाँ अब देखो हम आते हैं, हम बोतल बोलेंगे ही नहीं, हम कैसे बोलेंगे? देखो हाँ भाई साहब, ये गुड़ कैसे दिया?
2: गुड़ साहब 20 रुपए किलो। हाँ तो 2 किलो बुड़ दो, 2 किलो तौल दो बस।
1: तो तेल वाला फौरन जवाब देता है, बोतल लाए हो?
3: हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
3: अरे हंसना मना है,
1: हंसना मना है।
3: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं। अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
4: चुटकुले सुनना सुनाना संजय गायकवाड़ की आदत में शुमार है, मगर अंदाज बड़ा अलग। सुनेंगे तो मजा आ जाएगा, आइए सुनते हैं।
5: अभी शादियों का सीजन चल रहा था साहब, तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया। श्रीवास्तव जी के यहाँ रिसेप्शन हमें अटेंड करना था, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया। मैंने दरवाजे पे आवाज दी, तिवारी जी, तिवारी जी। तो दरवाजा खोला, तिवारी जी रात को 8:30 बजे सो के उठे। अरे हमने ठीक से तो हो जाओ यार। कहो भाई कैसे? अरे हमने कहा यार श्रीवास्तव जी क्या रिसेप्शन में चलना नहीं है क्या? तो तिवारी जी हमसे कहने लगे, यार भैया हम ना चल सकेंगे यार, हमें क्या है चश्मे के बगैर कुछ दिखता नहीं है, हैं शाम के समय हमें रतौंधी आती है, तो क्या है हमारा चश्मा हो गया, फूट गया है, तो इसलिए हम तो चल नहीं सकेंगे। अरे हमने कहा हद कर रहे हैं तिवारी जी, आप हमारे साथ में चलो, हैं कोई गिद्ध भोजन तो है नहीं, डाइनिंग टेबल पे भोजन लगा रहेगा, आप चलना, बैठ जाना हमारे बाजू में और चल के भोजन शुरू कर देना। तो तिवारी जी हमसे बोले, लेकिन यार भैया ये कैसे पता चलेगा यार कि सबने शुरू कर दिया? हमने कहा हद करते हो आप, जब सब लोग शुरू कर देंगे तो धीरे से हम आपको कोहनी मार देंगे, आप समझ लेना मामला शुरू हो गया है, हाथ का इशारा हम आपको कर देंगे धीरे से। तो तिवारी जी बोले, हाँ यार ये बहुत बढ़िया स्टाइल यार। सभी लोग मेहमान आ चुके थे श्रीवास्तव जी के यहाँ, हम पहुँचे साथ में तिवारी जी पहुँचे, सभी की थालियों में मीठा मिष्ठान रखा जा चुका था। उसी वक्त मेरे गले पे यहाँ एक मच्छर बैठा, मैंने मच्छर को भगाया, बाजू में तिवारी जी बैठे थे, धोखे से कोहनी लग गई। भैया क्या समझे कि शुरू? हमें बड़ा अपमान लगा, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, तो ये क्या समझी कि लोग जल्दी जल्दी खा रहे, तो जो जल्दी जल्दी खाने लगे और ज्यादा अपमान। हमने मना करने के लिए इनको तीन कोहनी मारी, तो जो कहते का भैया गायकवाड़ का लूटा मारी मच गई का। अब साहब एक बहुत अच्छा व्यंग मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय चुनाव की सरगर्मी है, एक नेता जी अपने 4 साथियों के साथ जनसंपर्क के लिए निकले और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना और वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। भैया जी याद रखना 24 तारीख को भूलना नहीं, बहन जी हाँ आप भी याद रखना, भाई लालटेन याद रखना भूलना नहीं, माता जी 24 तारीख को भूलना नहीं। तो माता जी न जाने कौन से मूड में थी, अचानक कहने लगी,
6: अरे जाओ रे तुम्हारे ऊपर से तो हमारा विश्वास ही उठ गया, 5 साल में एक बार तो शकल दिखाते हो और नेता बन जाने के बाद में सब बिल्कुल जनता का ध्यान ही भूल जाते हो, और हमें तो बिल्कुल तुम लोग को कोई को वोट नहीं देना, सब ने अपना अपना घर भरा है और हम किसी को वोट नहीं देंगे, समझ गए ना, हमें तो भ्रष्टाचारियों से बिल्कुल सख्त नफरत है। तो नेताजी को गुस्सा आ गया, लेकिन उनने अपनी नेता बुद्धि दौड़ाई और बहुत सहज तरीके से माता जी के सामने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं माता जी आप ये कैसी बात कर रही हैं, हैं आप बताइए देश में ये इतने सारे नेता हैं, ये 5 उंगलियां हैं मेरे हाथ की, सब एक समान है क्या? नहीं है, हैं देखो ऐसे ही देश में बहुत सारे नेता हैं, तो कोई लोग भ्रष्टाचारी हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और जो नहीं है वो ही तो हम हैं। आप तो 24 तारीख को हमारी को वोट दो। अब व्यंग्य पे आइए साहब, बिल्कुल मौलिक व्यंग्य दे रहा हूँ। माता जी नेता जी की बात सुन के कहने लगी,
7: बेटा मजबूरी महिला को बता रहे हो कि

0: जे उंगलियां छोटी हैं कि बड़ी हैं, मैंने भी जे बाल धूप में सफेद नहीं करे। मैं भी जानती हूँ कि उंगलियां छोटी बड़ी हैं, लेकिन आज से तुम भी इतना जान लो कि जब खाती हैं तो सब इकट्ठी तो हो जाती हैं।
1: और साहब, मिमिक्री का एक छोटा सा मौलिक आइटम मैं पेश कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में कुत्ता पाल के रखा है। हम लोग मराठी भाषा में बात करते हैं, हमारे घर का कुत्ता। हमारे हिंदुस्तान का संस्कार देखे कि हमारी भाषा को देख सुन के मराठी बोलने लगा। हमारे घर के थोड़ा सा आगे एक डेनियल परिवार रहता है, क्रिश्चियन फैमिली रहती है। उनके घर में थ्रू आउट अंग्रेजी का चलन है, उन लोग अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। उनके घर का कुत्ता जो है साहब, उनकी अंग्रेजी भाषा को देख सुन के अंग्रेजी बोलने लगा। सुबह का वक्त मैं अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकला और डेनियल साहब अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकले। हम और डेनियल साहब आपस में मिले तो बातें शुरू हो गईं, लेकिन मेरे घर के कुत्ते को पहली बार डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने देखा तो उसने अंग्रेजी में प्रश्न किया और हमारे घर के कुत्ते ने मराठी में जवाब दिया। ये अंग्रेजी प्लस मराठी, ये मौलिक आइटम मिमिक्री का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनेंगे साहब, पहले सुबह का वक्त मेरे घर का कुत्ता डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने जैसे ही हमारे घर के कुत्ते को देखा तो अंग्रेजी में प्रश्न किया। कौन हो तुम? हमारे घर का कुत्ता तुरंत मराठी में बोला, भाऊ।
2: और दोस्तों, हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रदेश के 18 जिलों में नर्मदा जयंती कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब नर्मदा समग्र की बैठक हर महीने होगी। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पथ पर मार्ग संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में इन दिनों स्कूल चलो अभियान चल रहा है। 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान अधिकाधिक सांदीपनी विद्यालय भवनों का लोकार्पण एवं स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कराया जाए ताकि विद्यार्थियों को इसी सत्र में अधिकतम लाभ मिल सके। प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की नामांकन भरने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना के साथ नतीजों की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी धार्मिक महत्व के तीर्थस्थलों पर विकास के लिए धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटल मार्गों से शुरू हो गई है। 28 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान पूरे देश से लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटल के बेस कैंप से रवाना हुआ। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्वकप का फाइनल मुकाबला रविवार को लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा और बीसीसीआई ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। आप सुन रहे थे इस घंटे

0: की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

गलतियों पर रोने से कुछ नहीं बदलता, उनसे मिली सीख जिंदगी बदल सकती है। अतीत से सबक लेकर वर्तमान को जीना ही एक बेहतर भविष्य की नींव है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का महिला सभा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी बहन मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बिल्कुल सही बात है, यदि हम अपने वर्तमान में जीना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से हम सुखी हो जाएंगे। ना तो आने वाले कल का सोच करें, ना ही बीते हुए कल का अफसोस, मात्र वर्तमान को सुधारने का प्रयास करें। और अगर वर्तमान सुधारना है तो निश्चित रूप से हमें एक स्टार्टअप की जरूरत होती है। और स्टार्टअप अगर छोटे से उद्योग से हो, अपने घर से हो, तो हम महिलाओं के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 16 जनवरी 2016 को देश में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू किया गया था। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को शुरुआती 3 वर्षों तक आयकर यानी इनकम टैक्स में छूट और एंजल टैक्स से छूट मिलती है। पर्यावरण और श्रम कानूनों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्व प्रमाणन की सुविधा भी दी जाती है। फंड ऑफ फंड्स और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के जरिए वित्तीय और सीड फंडिंग का प्रावधान भी है। मैंने स्टार्टअप की पात्रता भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्थापित होना चाहिए। कंपनी के रजिस्ट्रेशन या स्थापना को 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। कंपनी नए उत्पादों, सेवाओं या प्रक्रियाओं का विकास, विस्तार या व्यवसायीकरण की दिशा में काम कर रही हो। स्टार्टअप इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसका उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित करना है। नए स्टार्टअप्स के आने से कई उद्योग स्थापित होंगे, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में बेरोजगारी की जो समस्या है वो भी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को बढ़ावा, सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में हर युवा को, हर महिला को लाभ मिलेगा जो काम करने का इच्छुक है। घरों से ही लघु कुटीर उद्योग संचालित करना चाहते हैं उन युवाओं को और उन महिलाओं को भी एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलेगा। उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी के लोन मिल पाए और अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बाजार में बेच पाएंगे। जब भारत में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और हस्त निर्मित वस्तुओं को ऑनलाइन बाजार में भेजा जाएगा तो इससे भारत को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी और सरकार की आय भी बढ़ेगी। स्टार्टअप इंडिया सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं में से एक है, जिसने स्वर्णिम भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहनों, आज जरूरत है स्टार्टअप को विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्रोत्साहित करने की। आज व्यावसायिक शिक्षा को व्यवहार में उतारने की जरूरत है, जिससे महिलाओं में और युवाओं में उद्यमशीलता का विकास हो, वे इसकी अहमियत को समझें और अवसरों का लाभ उठाएं। सरकार को आवश्यकता है कि स्टार्टअप से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर प्रसार हो, सरकारी निजी बैंकों का सशक्तिकरण हो जिससे ऋण प्राप्त करने में आसानी हो, हर ग्रामीण शहरी क्षेत्र के युवा, अशिक्षित महिला पुरुष को इस योजना की बारीकियों के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वे भविष्य में रोजगार का निर्माण कर सकें। मैंने ये तो थी संक्षिप्त सी चर्चा, और अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं फिल्म आशिकी 2 में अरिजीत सिंह की आवाज में ये सुरीला सा गीत। गीत और संगीत मिथुन का है।

0: बहनों, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता, हमारा समाज को देखने का नजरिया, हमारी चारों ओर फैली हुई विरक्तियां, प्रकृति का मनोरम दृश्य जो आत्मा को छू जाता है, हमारी भावनाएं और हमारा मानसिक चित्रण जब कलम के सहारे कागज पर उतर आता है तो वह कविताओं का रूप ले लेता है। और ये कविताएं उस कवि की मनोदशा को व्यक्त करती हैं, उसकी सोच को निखारती हैं, उसकी भावनाओं को व्यक्त करती हैं जो उन्हें लिखता है। तो चलिए, ऐसी ही कुछ कविताओं का संग्रह लेकर आए हैं हम अपने कार्यक्रम काव्य पाठ के अंतर्गत। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कवित्री सौम्या श्रीवास्तव से उनके विचार उनकी कविताओं के रूप में।
1: नमस्कार, मैं सौम्य श्रीवास्तव आज आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से आपके बीच एक गीत लेकर आई हूँ। ये गीत युवाओं के उत्साहवर्धन का गीत है, प्रोत्साहन का गीत है। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा मन बहुत उदास होता है, मन में अवसाद होता है और तरह तरह के विचार मन में आते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कभी आप उत्साहवर्धन का गीत गुनगुना लेते हैं तो आपका मन कहीं ना कहीं इस अवसाद से बाहर आ जाता है। लीजिए, मैं आपको गीत सुनाती हूँ, सुनिएगा। मन

घन घटाएं छा रही हो, जब दिशाएं संशयों की गर्जनाएं गा रही हो, तब स्वयं दीपांकुरित हो ज्योति बन मन, तब स्वयं दीपांकुरित हो ज्योति बन मन, दीप्ति की संभावना के गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ, गीत गाओ। जब लगे कि पंथ लंबा है, शिखर अब दूर होगा, और जीवन का समर निष्ठुर कठिन भरपूर होगा, जब लगे कि पंथ लंबा है, शिखर अब दूर होगा, और जीवन का समर निष्ठुर कठिन भरपूर होगा, तब हिमालय सा अचल बन धैर्य धर्मन, तब हिमालय सा अचल बन धैर्य धर्मन, होके अविचल साधना के गीत गाओ, मन प्रखर हो।

और निराशा मौन होकर चेतना संघारती हो, तब पुनः उठकर नई हुंकार भर मन, तब पुनः उठकर नई हुंकार भर मन, नव विजय नव आस था के गीत गाओ, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ गीत गाओ। हर अंतिम सत्य नाहे, पंथ का व्यवधान भर है, स्वेद पीड़ा और साहस ही विजय का मूल स्वर है। हर अंतिम सत्य नाहे, पंथ का व्यवधान भर है, स्वेद पीड़ा और साहस ही विजय का मूल स्वर है। उठ स्वयं इतिहास के नव पृष्ठ रच मन, उठ स्वयं इतिहास के नव पृष्ठ रच मन, नव विजय की कामना के गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ गीत गाओ, मन प्रखर हो गीत गाओ गीत गाओ। जब प्रलोभन स्वर्ण मृग बन मार्ग बाधित कर रहा हो, और अधर्मी पथ सरल कर मोह जागृत कर रहा हो, जब प्रलोभन स्वर्ण मृग बन मार्ग बाधित कर रहा हो, और अधर्मी पथ सरल कर मोह जागृत कर रहा हो, तब विवेकी राम बनकर शांत हो मन, तब विवेकी राम बनकर शांत हो मन, धैर्य के सद्भावना के गीत गाओ, धैर्य के सद्भावना के गीत गाओ, गीत गाओ गीत गाओ गीत गाओ, मन प्रखर हो।

जब हम जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे संघर्ष होते हैं, लेकिन जीवन का नाम ही चलते रहना है, तो हमें उन चुनौतियों को, उन संघर्षों को पार करके बस आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। इसी पर केंद्रित मेरा एक गीत है, सुनिएगा। सैकड़ों तूफान होंगे, सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। शांति पथ

सैकड़ों तूफान होंगे। शांत पुरवाई के झोंके हो सदा बहते रहो तुम, शांत पुरवाई के झोंके हो।

अमिट विश्वास, हर कठिनाई को सहते रहो तुम। हर परिस्थिति में तुम्हें दृढ़ शैल बन ढलना पड़ेगा। हर परिस्थिति में तुम्हें दृढ़ शैल बन ढलना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा। सैकड़ों तूफान होंगे, बन अडिग लड़ना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुम

सब सिर्फ मृग तृष्णा मिलेगी। छूट जाएंगे महल सब सिर्फ मृग तृष्णा मिलेगी। तुम करोगे आस पावस की।

परीक्षा जानकी बन, है परीक्षा जानकी बन, अग्नि में जलना पड़ेगा। शांति पथ के ऐ पथिक तुमको बहुत चलना पड़ेगा, सैकड़ों तूफान होंगे, सैकड़ों

बहनों, अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ सौम्या श्रीवास्तव से। बहनों, जितना जरूरी गीत संगीत और मनोरंजन है हमारे मन और मस्तिष्क के लिए, उतना ही जरूरी योग और व्यायाम है हमारे शरीर के लिए। जी हाँ, आज की इस आधुनिक दुनिया में अनगिनत महिलाओं को लगातार अपने करियर, पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच उलझना पड़ता है, जिससे उनके पास अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बहुत कम या बिल्कुल भी समय नहीं बचता। महिलाओं के लिए योगासन तनाव कम करने, भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार करने, अच्छी नींद को बढ़ावा देने और सकारात्मक स्वास्थ्य आदतों को विकसित करने में मदद करते हैं। बहनों, नियमित रूप से योग करने से संतुलन और लचीलापन बेहतर होता है, हमारा पोस्चर सुधर जाता है। महिलाओं में किशोरावस्था से लेकर मातृत्व और मेनोपॉज वाली उम्र से लेकर बुढ़ापे तक कई दौर से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग जहां शारीरिक तौर पर संतुलन बनाए रखता है, तो वहीं इससे मानसिक तौर पर शांति भी मिलती है। बहनों, योगासन प्राणायाम महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक करता है, बल्कि मानसिक परिवर्तन और शारीरिक असंतुलन जैसी आने वाली समस्याओं से निपटने में भी बेहद कारगर है। महिलाओं के लिए सबसे अच्छे व्यायामों में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और योग का संतुलित मिश्रण जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। योग जैसे त्रिकोणासन, वीरभद्रासन करके हम अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत कर सकते हैं। मोटापा, थायराइड और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में भी योग और प्राणायाम अत्यंत लाभकारी हैं। मैनो, हम सभी को

रोजाना अपनी क्षमता के अनुसार 20 से 30 मिनट योगासन और प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना चाहिए। नियमित योगाभ्यास से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, जोड़ों में लचीलापन बढ़ता है और शारीरिक मुद्रा में सुधार होता है। योग ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल की धड़कन को नियंत्रित कर हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में भी मददगार है। बहनों, ये शरीर की मांसपेशियों को टोन करता है, सहन शक्ति बढ़ाता है और पाचन में सुधार करके वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। ध्यान और श्वास नियंत्रण मस्तिष्क को शांत करते हैं, जिससे फोकस और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और गठिया माइग्रेन जैसी पुरानी समस्याओं में भी योग बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो बहनों, योग करें, निरोग रहें और जब आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगी तो निश्चित रूप से योग का जादू आपके सर चढ़कर बोलने लगेगा। आप खुद स्वतः इसके लिए समय को चुराने लगेंगी और योग में रंगीली हो जाएंगी।

मैंने अभी हम सुन रहे थे फिल्म कुदरत में लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीत आरडी वर्मन का था। मेरे देखिए ना, हम सभी गर्मियों में अपने पूरे साल के लिए अनाज का भंडारण करते हैं, और यदि उसका भंडारण सही तरीके से ना करें तो उसमें घुन या कीड़े लग सकते हैं, और इसका विशेष ध्यान हमको रखना ही पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो बाद में हमारा अनाज घुन जाएगा। अनाज का सुरक्षित भंडारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नमी और तापमान को नियंत्रित रखना। अनाज में 10% से कम नमी होनी चाहिए। भंडारण के डिब्बों या कमरों को पूरी तरह एयर टाइट यानी हवा बंद रखें, और बोरियों को जमीन या दीवारों से सटाकर ना रखें। मैंने अनाज को 2 से 3 दिन

धूप में सुखाएं ताकि उसकी नमी का जो स्तर है वो 10% से नीचे आ जाए। नमी होने पर फंगस और कीड़े जल्दी लगते हैं। नीम की पत्तियां या नीम के पाउडर का उपयोग भी हम कर सकते हैं जो कीड़ों को दूर भगाता है। आप अनाज में थोड़ा सा सरसों का तेल या सूखी लकड़ी की राख भी मिलाकर रख सकते हैं। यदि आप बड़ी मात्रा में भंडारण कर रहे हैं तो कीटनाशक गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि गोली रखने के बाद कंटेनर या कमरा पूरी तरह से एयरटाइट हो। गोदाम या भंडारण कक्ष के सभी संभावित रास्तों को जाली या सीमेंट से बंद कर दें। भंडार गृह में पर्याप्त हवा के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तापमान सामान रह सके। अगर आप बहनों इतनी सावधानी के साथ अनाज का भंडारण करेंगी तो निश्चित रूप से आपका अनाज पूरे साल सुरक्षित और पौष्टिक रहेगा। बहनों अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। चलते चलते आपके साथ दो पंक्तियां। जल्दी जज करना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल। बस कोशिश इतनी हो कि लोगों को सुन सकें। सिर्फ

अनाज का भंडारण करेंगी तो निश्चित रूप से आपका अनाज पूरे साल सुरक्षित और पौष्टिक रहेगा। बहनों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। चलते चलते आपके साथ दो पंक्तियां। जल्दी जज करना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल। बस कोशिश इतनी हो कि लोगों को सुन सकें, सिर्फ देखकर कोई राय ना बनाएं। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

0: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति लोक संगीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए जयंत विश्वकर्मा के स्वर में साक्षरता बेटी पढ़ाओ गीत।

जयंत विश्वकर्मा के स्वर में अभी आपने सुना साक्षरता बेटी पढ़ाओ गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में साक्षरता गीत।

अभी आपने सुना किशन प्रसाद रैकवार के स्वर में साक्षरता गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए सत्यनारायण तिवारी के स्वर में ये भजन।

सत्यनारायण तिवारी के स्वर में अभी आपने सुना कृष्ण भजन। लीजिए अब सुनिए एक भजन, स्वर सत्यनारायण तिवारी का है।

0: सत्यनारायण तिवारी के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। श्रोताओं, एक आवश्यक सूचना सुनिए। गठिया रोग एवं अर्थराइटिस और रूमेटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है, गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन व समय एक बार पुनः सुने, दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच। फ़ोन नंबर है 2660901 और 2660902 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में लीजिए सुनिए फिल्म त्रिशूल का गीत। गीत साहिर का है और संगीत है खयाम का।

जूली। इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत आनंद बख्शी का है और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

है ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स

का लोकार्पण और 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखना शामिल है। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पावन अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर समस्त शिवभक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की तरह यह यात्रा सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। श्री मोदी ने इस अवसर पर एक संस्कृत श्लोक भी साझा किया जिसका अर्थ है कि जिन भगवान के स्वरूप को वाणी बुद्धि और कठोर तपस्या से भी नहीं जाना जा सकता वे केवल भक्ति भाव से प्राप्त होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा बर्फानी आस्था भक्ति और सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं। अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था अनंतनाग जिले के नुनवान और बालटाल बेस कैंप से पवित्र गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। 57 दिनों की ये पावन यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व पर संपन्न होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर शैक्षणिक पद शामिल हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के मदापट्टना इलाके की ग्रेनाइट खदान में कल हुए हादसे में प्रदेश के अनूपपुर जिले के 5 मजदूरों सहित कुल 7 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने जांच के निर्देश दिए हैं और खदान मालिक ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख तथा घायलों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने पर सहमति जताई है। प्रदेश के श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी घटना की जानकारी मांगी है और कर्नाटक प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा और जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सेहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ है। वन विभाग की विशेष टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मानसून कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज से भील चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की शलाका प्रदर्शनी शुरू हुई। शिवपुरी के नरवर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 6 स्थानों से 400 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की गई। बुरहानपुर के निर्माण रेंज के DIG ने अपराध समीक्षा की बैठक ली और महिला अपराधों तथा साइबर क्राइम पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 2 मासूम बच्चों सहित एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16

0: में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: बोलो बाबा अमरनाथ की जय।
2: बाबा अमरनाथ बम बम।
3: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
4: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
5: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
3: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश फाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने

0: बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और ये सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।

0: मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से

0: बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
1: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, जिसे हमने लिया है फिल्म बेवफा से। आवाज़ अभिजीत की है, गीत लिखा है समीर ने और इसे संगीत से सजाया है नदीम श्रवण ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। साथ ही इसी गीत को सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म बेवफा का ये गीत।

गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म खून भरी मांग का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है साधना सरगम ने, बोल इंदिवर के हैं और संगीत है राजेश रोशन का। लीजिए सुनिए।

इस समय आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और कार्यक्रम में अब बारी है आपके पसंद के एक और गीत की। फिल्म खिलाड़ी का गीत सुनिए आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा है महेंद्र दहलवी ने और इसे संगीतबद्ध किया है जतिन ललित ने। सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का फिल्म खिलाड़ी का ये गीत।

राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, रिया स्वीटी चितरंजन, रितिका सरोज, आरती और ऋषभ राजावत ने सुनना चाहा है फिल्म कसूर का गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं अलका याग्निक और कुमार सानू ने। नदीम श्रवण के संगीत से सजा ये गीत लिखा है समीर ने। लीजिए सुनिए।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पावन अमरनाथ यात्रा के शुभारंभ पर समस्त शिवभक्तों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन की ये यात्रा सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा बर्फानी आस्था भक्ति और सनातन संस्कृति के गौरव के प्रतीक हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु के मदापट्टना इलाके की ग्रेनाइट खदान में कल हुए हादसे में प्रदेश के अनूपपुर जिले के 5 मजदूरों सहित कुल 7 लोगों की मौत हुई है जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4 से 8 इंच तक की बारिश हो सकती है। और भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। इसके अंतर्गत सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीत और आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में। रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल जगत के अंतर्गत आज सुनिएगा ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं, इस विषय पर आलोक मिश्रा से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है मनीष गजभिये। और क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत

का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे से। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लीजिए अब सुनिए किशन प्रसाद रैकवार के स्वर में ये साक्षरता गीत।

इस साक्षरता गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे सत्यनारायण तिवारी के गाए भजन। तो कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए सत्यनारायण तिवारी के स्वर में ये भजन।

सत्यनारायण तिवारी के स्वर में अभी आपने सुना कृष्ण भजन। लीजिए सुनिए सत्यनारायण तिवारी के स्वर में ये भजन।

सत्यनारायण तिवारी के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण की आवाज़ों में ये है फिल्म दिल है तुम्हारा का गीत। गीत समीर का है और संगीत है नदीम श्रवण का।

चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा, जतिन ललित का संगीत से सजाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी।

मिस्टर आशिक, इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत लिखा है इंदीवर ने और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आशिकी का गीत। गीत समीर का था और संगीत था नदीम श्रवण का।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में ये है फिल्म दिल है के मानता नहीं का गीत। संगीतबद्ध किया है इसे नदीम श्रवण ने।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: वार्षिक अमरनाथ यात्रा आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। यात्रा नुनवान, पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से सुचारू रूप से चल रही है। सुबह सुबह बेस कैंप से निकले हजारों यात्री बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच कठिन रास्तों पर पैदल यात्रा करते हुए देखे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में मदापट्टना इलाके की ग्रेनाइट खदान में कल हुए एक हादसे में प्रदेश के अनूपपुर जिले के 5 मजदूरों सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भोपाल के जनजाति संग्रहालय में आज से भील चित्रकार सुनीता परमार के चित्रों की शलाका प्रदर्शनी शुरू हुई है और मौसम विभाग ने आज खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है, शाम के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने, और फिल्म का नाम है बेमिसाल।

निकाह इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज़ में। गीत हसन कमाल का था और संगीत था रवि का। लीजिए अब सुनिए दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत लिखा है मजरूह ने और संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने।

ये वादा रहा। इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में। गुलशन बावरा के बोलों को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, शाम के 4:30 हुए हैं। प्रस्तुत है संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की दूसरी कड़ी।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: एक लड़का था गरीब, उसने भगवान को चिट्ठी लिखी। भगवान को किस पते पे चिट्ठी लिखता, लिख दी भगवान जी स्वर्गलोक। बस उस चिट्ठी में लिखा, भगवान जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे को अपनी स्कूल की फीस देना है और किताब कापी खरीदना है, मेहरबानी करके 100 रुपये भेज दें। अब चिट्ठी साहब पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दी, वो डब्बे से निकल के मुख्य डाकघर पहुँची। वहाँ पे जो जितने भी पोस्टमैन थे उन्होंने उस पत्र को पढ़ा और बड़ा कुछ हंसी का माहौल बन गया। वो चिट्ठी जो थी वो सबसे बड़े जो पोस्टमास्टर थे उन तक पहुँच गई। उन्होंने उसको पढ़ा, उसमें लिखा था भगवान जी स्वर्गलोक, मैं बहुत गरीब बच्चा हूँ और मेरे को फलाना ये सब स्कूल के पैसे देना है और ये वो सब 100 रुपये व्यवस्था भेज दें करके। अब वो पोस्टमास्टर विचार कर रहे हैं, सभी पोस्टमैन विचार कर रहे हैं कि देखो कितना प्यारा बच्चा है ये, इसने भगवान से 100 रुपये मांगे, अब कहाँ भगवान आएंगे, कहाँ उसको 100 रुपये देंगे। तो सभी डाक कर्मियों ने एक विचार किया, चलो भाई चंदा किया जाए। किसी के पास 5 रुपये थे, किसी के पास 2 रुपये थे, किसी के पास 10 रुपये थे, ऐसा करके चंदा किया गया, 75 रुपये चंदा हुआ। उस कार्ड में, पोस्ट कार्ड में उस बच्चे ने अपना पता ज़रूर लिखा था, भाई पैसे कहाँ पहुँचाएं भगवान, तो पता ज़रूर लिखा था। तो सभी लोगों ने क्या किया, वो जब 75 रुपये जुड़ गए तो एक मनी ऑर्डर उस बच्चे को कर दिया। बच्चे को 75 रुपये का मनी ऑर्डर मिल गया, बच्चा खुश, उसने फौरन एक चिट्ठी लिखी भगवान को, पता वही, भगवान जी स्वर्गलोक। समाचार ये था, भगवान जी

0: आपका भेजा हुआ 75 रुपये में 75 रुपये मुझको मिल गया है। मुझे विश्वास है भगवान जी कि आपने 100 रुपये भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वालों ने 25 रुपये खा लिए। मैं अपने कुत्ते के साथ एक दिन सुबह सुबह घूमने निकला, बाग बगीचे गया, यहाँ गया वहाँ गया, बड़ा अच्छा लग रहा था कुत्ते को चैन में, बड़ा अच्छा लग रहा था। अचानक एक सज्जन मिले मुझे रास्ते में, वो कहने लगे, क्यों इस गधे को कहाँ ले जा रहे? मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा देखो इतना बढ़िया कुत्ता है ये मेरे पास, और ये आदमी उस कुत्ते को देख के गधा बोलता है। मैंने फौरन बोला, भाई साहब ये कुत्ता है गधा नहीं है। तो वो भाई साहब मुझसे बोलते हैं, मैं आपसे नहीं आपके कुत्ते से पूछ रहा हूँ। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे, क्या बनोगे? लड़का बोलता है,
1: बाऊजी हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे।
0: तो उनके पिताजी बोलते, वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। अच्छा जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तो तुम क्या करोगे?
1: हम जब डॉक्टर बन जाएंगे ना पापा, तो हम लोगों का इलाज करेंगे, गरीबों का खूब खूब इलाज करेंगे, उनका सब गरीबों का हम फ्री में इलाज करेंगे।
0: तो उनके पिताजी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने जब वो लड़का बड़ा हुआ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। मेरे घर के सामने अचानक एक गधा मर गया। मैंने देखा गधा मर गया वो मेरे घर के सामने, तो संबंधित विभाग को मैंने टेलीफोन किया कि भैया ये यहाँ हमारे घर के सामने है, वो गधा मर गया है, आप लोग मेहरबानी करके आके उसको उठाओ ले जाओ। तो संबंधित विभाग वाले टेलीफोन पे मेरे को क्या जवाब देते हैं, कहले भाई ऐसा है आपके घर के सामने मरा है, तो क्रियाक्रम अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा, कोई धर्म की भी बात है, आपके सामने गधा मरा है आपके घर के सामने, तो क्रियाक्रम आप कराओ। मेरा दिमाग खराब, मैंने टेलीफोन पे उसी समय उनको जवाब दिया, खैर वो क्या है कि क्रियाक्रम तो मैं गधे का कर लूंगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि उनके सभी रिश्तेदारों को पहले बता दूं, है ना। क्यों भीखू भिखारी, यहां आओ, ये लो 1 रुपये मेरी तरफ से। और एक बात बताओ, तुम आज यहाँ रेलवे स्टेशन के आसपास क्यों भीख मांग रहे हो? पहले तो तुम मांगते थे सब्जी मंडी में, वहाँ सब्जी बाजार के आसपास। तो भीखू भिखारी मुझसे बोलता, हाँ बाऊ जी हम पहले वहाँ सब्जी बाजार में ही भीख मांगते थे, वो रेलवे स्टेशन के पास हम इसलिए आज भीख मांग रहे हैं कि परसों नरसों हमारी लड़की की शादी हुई, तो दहेज में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा दामाद को, तो मैंने सब्जी बाजार वाला एरिया उसको दहेज में दे दिया।
2: और अब एक और हंसोड़, विनय जैन।
3: एक साहब अपने किसी निजी काम से बंबई पहुंचते हैं और अपने बंबई में रह रहे मित्र के घर पहुंच जाते हैं। सारा काम कार्यालय का निपटाने के बाद जैसे ही शाम को पहुंचे तो उनके दोस्त का घर और उनकी हालत देख के थोड़ा सा जो मेहमान है उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि साहब ये हमारा दोस्त है, इनका छोटा सा घर है, एक कमरे का फ्लैट और उसमें सोने के लिए एक ही पलंग, 4 बच्चों का घर, हस्बैंड वाइफ मिला के 6 लोग। तो जैसे ही शाम होती है, सोने का समय आता है, तो थोड़ा संकोच में मेहमान आ जाता है और मेज़बान से बोलता है, साहब हमें थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है, आपका छोटा सा घर है और एक ही पलंग है, ऊपर से ये 4 बच्चे हैं। तो दोस्त तो फौरन जवाब देता है, हाँ चिंता की कोई बात नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। साहब भी थोड़ा आश्चर्य में कि इंतजाम कैसे हो जाएगा, जैसे ही रात में सोने का समय आता है तो मेज़बान पहले अपने इकलौते पलंग पर अपने दोनों बच्चों को लिटाता है, 10 मिनट बाद वो बच्चे सो जाते हैं, तो दोनों मियाँ बीबी दोनों बच्चों को एक एक कंबल में लपेट के दीवार से टिका के खड़ा कर देते हैं। उसके बाद दूसरे 2 बच्चों को पलंग में लिटाते थे, 10 मिनट बाद वो 2 बच्चे भी सो जाते हैं, उनको भी एक एक कंबल में लपेट के दीवार में टिका के खड़ा कर दिया जाता है और मेहमान से मेज़बान बोलता है, साहब आपके लिए पलंग तैयार है, आप सो जाए। तो मेहमान बोलता है कि और आप लोग? तो साहब बोलते हैं कि हम लोग की चिंता नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। भैया भी बहुत थके हारे रहते हैं, पलंग पर लेटते ही से सो जाते हैं, जैसे भैया की नींद खुलती है तो आप भी कंबल में लपटे दीवार से टेके खड़े रहते हैं और पति पत्नी दोनों सोते रहते हैं।
4: एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं, अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
5: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूँ जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई, हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, जो हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुंचते हैं, तो जो इंटरव्यू

0: में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है, और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1, नमस्ते साहब, कहाँ से आए? साहब इंडिया से आए हैं। हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो? साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA मतलब इंडिया। बड़े शाबाश, स्वर्ग में जाओ। दूसरे को बुलाया, हाँ साहब कहाँ से? फ्रॉम जापान। जापान की स्पेलिंग जानते हो? साहब JAPAN। बड़े शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया, बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया स्पेलिंग बताओ। अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे। इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहां भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने ये तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे, हाउ? इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए, कौवा काव काव, कौवा काव काव। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए, घोड़ा।
1: एक साहब स्कूटर में चले जा रहे थे, बड़े बढ़िया मजे से चले जा रहे थे, गाना वाना गाते हुए, हॉर्न बजाते हुए, अचानक एक ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका, ए स्कूटर वाले भाई गाड़ी रोको। उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी, किनारे किया अपने वाहन को और बातचीत चालू हो गई, किनकी? वाहन चालक की और ट्रैफिक पुलिसमैन की। ट्रैफिक पुलिसमैन बोलता है, हाँ ये गाड़ी, ये स्कूटर आपका है? तो वो बोलते हैं, हाँ साहब हमारे स्कूटर है साहब, हमारे स्कूटर है, ये हम स्कूटर चलाता है। अच्छा ठीक है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आपके पास इस स्कूटर के चलाने का लाइसेंस होगा? तो वो सज्जन बोलते हैं, यस सर आई एम लाइसेंस होल्डर, हम लाइसेंस रखते हैं, अभी अभी आपको देता हूँ अगर आप बोलता तो। ट्रैफिक पुलिस वाला बोलता है, बिल्कुल दिखाइए, हमको चेक करना है। उन्होंने अपने दाहिने जेब में हाथ डाला, बाएं में डाला, आगे डाला, पीछे डाला जेब में हाथ, लेकिन लाइसेंस हो तो मिले ना, लाइसेंस तो था ही नहीं। तो वो सज्जन बोलते हैं, साहब ऐसा ऐसा ट्रैफिक पुलिसमैन साहब है, आई एम वेरी वेरी सॉरी सर, वो क्या के लाइसेंस हम घर में छोड़ दिया साहब, हम घर में लाइसेंस छोड़ दिया है, अगर आप बोलता तो अभी ला के देता आपको और आपको दिखाता। तो ट्रैफिक पुलिसमैन समझदार था, उसने कहा, नहीं गलत बात, आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं, आपका चालान किया जाएगा। तो वो बोलते हैं सज्जन, ऐसा छोड़ दो साहब, आई एम वेरी सॉरी, आई एम हार्डली सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली, आई एम विदाउट लाइसेंस दिस टाइम, अभी लेके आता सर देता। पुलिस वाला बोलता, नहीं आपको कहीं जाने नहीं दिया जाएगा, आपका चालान किया जाएगा, आप अपना नाम बताइए। तो बोलते साहब ऐसे हमारा नाम मत पूछो, आप घबरा जाएगा साहब। क्या क्या घबरा जाएगा, आप अपना नाम बताइए, आपका चालान किया जाएगा। वो फिर से बोलते हैं।

0: साहब, हमारा नाम मत पूछो, आपको घबराहट होएगा, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों हार्ट अटैक हो जाएगा? आप अपना नाम बताइए, हम प्रेम से लिखेंगे उसको और तरीके से लिखेंगे। तो वो सज्जन स्कूटर वाले बोलते हैं, अच्छा ट्रैफिक पुलिस मैन, आप हमारा नाम लिखो। हाँ कह लेंगे, बोलिए। हाँ लिखो, हाँ बोलिए, हाँ लिखो। हमारा नाम है श्री वेंकट मल्लिका रावर्जुन रावण राव वल्द सिंह सुन्नी चिन्नप्पा नागलिंगम वल्द मच्च कच्च वरा नरसिंह वामन पुरुष राम रामकृष्ण बुद्ध कलंक पिल्ले। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, पुलिस वाला क्या बोलता है, ये तुम्हारा नाम है? अच्छा एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से।
1: साहब एक इंटरव्यू की तरफ लिए चल रहा हूँ, जहाँ दो लोग एक इंटरव्यू देने जाते हैं, जो एक इंटरव्यू देने में एक आदमी तो बहुत ज़्यादा फटाफट जवाब दिया करता है, वो साहब की कुछ ऐसी कयामत कहिए कि जिस बात को आप उनसे पूछिए उसका जवाब तुरंत दे दिया करते हैं, और दूसरे जो साहब रहते हैं उनके साथ वो थोड़ा सा जवाब देने में घबराते हैं और कुछ डरपोक किस्म के, कुछ कम या मंद बुद्धि के रहते हैं, तो वो बहुत घबराए हुए रहते हैं। तो जैसे घबराते हुए उनसे बोलते हैं,
2: बोले भैया वो तो इंटरव्यू देने में बहुत डर लगता है भैया, हम तो किनारे चुपचाप बैठ जाएंगे जाके।
3: तुम चिंता मत करो, तुम सबसे पहले हमारे साथ चलो, समझे? दिलेर वाला बोलता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम जैसा हम तुमको बोल देंगे बैठा देंगे किनारे, तुम बैठे रहना, और जैसे ही मेरा नंबर आएगा इंटरव्यू का तो सबसे पहले मैं इंटरव्यू दूंगा और तुम बिल्कुल वहीं बैठे रहना, और जैसे ही मैं इंटरव्यू दे के आऊँगा तो मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, तो उसके बाद तुम इंटरव्यू देना। डरपोक वाला भी थोड़ा सा तसल्ली में आ जाता है कि भैया इंटरव्यू देंगे तो हमको समझा देंगे कि हमको क्या बोलना है। सबसे पहले दिलेर जो हर बात का जवाब फटाफट दिया करता है, अंदर जाता है, उससे पहला सवाल किया जाता है, वो सवाल कुछ इस तरह रहता है,
4: बोले साहब ये बताइए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बोले साहब शाहजहां ने करवाया था। बोले साहब ये बताइए कि हिंदुस्तान कब आज़ाद हुआ? बोले साहब प्रयास तो 1857 से थे लेकिन 1947 में हो ही गया। बोले साहब ये बताइए कि मंगल ग्रह पर प्राणी बसते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है, लेकिन क्या है इसे आज तक सिद्ध नहीं कर पाए हैं। बोले ठीक है भैया, ये तो साहब फटाफट जवाब देते हैं, इनको बिल्कुल बाहर करो। बोले आप जाइए, आपको बाद में बुलाया जाएगा। नेक्स्ट, तो जैसे ही डरपोंक वाला किनारे बैठा था तो उसको जाके इनके कान में पता नहीं क्या फूंक दिया, तो डरपोंक वाला भी सीना तान के अंदर इंटरव्यू देने के लिए तैयार। डरपोंक वाले से पहला सवाल किया गया, बोले हाँ साहब आपका नाम बताइए। बोले साहब शाहजहां। बोले आपका जन्म कब हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, जन्म तिथि। बोले साहब प्रयास तो 1857 से था, 1947 में हो ही गया। बोले भैया पागल आगल हो गए क्या, तुम्हारा दिमाग खराब होगा? बोले साहब वैज्ञानिकों की भी यही राय है लेकिन इसे सिद्ध नहीं कर पाए आज तक।
1: दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं, काय भाई जे तो माँ मोड़ा समझो इतो बड़ो हो गो, अबे हम कितने साल पहले देखे थे तो कितो छोटो रहो, नहीं अब कितो बड़ो हो गो। हाँ भाई का बताए, अब जब मोड़ा हम आओ समझो कि बड़ो तो हो गो है मल, बिल्कुल ऐसो बिल्कुल भाई, मोड़ा हम आओ सनक सो गो पगला सो हो गो। काय भाई का बात है, तुम आओ तो मोड़ा पहले तो छोटो सो दिखा तो अब इतो बड़ो हो गो। का भाई बड़ो ना हुए तो बड़ो हो गो, नहीं तो जा संतोष कहाओ, जो संतोष है तुम आओ। हाँ भाई संतोष ही तो है भाई, भगवान का सम इतो बड़ो होगा, इतो सो देखो तो, हाँ इतो बड़ो कितो बड़ो होगा भाई, इसकी उम्र कितनी कहला गई। अब जा समझ लो भाई कि इनकी उम्र तो हमें याद नहीं। नहीं भाई मतलब कौन से सन में पैदा हुआ जे पूछ रहे? नहीं भाई अब सनन तो हम नहीं जाने, अब भूल जाते हैं, इतनी उम्र हो गई, मैंने जे समझ लो कि जौन दिना हमारी सास मरी थी वो इतना जो संतोष भाव। जा समझ लो कि उतने सास मरी है और इतने हमें संतोष भाव। नहीं मगर ना वो हम ना डेट पूछ रहे हैं कि किस डेट को हुआ है, किस सन में हुआ है, ये हमको जानना जरूरी है। नहीं भाई अब जे समझ लो कि डेट तो मालूम नहीं है, अब जे समझ लो कि जब हम आए छोटे वाले देवर खो मैंने चोरी के सजा में इल्जाम में सजा भई थी, तब ही हम आप संतोष भाव, हमको संतोष भाव।

0: नहीं भाई, तुझे समझोगी कौन से साल में कहलाओगी, मैंने 74 में कहलाओगी, 75 में कहलाओ। नहीं भाई, अब जो 75 और 78 तो हम नहीं जाने, मगर जो समझ लो कि जो हमारे जेठ सास के भी जेठ लगते ना, तो वो जेठ को हमारे उनके घर में वो फांसी लगा के उनकी बड़ी बड़ी लड़कियां खत्म हो गई थी, तब हमें संतोष बहुत हुआ। मैंने जब जब जो घटनाएं घटी हैं हमारे घर में, कि कौन को फांसी लगवा के मरो, कि कौन जे हमाओ हथकड़ी में चलोगे अंदर, तो ये जैसे जो काम भाव रहते हमें संतोष भाव। दो व्यापारी जो एक गुड़ और राशन का सामान बेचा करता था, और दूसरा जो सिर में और हाथ पैर में लगाने वाले तरह तरह के तेलों का व्यापार किया करता था। इन दो व्यापारियों की एक छोटी सी घटना सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें दोनों अपनी अपनी दुकान में बैठे रहते हैं और ग्राहकों की कमी से परेशान रहते हैं। ना तेल वाले के पास तेल का ग्राहक आ रहा है, ना गुड़ वाले के पास गुड़ का ग्राहक आ रहा है। अचानक दोनों एक ऐसा एक प्लान बनाते हैं कि गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, देखो तेल वाले, तुम भी अपनी दुकान में खाली बैठे रहते हो और मैं भी अपनी दुकान में खाली बैठा रहता हूँ, तो क्यों ना एक काम किया करें, हम तुम्हारी दुकान में आएंगे ग्राहक बनकर और तुम हमारी दुकान में आओगे ग्राहक बनकर। उससे क्या होगा? अरे साहब, उससे क्या होगा, चार लोग देखेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि भैया की दुकान में ग्राहक आते जाते रहते हैं। ये आइडिया दोनों को जम जाता है, तो गुड़ वाला तेल वाले को अपने पास बुलाता है कि पहले तुम हमारी दुकान में कुछ खरीदने के लिए आओ। तेल वाला ऐसे ही उसकी दुकान में आता है और उससे सवाल करता है, क्यों भाई साहब, ये गुड़ कैसे दिए? ये साहब तरह तरह के गुड़ हैं, ये गुड़ 40 रुपए किलो है, ये गुड़ 30 रुपए किलो है, और ये वाला गुड़ 35 रुपए किलो है। तो एक काम कीजिए साहब, ये वाला गुड़ हमको दे दिए 2 किलो बोतल में। बोतल में? अरे यार तेल वाले व्यापारी भाई, तुम्हारी बुद्धि भी बोतल ही में है? तुम तेल बेचते हो तो तुम्हें हमेशा बोतल याद रहती है, गुड़ कभी बोतल में बेचा जाता है? अरे गुड़ के लिए आदमी घर से थैला लाता है, थैला थैला, समझे? तुमको ये बोलना चाहिए कि भाई हमको थैले में गुड़ चाहिए, तो तुम बोल रहे हो कि बोतल में है। तुम एक फिर से आओ, फिर से जाओ, फिर से जाओ, अब फिर से आना हमारी दुकान में, हम बैठे, अब सुधार के बोलना। दोबारा तेल वाला आता है गुड़ की दुकान में, फिर वही सवाल करता है, साहब वो गुड़ चाहिए था? हाँ, कितना चाहिए था, कौन सा चाहिए था? साहब ये वाला क्या भाव? हाँ ये 30 रुपए किलो है। साहब ये वाला 2 किलो दे दो बोतल में। अरे यार फिर बोतल में बोल दिया, तुम बोतल क्यों जोड़ते हो साथ में? एक बात समझ में नहीं आती, तुम व्यापारी हो तेल के है, तो तुम अच्छा एक काम करो, तुम हमारी सीट में आके बैठो, हमारी दुकान में तुम बैठो और हम अपनी ही दुकान में तुम्हारे सामने आके ये जाके सवाल करते हैं, देखो कैसे बोलते हैं। देखो तुम ऐसे बैठ जा ऐसे, हाँ अब देखो हम आते हैं, हम बोतल बोलेंगे ही नहीं, हम कैसे बोलेंगे? देखो, हाँ भाई साहब ये गुड़ कैसे दिया? गुड़ साहब 20 रुपए किलो। हाँ तो 2 किलो बुड़ दो, 2 किलो तौल दो बस। तो तेल वाला फौरन जवाब देता है, बोतल लाए हो?
1: हंसना मना है,
0: हंसना मना है,
1: अरे हंसना मना है,
0: हंसना मना है,
1: कोशिश कोई लाख करे, कहता रहे कि हंसना मना है, मगर लोग हंसेंगे, खिलखिलाएंगे। एक बात तो आपसे हम खास तौर पे कहना चाहते थे जो भूल रहे हैं, अरे इस कार्यक्रम का नाम है हंसना मना है।
2: चुटकुले सुनना सुनाना संजय गायकवाड़ की आदत में शुमार है, मगर अंदाज बड़ा अलग, सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। आइए सुनते हैं।
3: अभी शादियों का सीजन चल रहा था साहब, तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ गया, श्रीवास्तव जी के यहाँ रिसेप्शन हमें अटेंड करना था, मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, मैंने दरवाजे पे आवाज दी, तिवारी जी, तिवारी जी। तो दरवाजा खोला, तिवारी जी रात को 8:30 बजे सो के उठे। अरे हमने ठीक से तो हो जाओ यार। कहो भाई कैसे? अरे हमने कहा यार श्रीवास्तव जी क्या रिसेप्शन में चलना नहीं है क्या? तो तिवारी जी हमसे कहने लगे, यार भैया हम ना चल सकेंगे यार, हमें क्या है चश्मे के बगैर कुछ दिखता नहीं है, हैं शाम के समय हमें रतौंधी आती है, तो क्या है हमारा चश्मा हो गया, फूट गया है, तो इसलिए हम तो चल नहीं सकेंगे। अरे हमने कहा हद कर रहे हैं तिवारी जी, आप हमारे साथ में चलो, हैं कोई गिद्ध भोजन तो है नहीं, डाइनिंग टेबल पे भोजन लगा रहेगा, आप चलना, बैठ जाना हमारे बाजू में और चल के भोजन शुरू कर देना। तो तिवारी जी

0: उनसे बोले, लेकिन यार भैया ये कैसे पता चलेगा यार कि सबने शुरू कर दिया। हमने कहा हद करते हो आप, जब सब लोग शुरू कर देंगे तो धीरे से हम आपको कोहनी मार देंगे, आप समझ लेना मामला शुरू हो गया है, हाथ का इशारा हम आपको कर देंगे धीरे से। तो तिवारी जी बोले हाँ यार ये बहुत बढ़िया स्टाइल है। सभी लोग मेहमान आ चुके थे श्रीवास्तव जी के यहाँ, हम पहुँचे साथ में तिवारी जी पहुँचे, सभी की थालियों में मीठा मिष्ठान रखा जा चुका था। उसी वक्त मेरे गले पे यहाँ एक मच्छर बैठा, मैंने मच्छर को भगाया, बाजू में तिवारी जी बैठे थे, धोखे से कोहनी लग गई। भैया क्या समझे कि शुरू, हमें बड़ा अपमान लगा, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, हमने मना करने के लिए इनको दो कोहनी मारी, तो ये क्या समझे कि लोग जल्दी जल्दी खा रहे, तो जो जल्दी जल्दी खाने लगे और ज्यादा अपमान। हमने मना करने के लिए इनको तीन कोहनी मारी, तो जो कहते कहा भैया गायकवाड़ का लूटा मारी मच गई का। अब साहब एक बहुत अच्छा व्यंग मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में इस समय चुनाव की सरगर्मी है, एक नेता जी अपने चार साथियों के साथ जनसंपर्क के लिए निकले और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना और वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ना शुरू कर दिया। भैया जी याद रखना 24 तारीख को भूलना नहीं, बहन जी हाँ आप भी याद रखना, भाई लालटेन याद रखना भूलना नहीं, माता जी 24 तारीख को भूलना नहीं। तो माता जी न जाने कौन से मूड में थी, अचानक कहने लगी,
1: अरे चाह रे तुम्हारे ऊपर से तो हमारा विश्वास ही उठ गया, 5 साल में एक बार तो सकल दिखाते हो और नेता बन जाने के बाद में सब बिल्कुल जनता का ध्यान ही भूल जाते हो, और हमें तो बिल्कुल तुम लोग को कोई को वोट नहीं देना, सब ने अपना अपना घर भरा है और हम किसी को वोट नहीं देंगे, समझ गए ना, हमें तो भ्रष्टाचारियों से बिल्कुल सख्त नफरत है।
0: तो नेताजी को गुस्सा आ गया, लेकिन उनने अपनी नेता बुद्धि दौड़ाई और बहुत सहज तरीके से माताजी के सामने हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं माताजी आप ये कैसी बात कर रही हैं, हैं आप बताइए, देश में ये इतने सारे नेता हैं, ये 5 उंगलियां हैं मेरे हाथ की, सब एक समान है क्या, नहीं है, हैं देखो ऐसे ही देश में बहुत सारे नेता हैं, तो कोई लोग भ्रष्टाचारी हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और जो नहीं है वो ही तो हम हैं। आप तो 24 तारीख को हमारी को वोट दो। अब व्यंग्य पे आइए साहब, बिल्कुल मौलिक व्यंग्य दे रहा हूँ। माताजी नेताजी की बात सुन के कहने लगी,
1: बेटा मजबूरी महिला को बता रहे हो कि जे उंगलियां छोटी हैं कि बड़ी हैं, मैंने भी जे बाल धूप में सफेद नहीं करे, मैं भी जानती हूँ कि उंगलियां छोटी बड़ी हैं, लेकिन आज से तुम भी इतना जान लो कि जब खाती हैं तो सब इकट्ठी तो हो जाती हैं।
0: और साहब मिमिक्री का एक छोटा सा मौलिक आइटम मैं पेश कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में कुत्ता पाल के रखा है, हम लोग मराठी भाषा में बात करते हैं, हमारे घर का कुत्ता। हमारे हिंदुस्तान का संस्कार देखे कि हमारी भाषा को देख सुन के मराठी बोलने लगा। हमारे घर के थोड़ा सा आगे एक डेनियल परिवार रहता है, क्रिश्चियन फैमिली रहती है, उनके घर में थ्रू आउट अंग्रेजी का चलन है, उन लोग अंग्रेजी भाषा में बात करते हैं। उनके घर का कुत्ता जो है साहब, उनकी अंग्रेजी भाषा को देख सुन के अंग्रेजी बोलने लगा। सुबह का वक्त मैं अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकला और डेनियल साहब अपने घर के कुत्ते को घुमाने के लिए निकले, हम और डेनियल साहब आपस में मिले तो बातें शुरू हो गईं, लेकिन मेरे घर के कुत्ते को पहली बार डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने देखा तो उसने अंग्रेजी में प्रश्न किया और हमारे घर के कुत्ते ने मराठी में जवाब दिया। ये अंग्रेजी प्लस मराठी ये मौलिक आइटम मिमिक्री का मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनेंगे साहब। पहले सुबह का वक्त मेरे घर का कुत्ता डेनियल साहब के घर के कुत्ते ने जैसे ही हमारे घर के कुत्ते को देखा तो अंग्रेजी में प्रश्न किया कौन हो तुम? हमारे घर का कुत्ता तुरंत मराठी में बोला भाऊ।
2: और दोस्तों हंसने हंसाने का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

संग्रहालय से इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हंसना मना है इस धारावाहिक की दूसरी कड़ी। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है।

0: मीडियम वेव 1,595 किलोहर्ट्ज़ पर, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजने को है। हमारी शाम की सभा की शुरुआत हम करते हैं इस घंटे की खास खबरों से।
1: सरकार ने बेट बीएमएस, इपोक डाईआईएन और लॉसगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद बीएआरसी को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। इस्पात मंत्रालय इस माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां और संगठन इस दिन इस्पात आयात से संबंधित अपनी समस्याओं की चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय इस क्विज में भाग लेने के लिए विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 1 जुलाई से 25 जुलाई तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युववाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, स्वास्थ्य मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, इसलिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और अच्छी जीवन शैली अपनाकर हम लंबे समय तक निरोगी और ऊर्जावान जीवन जी सकते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे संतुलित आहार के बारे में कि संतुलित आहार किस प्रकार हमारे अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। साथियों, संतुलित आहार शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहता है। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इससे उनकी सीखने की क्षमता भी बढ़ती है। साथियों, संतुलित आहार मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करता है। ये स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। हरी सब्जियां, फल, दालें और दूध शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करते हैं। ये शरीर के सभी अंगों के लिए लाभकारी होते हैं। साथियों, पर्याप्त मात्रा में पानी और रेशेदार भोजन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। साथियों, संतुलित आहार त्वचा, बाल और आंखों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, इससे व्यक्ति अधिक स्वस्थ और आकर्षक दिखाई देता है। साथियों, संतुलित आहार स्वस्थ जीवन की कुंजी है। संतुलित आहार अपनाकर हम स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य की सबसे सरल और प्रभावी आदत है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी स्वास्थ्य सुझाव से संबंधित। कार्यक्रम श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून सन 2020 को की गई। ये योजना शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए शुरू की गई थी। साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराना है, इससे वे अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। साथियों, ये योजना रेहड़ी पटरी वाले, फल सब्जी विक्रेता, चाय नाश्ता विक्रेता और अन्य छोटे व्यापारियों के लिए है। इससे लाखों लोगों को लाभ मिलता है। साथियों, इस योजना के तहत पहली बार 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। समय पर भुगतान करने पर अधिक राशि का ऋण भी मिलता है। साथियों, समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 7% तक ब्याज सब्सिडी दी जाती है, इससे उनकी आर्थिक बचत होती है। साथियों, ये योजना डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है। डिजिटल लेन देन करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। साथियों, ये योजना छोटे व्यापारियों को आत्मनिर्भर बनने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करती है, इससे उनकी आय में वृद्धि होती है। साथियों, ये योजना छोटे व्यापारियों को साहूकारों के ऊंचे ब्याज से बचाती है, उन्हें बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इस योजना से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। साथियों, ये योजना गरीब और छोटे व्यापारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करती है। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना छोटे सड़क विक्रेताओं के लिए एक प्रभावी और लाभकारी योजना है। ये उन्हें आर्थिक सहायता, सम्मानजनक आजीविका और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करती है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सनम रे से ये गीत, जिसमें आवाज थी अरमान मलिक और पलक मुछाल की, गीतकार थे मनोज यादव और संगीत से सजाया था अमाल मलिक ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम सुनवा देते हैं आपको वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अदिति शुक्ला।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में चर्चा तो बहुत कम होती है, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। हमारा आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य और युवा। जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में शारीरिक स्वास्थ्य का विचार आता है। हम संतुलित भोजन, व्यायाम और बीमारी से बचाव की बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारा मन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा शरीर। यदि शरीर स्वस्थ हो और मन परेशान हो तो जीवन में खुश रहना कठिन हो जाता है। आज का युवा पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, अधिक जागरूक और तकनीक से अधिक जुड़ा हुआ है। उसके पास अवसर भी अधिक हैं और सपने भी बड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां और दबाव भी बढ़ गए हैं। पढ़ाई का दबाव, करियर की चिंता, कंपटीशन, पारिवारिक अपेक्षाएं, आर्थिक समस्याएं और सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सभी बातें युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक बीमारी का ना होना नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। ये हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हम तनाव से कैसे निपटते हैं, दूसरों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं और जीवन के फैसले कैसे लेते हैं, ये सब हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। दोस्तों, युवा अवस्था जीवन का एक ऐसा चरण है जहाँ व्यक्ति कई बदलावों से गुजरता है। ये वह समय है जब सपने आकार लेते हैं, पहचान बनती है और भविष्य की दिशा तय होती है, लेकिन यही समय कई बार भ्रम, असुरक्षा और तनाव का कारण भी बन जाता है। आज का युवा सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता की दौड़ इतनी तेज हो चुकी है कि कई बार वह स्वयं को ही भूल जाता है। हर जगह प्रतियोगिता है, स्कूल और कॉलेज में अच्छे अंक लाने की, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता लाने की और भविष्य को लेकर अनिश्चितता युवाओं के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। कई युवा ये महसूस करते हैं कि उन्हें हर हाल में सफल होना है। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो निराशा और आत्मविश्वास की कमी पैदा होने

लगती है। धीरे धीरे ये तनाव चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं का भी रूप ले सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारकों में से एक शामिल हो गया है। इसने पूरी दुनिया को हमारी उंगलियों की पहुंच में ला दिया है और इसके अनेक सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जब युवा लगातार सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां, खुशहाल पल और सफल जीवन शैली देखते हैं, तो अनजाने में वे अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि बाकी लोग उनसे अधिक सफल, ज्यादा खुश और बेहतर जीवन जी रहे हैं। जबकि सच ये है कि सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली तस्वीरें और वीडियो किसी व्यक्ति के जीवन का केवल एक हिस्सा होती हैं, पूरी कहानी नहीं। हर चमकती तस्वीर के पीछे संघर्ष की एक लंबी यात्रा होती है। हर उपलब्धि के पीछे कड़ी मेहनत और कई चुनौतियां छिपी होती हैं। किसी के जीवन में सब कुछ हमेशा खुशहाल नहीं होता। इसलिए सोशल मीडिया पर दिखने वाले हर पल को अपनी वास्तविकता का पैमाना बनाना या उसके आधार पर अपने जीवन का आकलन करना उचित नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और वास्तविक जीवन सोशल मीडिया की दुनिया से कई अधिक अलग होता है। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति को बुखार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाने में संकोच नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद महसूस करे तो वो अक्सर इसे छुपाने की कोशिश ही करता है। हमारे समाज में अब भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई गलत धारणाएं मौजूद हैं। कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सच ये है कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य। कभी कभी युवा अपनी परेशानियां किसी से साझा नहीं करते। वो सोचते हैं कि लोग उन्हें नहीं समझेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। परिणाम स्वरूप वो अकेलापन महसूस करने लगते हैं। ये अकेलापन धीरे धीरे मानसिक तनाव को और बढ़ा सकता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कठिन दौर से गुजरता है। उदासी, निराशा या चिंता महसूस करना सामान्य बात है, लेकिन यदि ये भावनाएं लंबे समय तक बनी रहें और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगें, तो हमें सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। यदि आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, शिक्षक या किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी बात साझा करें जिस पर आप विश्वास करते हों। कई बार केवल अपनी बातें कह देने से भी मन का बोझ हल्का हो जाता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ छोटी छोटी आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, पर्याप्त नींद लें। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं के लिए प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक होती है। नींद की कमी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। दूसरा, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी स्वस्थ रखता है। सुबह की सैर, योग, खेलकूद या कोई भी शारीरिक गतिविधि तनाव को कम करने में मदद करती है। तीसरा, संतुलित भोजन करें। हमारा खान पान भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। पौष्टिक भोजन शरीर को ऊर्जा देता है और मन को भी स्वस्थ रखने में सहायता करता है। चौथा, सोशल मीडिया और मोबाइल के उपयोग पर नियंत्रण रखें। दिन का कुछ समय डिजिटल उपकरणों से दूर बिताइए। परिवार के साथ समय बिताइए, किताबें पढ़िए, संगीत सुनिए या प्रकृति के बीच कुछ समय गुजारिए। अपनी उपलब्धियों और क्षमताओं को पहचानिए। हर व्यक्ति अलग है और हर व्यक्ति की यात्रा भी अलग है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। श्रोताओं, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता तो बढ़ रही है। स्कूल, कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में इस विषय पर चर्चा अब

0: होने लगी है। ये एक सकारात्मक बदलाव है। जितना अधिक हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे, उतना ही अधिक लोग सहायता के लिए आगे आएंगे। युवाओं को ये समझना होगा कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, जीवन में असफलताएं भी आती हैं, चुनौतियां भी हैं और कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, लेकिन इन सब के बीच स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक शांति उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे तो बाहरी उपलब्धियां भी हमें सच्ची खुशियां नहीं दे पाएंगी। दोस्तों, याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। यदि कभी आपको लगे कि जीवन कठिन हो रहा है तो सहायता मांगने में संकोच न करें। अपने मन की बात कहिए, अपने भावनाओं को स्वीकार कीजिए और स्वयं को समय दीजिए, क्योंकि एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ समाज और एक उज्जवल भविष्य की नींव रखता है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता मानसिक स्वास्थ्य और युवा विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अदिति शुक्ला। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपका करवा देते हैं मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म खामोशियां से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी अरिजीत सिंह की, गीतकार थी रश्मि सिंह और संगीत से सजाया था जीत गांगुली ने। साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम दे देते हैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी ताजमहल ऐतिहासिक स्थल विषय पर। साथियों, ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में करवाया था। ये सच्चे प्रेम का प्रतीक माना जाता है। साथियों, ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। इसकी सुंदर नक्काशी और कलाकारी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। इस स्मारक का निर्माण लगभग 22 वर्षों में पूरा हुआ। इसमें हजारों कारीगरों और कलाकारों ने योगदान दिया। साथियों, ताजमहल की वास्तुकला मुगल, फारसी और भारतीय शैलियों का सुंदर संगम है। इसकी भव्यता देखने योग्य है। साथियों, वर्ष 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, हर वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। इससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। साथियों, सूर्योदय और चांदनी रात में ताजमहल का सौंदर्य और भी मनमोहक दिखाई देता है। इसकी चमक सभी को आकर्षित करती है। ताजमहल भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास की समृद्ध पहचान है। ये विश्व में भारत की गौरवशाली छवि प्रस्तुत करता है। साथियों, ताजमहल का संरक्षण और स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। साथियों, ताजमहल केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि प्रेम, कला और भारतीय संस्कृति का अमर प्रतीक है। इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में स्थान दिलाते हैं। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी ताजमहल ऐतिहासिक स्थल विषय के बारे में। साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है प्रोविजनरी ऑफिसर। पदों की संख्या है 1500। शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट www.sbi.bank.in पर विजिट करें। साथियों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

अभी आप सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर का योगदान था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

बागी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी अमित कुमार, अनुराधा पौडवाल की, गीतकार थे समीर, संगीत था आनंद मिलन का।

क्रेचर 3D इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के स्वर में। गीतकार और संगीत दिया था टोनी कक्कर ने।

बागी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ें थी मीट ब्रॉस मोनाली ठाकुर की। गीतकार थे कुमार और संगीत मीट ब्रॉस का था।

ये गीत था फिल्म गुरु से, जिसके लिए आवाज़ थी श्रेया घोषाल की और उदय मजुमदार की। गीतकार थे गुलजार, संगीत एआर रहमान का था। हमारी इसी सभा में आप एक बार फिल्म संगीत सुन सकते हैं शाम 6:30 से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।

0: और अब एक सूचना। डॉक्टर प्रेक्षा द्विवेदी, गठिया रोग विशेषज्ञ एवं आर्थराइट्स और रूमटोलॉजी क्लिनिक शाहपुरा भोपाल द्वारा अनुबंधित सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण 5 जुलाई 2026 को दिन में रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच विविध भारती भोपाल से किया जाएगा। इस प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम का विषय है गठिया को जानिए, स्वस्थ जीवन अपनाइए। इस विषय के संबंध में श्रोता अपनी जिज्ञासा के समाधान हेतु दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच इन फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 2660901 और 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। दिन और समय एक बार फिर से सुन लें। दिनांक 5 जुलाई 2026 दिन रविवार सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में हमारे फोन नंबर हैं 2660901 और दूसरा नंबर 2660902। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
5: सरकार ने बैड बीएमएस इपोक डाई आयन, इपोक आई आयन और लॉसगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाए गए हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद BARC को समाचार और गैर समाचार दोनों

श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। नई व्यवस्था के अनुरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने और लाइसेंस के नवीनीकरण के बाद ही टेलीविजन रेटिंग का प्रकाशन फिर से शुरू किया जा सकेगा। इस्पात मंत्रालय इस माह की 9 तारीख को नई दिल्ली में इस्पात आयात से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस सम्मेलन आयोजित करेगा। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियां और संगठन इस दिन इस्पात आयात से संबंधित अपनी समस्याएं चर्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की मंत्रालय में समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए गतिविधियों को प्राथमिकता पर लिया जाना आवश्यक है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा पर्यटन क्विज 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय इस क्विज में भाग लेने के लिए विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 1 जुलाई से 25 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं

0: सिलिका शब्द कहाँ से आया?
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप हैं। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
0: जी,
1: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
0: जी,
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की, लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी, जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ?
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े

0: अलग अलग दिखते हैं, है ना?
1: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
2: नानी, एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
1: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
0: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
1: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्ववेत्ता है, है ना?
0: मामा जी, मामा जी।
3: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
2: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है
0: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
3: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
2: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
3: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
0: अच्छा, भोज वृक्ष।
3: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
3: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
3: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
3: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
3: हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
3: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
3: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
3: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
3: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
3: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
3: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
3: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता

0: लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ दीका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
3: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
2: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
3: जी।
2: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
3: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
2: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
4: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह।

0: जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
1: फिर आगे बढ़ रहे हो क्या? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
0: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
1: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
0: अच्छा, वाह। और
1: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
0: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
1: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
0: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
1: चल बेटा मोती।
0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से ही सतर्क थी।

0: आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
1: अलख निरंजन।
2: साधु बाबा।
1: अब अच्छा,
2: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
1: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
2: क्या?
1: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
2: है?
1: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
2: अच्छा,
1: हाँ,
2: बहुत बड़ी फौज है।
1: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
2: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
1: अच्छा,
2: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
1: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
2: बिल्कुल है।
1: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
2: उसका भी इंतजाम है।
1: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
2: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
1: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
2: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
1: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
2: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं रानी माँ नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए।

0: पानी मांग।
1: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
0: रानी माँ,
2: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: और श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: और श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

चुपके चुपके इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था एस डी बर्मन का।

अभिनेत्री फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में, गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीत था आर डी बर्मन का।

0: ये गीत था फिल्म चांदनी से, जिसके लिए आवाज़ थी सुरेश वाटकर, अनुपमा देशपांडे की, गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीत था शिव हरि का। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पुलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकाले जाने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को भी स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और उनकी आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है।

0: मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,774 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 पर दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। सबसे पहले आपको बता दें इस सभा के शेष कार्यक्रम रात 8 बजे सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:15 पर सुनिए फिल्म संगीत, 9:30 पर खेल जगत में होगी भेंटवार्ता, ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं, विशेषज्ञ होंगे आलोक मिश्रा, भेंटकर्ता होंगे मनीष गजभिये, 9:45 पर सुनिए फिल्म संगीत, रात 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। और आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा होगा 7:21 पर। और अब आपको बता दें कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आप सुनेंगे 7:20 पर। 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा सुबह 9:15 पर। इसमें आप सुनेंगे भुवनेश गोस्वामी से बुंदेली गीत। 9:30 पर होगा विज्ञान लोक कार्यक्रम, इसमें होगी भेंटवार्ता रोबोटिक्स और मानव जीवन, विशेषज्ञ होंगे कौशिकी उपाध्याय। 9:45 पर सुनिए फिल्म संगीत। 10 बजे सुनिए जिले की चिट्ठी। 10:05 पर होगा कार्यक्रम गीत सागर। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में के दामोदर राव से राग भैरव में ख्याल गायन। दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और इसी समय आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। दोपहर 12 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके फरमाइश जो फिल्मी गीतों पर होगा। 12:30 पर होगा संग्रहालय से में धारावाहिक हंसना मना है, ये एक झलकी होगी और इस झलकी की तीसरी कड़ी आप सुनेंगे। दोपहर 1 बजे सुनिए महिला कार्यक्रम, 1:30 पर होगा लोक संगीत का कार्यक्रम, 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान होगा। दोपहर 2 बजे सुनिए फिल्म संगीत, 2:30 पर होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हमारी शाम की सभा में कल आप सुनेंगे 5 बजे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी रीवा का योगदान, 5:33 पर। और शाम 6 बजे सुनिए फिल्म संगीत, 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, प्रायोजन विकास दर्शन। और रात 9:30 पर साहित्य भारती, ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

और कल रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित अर्णव चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन।

और कल 7:21 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की, सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की, 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित, 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे, जिसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के सांणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी CGCME OST सेमीकंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में खरीफ फसलों, मानसून की स्थिति और अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि देश भर में बारिश की कमी की आशंका वाले 262 संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, जिनमें से 210 जिले अब भी बारिश की कमी का सामना कर रहे हैं। बैठक में बताया गया कि 2 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ सकता है। केंद्रीय मंत्री ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कॉन्टिंजेंसी प्लान की समीक्षा करने और किसान क्रेडिट कार्ड तथा फसल बीमा कवरेज बढ़ाने के निर्देश दिए। शिवपुरी में 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 2,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा एवं जिला प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री ने शहर भ्रमण कर नागरिकों को पीले चावल भेंट करते हुए इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के श्री रामानुज संस्कृत परिसर रीवा के सशक्तिकरण और संस्थागत विकास संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक में परिसर के लिए कुल 243 पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसमें 117 शैक्षणिक, 4 प्रशासनिक और 122 गैर

0: शैक्षणिक पद शामिल हैं। इन पदों की पूर्ति 3 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से किए जाने की योजना है। भोपाल में जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में आज अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित की गई। ये भर्ती रैली 25 जुलाई से 6 अगस्त तक नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के लिए पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसके लिए विद्यालय 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। जिला स्तरीय क्विज 7 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होगा, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिले की विजेता टीमों को प्रदेश के पर्यटन बोर्ड द्वारा निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का उपहार दिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद यानी बार्क को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बैट BMS इपोक ION और लॉसिगी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। यह फैसला संभावित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए लिया गया है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि आधार एप्लीकेशन पर ईमेल ID निःशुल्क अपडेट की सुविधा 1 जुलाई से शुरू होने के बाद पहले 2 दिनों में 2.5 लाख से अधिक ईमेल अपडेट हुए हैं। UIDAI के अनुसार ये सेवा 6 महीने की अवधि के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और इससे आधार केंद्र जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अब तक 40 लाख से अधिक लोगों ने नए आधार ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, वहीं लगभग 10 लाख लोगों ने अपना पता भी अपडेट किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए 24 घंटे चलने वाली महिला हेल्पलाइन 1-4-4-9-0 संचालित कर रहा है। ये टोल फ्री हेल्पलाइन हिंसा और उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने और मनोवैज्ञानिक परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराती है। इस पर महिलाएं शिकायत के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। हेल्पलाइन एक बार पुनः सुन लें 1-4-4-9-0। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। ये यात्रा 57 दिनों तक चलकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जत्थे में कुल 4,822 श्रद्धालु जम्मू से रवाना हुए, जिसमें 2,510 श्रद्धालु नुनवान और 2,312 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के धुंधुआ सिहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम हाथियों और आधुनिक तकनीक की मदद से 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 9 दिन की देरी से आया मानसून कल उज्जैन ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुँच गया। मौसम विभाग ने खंडवा और हरदा के लिए इस मानसून सीजन का पहला रेड अलर्ट जारी किया है, जहां अगले 24 घंटों में 4-8 इंच तक बारिश की संभावना है। धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर और बैतूल में भी अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश जारी रहने का अनुमान जताया है। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। इंग्लैंड ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार की रात को सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को 40 रन से हराया। अब रविवार को लॉर्ड्स के मैदान पर खिताब के लिए इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं दूसरी तरफ BCCI ने भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया है। ये 2 मैचों की श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना के कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम 2 CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। सिंगरौली के चितरंगी में विकसित भारत जीराम जी योजना का शुभारंभ राज्य मंत्री राधा सिंह ने कार्यशाला की शुरुआत से किया। खंडवा जिला अस्पताल में OPD पंजीयन को आसान बनाने के लिए अब ई रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की गई है। आगरमालवा नगर पालिका ने कंपनी गार्डन में नीम, पीपल और बरगद के 111 पौधों का रोपण किया। पन्ना में राज्य खेल अकादमियों के लिए 12 से 18 वर्ष तक के खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया आज से शुरू हुई है। मंदसौर में स्टॉप डायरिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र

में पेयजल स्रोतों के क्लोरिनेशन और पानी की जांच का प्रशिक्षण शुरू हुआ है। देवास आईटीआई परिसर में 7 जुलाई को युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आकाशीय बिजली से बचाव के लिए नागरिकों से दामिनी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील की है। सीहोर के स्कूली बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आयोजित 3 दिवसीय उमंग हेल्थ एंड वेलनेस प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। सागर खेल परिसर के मैदान पर मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के तीसरे चरण की च्वाइस फिलिंग की शुरुआत हो गई है, जिसमें पहले से पंजीकृत अभिभावक 8 जुलाई तक च्वाइस अपडेट कर सकेंगे। नीमच के जावत सिविल अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्पदंश का इलाज और एंटी स्नेक वेनम 24 घंटे मुफ्त उपलब्ध है। और कटनी में रुक रुक कर हुई बारिश के बाद नगर निगम के अमले ने नालियों की सफाई कर जल भराव की स्थिति को संभाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष की समीक्षा की। सहकारी समितियों के डिजिटलाइजेशन के दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों और मानसून की समीक्षा की। 262 संवेदनशील जिलों की हुई पहचान। और भोपाल में अग्निवीर सेना भर्ती रैली की तैयारियों को लेकर समन्वय बैठक आयोजित। 25 जुलाई से 6 अगस्त तक होगी रैली। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा।

सभा कार्यक्रम सुन वे वाय सभी भैया बहनन को अमृता बहन की राम राम। भैया बहनों स्वागत है कार्यक्रम में और का हाल चाल है आप सबके। सो देखो अभी अच्छो बरसात को मौसम बन गया है और गर्मी से जो तनक साता परी है और सबसे बड़ी बात तो हम कहें कि हमारे खेत जो सूखे हते उनमें भी अच्छी तराई हो रही है। मौसम में होवे भाई बरसात से मन प्रसन्न सोई हो जाते हैं, कहे साची कही कि नहीं। और इतेक नौने मौसम में भैया बहनन से ग्राम सभा कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और आज शुक्रवार के दिन आपको ग्राम सभा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी सुनेंगे आपकी पाती आपके फिल्मी गीत कार्यक्रम, जी में आपके भेजे गए पत्रों से आपके मन पसंदीदा फरमाइशी फिल्मी गीत आप लोगों का सुनवाए जे हैं। तो बस थोड़ी ही देर में आपके बीच में जो कार्यक्रम लेके उपस्थित हुई हैं मनो उससे पहले कछु ज़रूरी बातें। अब भैया बहनों देखो बात अपन बरसात की कर रहे हैं सो सब भुट्टा अच्छे खा रहे हुई हैं, गरम गरम मंगौड़ा खा रहे हुई हैं, ज़्यादा साँची बात है कि नहीं। मनो जो सोचो कि अब हमने गर्मी के मौसम में जो पानी की कमी देखी है और हम देखा थे कि गर्मी में हम पानी को कितना संभाल संभाल के इस्तेमाल करते हैं, कहे कि पानी की ज़रूरत सबको होते है, मानव पशु पक्षी जीव जंतु सभी को पानी चाहिए है ना। और अब ऐसे में यदि हम पानी को नहीं सहेजेंगे सो का हुई है आप और हम सब जानते हैं आगे चल के हमें की कमी हुई है। तो ऐसे में हमें क्या करने चाहिए, बरसात के पानी को सहेजने हैं, मतलब कि वाटर हार्वेस्टिंग करने हैं। अब देखो भैया हनो हम वर्षा के जल को दो तरीका से संग्रहित कर सकते हैं, एक तो छत के जल को संग्रहित करके और दूसरों भूमि जल को पुनर्भरण करके। अब देखो अपन बात करें कि छत के जल को कैसे अपन संग्रहित कर सकते हैं, तो यदि आपके घरों या छतों पे जो जगह हो उपे गिरवे वाए पानी को जो खास करके बरसात को पानी हुए पानी की पाइपों के माध्यम से घर के नीचे बने बड़े स्टोरेज टैंक में आप संग्रहित करें और जो पानी आगे चल के हमें पीवे के लाने और घर के अन्य कामन में उपयोगी होते हैं। अब बात करें हम भूजल के पुनर्भरण की, सो हम देखते हैं कि कई जगह कुआं सूख जाते हैं, नदी तालाब सूख जाते हैं, तो वर्षा जल को सीधे जमीन के अंदर

0: भेज सकत है। जी से का होता है कि भू जल को स्तर बढ़त है। ई के लाने सोख गड्ढा भय, रिचार्ज ट्रेंच या पुराने सूखे कुओं में जल को संग्रह कर सकत है। और ई की सबसे अच्छी बात है कि जब हम पेयजल को संभाल के रखेंगे, ई वर्षा के जल को संभाल के रखेंगे, तो आगे चल के हमें जल की उपलब्धता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यदि हम ऐसा करत हैं तो मिट्टी को कटाव रुकत है, पेयजल की उपलब्धता बढ़त है, भू जल के स्तर में वृद्धि होते, और संगे संगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम पर्यावरण से अनुकूल रहते हैं, मतलब कि पर्यावरण से जुड़े में मदद मिलत है। तो भैया बहनों देखो, चर्चाएं अपनी चल रही हैं और कार्यक्रम में अभी आगे और भी आप लोगों से ज़रूरी बातें करनी हैं। काहे कि जब भी ग्राम सभा कार्यक्रम से जुड़े आप लोगों के लाने कछु नई बातें लेके आए, सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी कई योजनाओं पर भी हम चर्चा करें, और इसके अंतर्गत आज सीड नेट इंडिया ई पोर्टल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा तो अपनी चल है, मनो अबे बिरिया हो गई है बुंदेली समाचारन की, सुनत है बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार,
0: बुंदेली समाचारन के संगे हम हैं अमृता जैन। आज के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहे। उते वे दो ही राज्यों को करीब 1.6 लाख करोड़ रुपया की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन को उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। ई योजना के तहत 100 नए एरोड्रेम विकसित करे गए हैं। ई के बाद बालोतर से पचपदरा में देश की पहली ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित हुई है। जी पे करीब 80,000 रुपया से अधिक को निवेश भाव है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती भय करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। संजा के में गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जिते 7,500 करोड़ रुपया की लागत से बनी सीजी सेमी ओएसएटी सेमीकंडक्टर सुविधा को उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अबे तक भय कार्यक्रमन की समीक्षा करी है। डॉक्टर यादव ने कही कि कृषकों को कल्याण राज्य सरकार को कर्तव्य है और ई उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित करो गो है। उनने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं को डिजिटलाइजेशन करवे के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताओ गो कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा को शुभारंभ जुलाई महीना में करो जे है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद यानी बार्क को समाचार और गैर समाचार दो श्रेणी में टेलीविजन रेटिंग जारी करवे के पे रोक लगावे के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने कही है कि जा व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बैट बीएमए ईपोक आईआईएन और लॉसीगी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटावे के निर्देश दिए हैं। इन ऐप्स को इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करवे के लाने करो जा रहा हो तो जो फैसला संभवित गलत इस्तेमाल और सुरक्षा जोखिम को देखत भय लाओ गो है। प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों के लाने पर्यटन क्विज 2026 आयोजित करी जा रही है। ई के लाने विद्यालय 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते है। जिला स्तरीय क्विज 7 अगस्त को प्रदेश के सभी जिलन में आयोजित हुई है। जी में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। प्रत्येक जिला की विजेता टीम को प्रदेश के पर्यटन बोर्ड द्वारा निःशुल्क पर्यटन भ्रमण को उपहार दौजे है। केंद्र सरकार ने बताया है कि आधार ऐप पे ईमेल आईडी निशुल्क अपडेट की सुविधा 1 जुलाई से प्रारंभ होवे के बाद पहले 2 दिना में 2.5 लाख से अधिक ईमेल अपडेट भए हैं। UIDAI के अनुसार जा सेवा 6 महीना की अवधि के लाने निशुल्क उपलब्ध है और इसे आधार केंद्र जावे की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अभी तक 40 लाख से अधिक लोगों ने नए आधार ऐप से मोबाइल नंबर अपडेट करे हैं, उतई लगभग 10 लाख लोगों ने अपने पता भी अपडेट करे हैं। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से प्रारंभ हो गई है। जा यात्रा 57 दिना तक चल के 28 अगस्त तक चल है। कड़ी सुरक्षा के बीच पहले जत्था में कुल 4,822 श्रद्धालु जम्मू से रवाना भए, जिनमें 2,510 श्रद्धालु नुनवान और 2,312 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर

मोहन यादव ने श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। दो ही नेताओं ने यात्रा के सुरक्षित, सुचारू और आध्यात्मिक रूप से मंगलमय संपन्न होवे की कामना करी है। पन्ना टाइगर रिजर्व के धंधुआ सेहा क्षेत्र में बाघिन P652 ने दो शावकन को जन्म दो है। टाइगर रिजर्व के उप संचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दो शावकों की उम्र लगभग 10 दिना की है और माँ और शावक पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। वन विभाग की विशेष टीम हाथियों और आधुनिक तकनीक की मदद से 24 घंटा उन पर निगरानी कर रही है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। 9 दिना की देरी से आई मानसून में कल उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने खंडवा और हरदा के लाने ही मौसम सीजन को पहलो रेड अलर्ट दो है। धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर, बैतूल में भी अति भारी बरसात की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक कई हिस्सों में भारी से अति भारी बरसात रहने के अनुमान बताए हैं। बुंदेली समाचार समाप्त है।

0: पहलो रेड अलर्ट तो है। धार, बड़वानी, खरगोन, देवास, बुरहानपुर, बैतूल में भी अति भारी बरसात की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई तक कई हिस्सों में भारी से अति भारी बरसात रहने के अनुमान बताए हैं। बुंदेली समाचार समाप्त है।
1: बुंदेली समाचार।
0: तो भैया बहनों, बुंदेली समाचारन के बाद आप सभी को पुनः स्वागत है। और जैसे कि आज शुक्रवार को हमारा कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत आपके बीच लेके हम उपस्थित हैं, और आज कार्यक्रम को पहलो पत्र हमें अपने फरमाइशी फिल्मी गीत के लाने भेजो है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने गीत की फरमाइश करी है, जो है फिल्म केदारनाथ से, और ये गाँव है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने सुनत है जो गीत।

तो भैया बहनों, एक मधुर से गीत के संग कार्यक्रम की शुरुआत भई है। और अब आप लोगों से जैसे हमने चर्चा करी है थी कि सीड नेट इंडिया, तो भैया बहनों आपको बता दें कि जब भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जावे वही अत्यंत महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो राष्ट्रीय ई गवर्नर्स को हिस्सा है, जिसे कृषि क्षेत्रों में बीज की उपलब्धता, किस्में, डीलर और DBT लाभार्थियों के प्रबंधन को सुगम बनाओ जात है। सीड नेट इंडिया को एक सरकारी पोर्टल है जी की कछु विशेषताएँ जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भैया बहनों आप लोगों को बता दें कि इसके माध्यम से बीजों की मांग, उत्पादन और उपलब्धता पर नज़र रखी जाती है। संगे संगे बीज से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को लाभ सीधे कृषकों के खाते में पहुंचे इसके लाने डेटाबेस तैयार करो जाते हैं। ये पोर्टल पर पंजीकृत बीज डीलरों और बीज की प्रामाणिकता को संपूर्ण विवरण उपलब्ध रहते कि आप जो बीज खरीद रहे हैं वे कितने प्रामाणिक हैं और कितने अच्छे हैं। और भी अधिक जानकारी हेतु आप ही पोर्टल पे जाके जानकारी ले सकते हैं। और इन योजनाओं के बारे में जब आपको बताओ जाते हैं तो हम तो जो ही कहेंगे कि इन योजनाओं के लाने आप अधिक से अधिक जानकारी लें और इनको लाभ उठाएं, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी योजनाएं हमारे कृषक भैया बहन के लाने अत्यंत लाभकारी होते हैं। तो देखो चर्चाएँ अपन करते रहे हैं और अब अगले गीत की हमें फरमाइश करी है कार्यक्रम में बकरी है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश, साक्षी मनन तानिया और संगे संगे ये गीत की फरमाइश करी है क्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम ने ये गीत की फरमाइश करी है जो है फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के से, और ये गाँव है बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल ने।

तो भैया बहनों, एक अच्छे से गीत के संगे अब अगलो पत्र हमें भेजो है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर ने संगे संगे ये गीत की फरमाइश करी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने ये गीत की फरमाइश करी है जो है फिल्म नील कमल से, और ये गाँव है मोहम्मद रफ़ी ने।

0: तुझको पुकारे मेरा प्यार।
1: और भैया बहनों अब आगे बढ़े और कार्यक्रम में अगला पत्र हमें भेजो है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा का, फिर श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति, माही, पूजा, छुटकी, शरद तथा पूरे माखीजा कुटुंब ने ये गीत की फरमाइश करी। और संगे संगे नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, इनने ये गीत की फरमाइश करी है जो है फिल्म वास्तव से, और ये गाओ है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने।

अच्छा बहनों, भैया बहनों, अब अगले गीत के लाने आगे बढ़े। आप लोगों को बता दें कि बरसात को मौसम है, तो ऐसे में अपने जो पशु हैं उनको भी खास ध्यान रखें। पशुओं के बाड़े को सूखो रखें, उनमें फट्टा बिछा दें, दीवारों से ऐसी पन्नी डाल दें ताकि उनके बाड़े में पानी ना आए। उनके जो बाड़े हैं जहाँ पशु खड़े होते हैं, उतने दवाइयों को छिड़काव करें जिसे मच्छर मक्खी ना हो, और ख़ास करके पशु पानी से बचे रहें, ऐसी व्यवस्था करें। तो देखो, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ें और अगलो पत्र हमें भेजो है कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली ने, और संगे संगे ये गीत की फरमाइश करी है। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि, श्रीमती शीतल राजेश ने गीत की।

तो भैया बहनों, ये गीत के संगे अब चलवे की बिरिया हो गई है और आशा है कि आज को कार्यक्रम आप लोगों को ज़रूर पसंद आ हुई है। तो ये चलती बिरिया आप सबसे विदा लें, आप सबको अमृता बहन की राम राम।

0: ये था कार्यक्रम ग्राम सभा। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत ज्ञानेश्वर मुले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
3: ज्ञानेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि 16वें भारत जापान शिखर सम्मेलन को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आप जापान में रह चुके हैं, तो क्या ये सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने का एक सम्मेलन रहा है, या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो बदलती हुई रणनीतियां हैं उनके लिए कोई संकेत है, या फिर आपको लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि इस मुलाकात से हासिल हुई है?
4: मैं समझता हूं कि हमारे जो रिश्ते हैं विदेशों के साथ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, सभी देशों के तुलना में जिस देश के साथ हमारे रिश्ते सबसे बड़ा महत्व रखते हैं मेरे ख्याल से, वो है जापान। जापान और भारत के रिश्ते की खूबी अगर कोई अगर है, तो इस रिश्ते में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो दोनों को खलता है या किसी तरह से नीचे खींचता है। ये आगे जाने वाला रिश्ता है। दूसरी बात यह है कि जो जापान की विद्यमान प्रधानमंत्री है वो पहली बार भारत आ रही है, और वो भी जापान की पहली प्रधानमंत्री है, वो तो वो भी एक अपनी विशेषता रखती है। और 16वां जो शिखर वार्तालाप है ये रिश्ते को दिखाता है कि कितने उच्च स्तरीय बैठकें होती है और उसको कितना इस रिश्ते का महत्व है। सिर्फ प्रशांत महासागर ही नहीं, दुनिया में जहां जहां अलग अलग तरीके से इसको हम हॉटस्पॉट बोलते हैं उनके बारे में भी जिक्र आया है। प्रशांत महासागर के लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि हाल ही में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, अमेरिका ने इसको इंडो पैसिफिक के बजाय यूएस पैसिफिक कहना शुरू कर दिया, और हालांकि बहुत राजनयिक प्रयत्नों के बाद इंडो पैसिफिक ये बात जो है रिकॉग्नाइज होती आई है पिछले कुछ एक दो दशकों में। तो ये प्रशांत महासागर जो है हमारे लिए सभी तरह से महत्वपूर्ण है। वहाँ बहुत सारे संसाधन हैं, वहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण देश हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते हैं, और एक दुनिया का महत्वपूर्ण जो रिसोर्स बोलते हैं, सागरी रिसोर्स।
3: भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जापान के संबंध वास्तव में बेहद विशेष हैं।
5: हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है। हमें बहुत खुशी है कि कावासाकी, यामाहा और होंडा की बाइक्स भी भारत में आज विश्व भर में एक्सपोर्ट होती है। इसी तरह एयर कंडीशनर हो या पावर ग्रिड इक्विपमेंट, प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग हो या मेडिकल टेक्नोलॉजी, जब जापान की एक्सपर्टीज और इन्वेस्टमेंट भारत के स्पीड और स्केल के साथ जुड़ती है तो पूरी दुनिया को फायदा होता है।
3: दोनों प्रधानमंत्रियों की मीटिंग के बाद जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया उसमें रक्षा, आर्थिक सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को आपसी रिश्ते के तीन बड़े स्तंभ के रूप में बताया गया है, तो आपको लगता है कि भारत और जापान के जो संबंध है एक नए रणनीतिक स्तर पर पहुंच चुके हैं?
4: ये रिश्ता स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये रिश्ता ऑलरेडी उस ऊंचाई तक पहुंच गया है। अब दोनों देशों की ये महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि इसको और आगे कैसे बढ़ाए और मजबूत कैसे बनाए और इसके आयाम जो है वो किस तरह से बढ़ाए, ये अभी विषय है। इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात है, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की बात तो है ही है, इसके साथ ऊर्जा की सिक्योरिटी की बात है, इसमें AI से लेकर कोलैबोरेशन की बात है, रेयर अर्थ और प्रेशियस मटेरियल जो होता है उसके बारे में, जैसे बैटरी का बड़े पैमाने पे दोनों देशों में निर्माण होने के लिए प्रयत्न है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी चर्चा है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रशांत महासागर में शांति प्रस्थापित हो ये तो भारत का है ही महत्वपूर्ण उद्देश्य। उसके साथ साथ अन्य मामलों पे भी बहुत अच्छी चर्चा हुई है, जिसका प्रतिबिंब जो है हम लोग इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में देख सकते हैं, जो कि 10 पन्नों तक चला जाता है।
3: अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया तमाम चीजों का, तो सेमीकंडक्टर का भी

0: काफी बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया, हाई टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करने की बात है, साइंस या फिर स्पेस की हम बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लिपिक्स टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मिशन की कई सारी चीजों में बात कर रहे हैं। तो ये भविष्य की कूटनीति और विज्ञान को मिला जुला करके दोनों देश आपसी संबंधों को आगे ले जा रहे हैं।
1: बिल्कुल ले जा रहे हैं कि हमारा जैसे व्यापार है, व्यापार के बारे में चर्चा ये हुई है कि भारत से निर्यात जापान बढ़नी चाहिए। आज के दिन में जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं वो जापान के फेवर में बड़े पैमाने पे है। भारत की निर्यात जो है वो करीबन 6 बिलियन के आसपास है और कुल मिलकर जो 27 बिलियन डॉलर ट्रेड है उसमें 5 बिलियन बहुत कम लगता है, इसलिए इसके बारे में कोशिश की जाएगी। करीबन 10 ट्रिलियन जापानीज एन की इन्वेस्टमेंट में आ रही है, इसमें रेलवे का भी जिक्र है, इसमें नए नए उद्योगों का जिक्र है, बड़े पैमाने पे सुमितोमो ने भारत में इन्वेस्ट करने का निर्णय ले लिया है। तो इस तरह से एक कमी ढूंढने की मुश्किल लगती है इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट में, इतना सारा इसका आयाम जो है विशाल है, दोनों देश के बीच में संबंधों को दर्शाता है।
0: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा कि जापान और भारत को अपनी अपनी ताकत का पूरा लाभ उठाते हुए साथ मिलकर और अधिक सशक्त तथा समृद्ध बनना चाहिए।
2: We confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. The following points at the center of our cooperation. First, to deepen the strategic cooperation between Japan and India. Our two countries share the vision on the profile of international order we should establish under the current international situation.
0: आपने ट्रेन की बात की तो मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन परियोजना है इसका भी जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है भारत के लिहाज से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जापान ने इसमें बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी दिखाई है, निवेश भी किया है। तो ये परियोजना जो है एक तरह से कह सकते हैं भारत और जापान की साझेदारी की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रतीक बन चुकी है। व्यापक अहमियत अगर हम देखें इकोनॉमिक दृष्टि से तो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट होगा? ये
1: बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, जैसा कि मैंने कहा व्यापार की चर्चा हुई है, निवेश की चर्चा, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की चर्चा हुई है, बैटरी और अन्य उत्पादों के प्रोडक्ट्स की बात हुई है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जितनी चीजें जरूरत है उन सब के बारे में चर्चा हुई, AI के बारे में कोलैबोरेशन का जिक्र है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर आर्थिक जो नीतियाँ हैं, वित्तीय नीतियाँ हैं, उसके बारे में काफी प्रगति इसमें हो चुकी है और जापान ने कमिटमेंट दिया है कि वो बड़े पैमाने पे भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा।
0: और उसमें एक चीज ये भी देखने में आई है कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के कई अहम फैसले हुए हैं और इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का जिक्र किया गया, क्लीन अमोनिया की बात हुई, बायोगैस क्षेत्र की नई साझेदारी शुरू करने की बात हुई है। भविष्य की ऊर्जा को लेकर के भारत के अपने एजेंडा है, भारत ने बहुत कुछ सोच रखा है कि हमें कितना ज्यादा करना, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने पर लगातार बात होती है। तो आपको लगता है कि ये जो नई चीजें शुरू हो रही भारत और जापान के बीच में, तो इससे हमारे जो अपने गोल्स हमने डिसाइड किए हैं भारत ने, उसमें उन्हें प्राप्त करने में बड़ी भूमिका होगी?
1: बिल्कुल, जैसे हमारे लिए हॉर्मुज का जो कन्फ्लिक्ट रहा है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हमारे देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा के लिए, उसी तरह से बिल्कुल जापान भी ऊर्जा के लिए बहुत निर्भर है। तो दोनों देशों ने जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने के लिए कदम उठाने का इसमें जिक्र किया है। ये मैं समझता हूँ कि ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास रहेगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी चर्चा हुई है कि किस तरह से यूक्रेन में शांति प्रस्थापित होना जरूरी है, किस तरह से कोई एक देश खुद के टर्म पे ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। गाजा जो है पैलेस्टीनियंस और इसराइल का जो वहां मुद्दा उठा है उसके पुनर्स्थापन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, रिडेवलपमेंट के लिए चर्चा हुई है। और ये मैं समझता हूँ कि भारत जापान के संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत आगे ले जाएगा। संयुक्त राष्ट्र परिषद में, सुरक्षा परिषद में भारत और जापान जो है सदस्य रूप में आना चाहिए, इसके ऊपर भी सहमति पहले ही हो चुकी है, उसके ऊपर दोबारा एक बार स्टैंपिंग जो है मैं कहता हूँ इस बैठक में हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि कुल मिलकर ये बहुत सफल यात्रा रही है।
0: भारत और जापान कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी बात रखते हैं, क्वाड की हम बात करें, आसियान का जिक्र करें या फिर बिम्स्टेक जैसे मंचों का उल्लेख करें, ऐसे स्टेटमेंट हमारे सामने आते हैं जहां पर दोनों देश मिल करके बहुत ही स्पष्ट नीति के साथ में काम करना चाहते हैं। तो जो नई रणनीतिक व्यवस्थाएं वर्तमान समय में बनी हुई हैं उनको देख करके भविष्य को कैसे देखते हैं?
1: भारत और जापान मुझे लगता है कि दुनिया की जो डेस्टिनी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वाले हैं और उसकी नींव जो है भविष्य की आगे आने वाले दशकों की तैयारी जो है इसमें ये डॉक्यूमेंट जो है ज्वाइंट स्टेटमेंट दर्शाता है किस तरह से दो देशों के बीच संबंध होने चाहिए और किस तरह से उनको विश्व में शांति

0: समृद्धि लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।
1: भारत के आंतरिक हिस्सों की अगर हम देखते हैं तो जापान का बहुत ज्यादा उत्साह रहता है पूर्वोत्तर भारत में निवेश करने का। हालांकि ये हमारे लिए क्षेत्रीय विकास की बात है, लेकिन भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जापान की क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं?
0: देखिए, जापान दूसरे विश्व युद्ध में हमारे पूर्वोत्तर तक पहुंच गया था, जैसे अंडमान निकोबार में पहुंच गए थे उसी तरह से। तो जापान अच्छे से इससे एक उनका कनेक्ट है, इमोशनल कनेक्ट है उस इलाके से। दूसरा जो है कि उनकी ये सोच है कि जहाँ विकास कम है वहाँ जाके हम विकास के कार्यों में सहभाग दे। तो जापान का पूर्वोत्तर में रुचि लेना जो है भारत के लिए भी बहुत सहायक है। वहाँ से बड़े पैमाने पे जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी की ट्रेंड, मैन पावर जो है बहुत बड़े पैमाने से पूर्वोत्तर के राज्यों से जापान आज के दिन में जा रही है, और ये बहुत ही स्वागत करने वाली बात है।
1: संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और दोनों देशों ने कड़े शब्दों में आतंकवाद की निंदा भी की है। तो जापान का इतना खुलकर भारत के पक्ष में आना, इसे भारत के दृष्टिकोण से कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं, और वैश्विक स्तर पर इसके क्या असर होंगे, क्या मायने होंगे?
0: जापान और भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहे हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन ने दिया है, और चीन और जापान के रिश्ते जो है वो भी काफी संघर्ष वाले रिश्ते रहे हैं, बहुत नकारात्मक रिश्ते रहे हैं भूतकाल में भी, और आज भी उसमें काफी संघर्ष के मुद्दे हैं। तो इसलिए भारत और जापान की जहां तक बात है, एक कन्वर्जेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, दोनों के हित संबंध जो है, इंटरेस्ट जो है वो एक इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए जापान भी और भारत भी आतंकवाद को लेकर बहुत मजबूती से विरोध करते हैं उसका।
1: ज्ञानेश्वर जी, अक्सर जब इस तरह के समझौतों की या स्टेटमेंट पर हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि लोगों के बीच संपर्क, खासतौर पे दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके बीच संपर्क हो, उनकी बातचीत, जापान की भाषा हो, पर्यटन हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, इस पर जोर देने का लगातार जिक्र होता है। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट का जो एक थॉट है उसको लेकर के जापान का हमारे प्रति दृष्टिकोण, हमारा जापान के प्रति दृष्टिकोण, दोनों में आपको क्या लगता है कि कितना महत्वपूर्ण है?
0: 7वीं शताब्दी में पहला बुद्ध मंदिर जो है जापान में प्रस्थापित हो चुका था, और ये बौद्ध धर्म जो है यहाँ से चीन होके, तिब्बत चीन और कोरिया होके जापान चला गया। उसके अलावा जो है गांधी और नेहरू के विचारों का जापान में बहुत प्रभाव शुरू के सालों में था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान की जिम्मेदारी तय करने की बात आई तो भारत के राधा विनोद पाल जज थे, उन्होंने ये कहा कि हारने वाले राष्ट्र पर आप अपना जो है शर्तें लाद नहीं सकते हो। ये बहुत बड़ी बात थी उस जापान के लिए। बुद्धिज्म के अलावा बोनसाई हो या अन्य कलाएं हो, सुमिए हो, जहाँ पर जापान भारत के कवियों पर हाइकू का बड़ा प्रभाव है, तो ये सब चीजें जो है, एनिमेशन जो है बच्चों के लिए बहुत लोकप्रिय है। तो इस तरह से आदान प्रदान जो रहा है वो सदियों का रहा है सांस्कृतिक संबंधों का। मुझे लगता है कि इस तरह के जब राजनयिक रिश्ते अच्छे हो जाते हैं उसका असर सहज अन्य आयामों पर भी हो जाता है।
1: ज्ञानेश्वर जी, भारत लगातार अपने महासागर, पहले जो सागर था उसे महासागर में चेंज किया गया, उस विजन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। वहीं जापान की अगर बात हम समझे तो वो उनका कहना है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की हम बात करेंगे। तो आपको लगता है कि ये जो दोनों पहल दोनों देशों की तरफ से हो रही है पूरे क्षेत्र में, ये एक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से मजबूत करेंगे? और अगर चीन को लेकर के इसे हम समझें तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर?
0: बहुत जरूरी है कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है विश्व में अलग अलग तरीके से, सिर्फ राजनयिक नहीं, वो तो मिलिट्री भी है, इकोनॉमिक पावर भी है, और अलग अलग तरीके से वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे में संतुलन बनाने के लिए भारत और जापान का एक साथ आना बहुत जरूरी था, और इस जो शिखर वार्ता के समय इस पे मुहर लग चुकी है कि हम जो है एक दूसरे के साथ रहेंगे और इकट्ठे जो है इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव बना के रखें।
1: ज्ञानेश्वर जी, अगर हम इस पूरे संयुक्त वक्तव्य को देखें, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा को देखें, ऐसे समय में जब वैश्विक हालात काफी उथल पुथल हो रखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही है ऐसा एजेंडा हमारा, या फिर भारत जापान संबंधों को और भी लंबा ले जाने के लिए खासतौर पर एक दशक की रणनीतिक रूपरेखा को यह तय करेगा?
0: मेरे ख्याल से ये हर साल प्रधानमंत्री के स्तर पर शिखर वार्ता होती है, इसका अर्थ ही यही है कि हम एक दूसरे के बहुत करीब है। इस तरह से द्विपक्षीय वार्तालाप हर साल होना ये अपने आप में बहुत विशेष बात है।
1: ज्ञानेश्वर जी, आपने इस चर्चा में तमाम प्रश्नों का उत्तर दिया, जिज्ञासाओं का समाधान किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत जापान रणनीतिक साझेदारी के विस्तार और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत

0: दानेश्वर मुले, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: सुर्खियों में
2: ये था कार्यक्रम सुर्खियों में।

सर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी कुमार सानू की, गीतकार थे अनु मलिक। और फिल्म संगीत के लिए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दिल तो पागल है इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, उदित नारायण की, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत था उत्तम सिंह का।

थ्री इडियट इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी सोनू निगम, श्रेया घोषाल की। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे और संगीत था शांतनी मोइत्रा का।

अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज़ में अभी आपने ताल फिल्म का गीत सुना, जिसके लिए गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था ए आर रहमान का।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक

0: युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित

0: क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल को फरोग देने वाले इंस्टाग्राम एड से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़श्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकिफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जामे बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफिका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा लिया जाता है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $440 बिलियन से तकरीबन $530 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामिया नुक्ता नजर पर मबनी है, जिसमें हर रियासत, जिला और तिजारती हलका को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रूस से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। जनाब टंडन ने कहा कि दौरे के दूसरे मरहले में वो इस महीने की 8 से 10 तारीख तक ऑस्ट्रेलिया में होंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मेलबर्न पहुंचेंगे, जहां वो तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस महीने की 10 से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे। मशरकी उमूर के सेक्रेटरी ने कहा कि न्यूजीलैंड का उनका दौरा 40 वर्षों में किसी भारतीय वजीर आजम का पहला दौरा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात का दौरा करेंगे। राजस्थान के दौरे में वजीर आजम जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे और नजर सानी शुदा उड़ान स्कीम का भी आगाज करेंगे। इसके बाद वो राजस्थान के बालोतरा जाएंगे, जहां वो तकरीबन 1.06 लाख करोड़ रुपए की मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। कल गुजरात के दौरे के दौरान भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के जिम्न में एक अहम इकदाम में वजीर आजम सनांद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर के कल पुर्जों की तरतीब और तजुर्बाती मरकज ओएसएटी का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर शुदा इब्तदाई 4 प्रोजेक्टों में शामिल हैं, जिन पर 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमाया की गई है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सहाफत को सच्चाई, दयानतदारी और आला तरीन पेशावराना मेयारात के मुताबिक काम करना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर्स वीकली के 80वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि जमहूरियत उस वक्त परवान चढ़ती है जब प्रेस अपनी साख बरकरार रखते हुए अवाम

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपी। श्रोता, मार्शल आर्ट की एक ऐसी विधा जो लगभग 200 से ज्यादा देशों में प्रचलित है एवं खेली जाती है। इसमें दो खिलाड़ी आपस में एक दूसरे पर न सिर्फ प्रहार करते हैं बल्कि स्वयं की आत्मरक्षा भी कर अपनी क्षमता का परिचय देते हैं। इस खेल में एकाग्रता में कुशल होने के साथ साथ फिटनेस, मुकाबला दर्शन और आत्मरक्षा की समझ होना भी बेहद आवश्यक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारंपरिक कोरियाई मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की, जो भारत में काफी लोकप्रिय है और इसको खेलने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा है। ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय खेलों के

साथ फिटनेस, मुकाबला दर्शन और आत्मरक्षा की समझ होना भी बेहद आवश्यक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पारंपरिक कोरियाई मार्शल आर्ट ताइक्वांडो की, जो भारत में काफी लोकप्रिय है और इसको खेलने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा है। ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर बातचीत के लिए हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता एवं वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके डॉक्टर आलोक मिश्रा को।

0: आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: आलोक जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ताइक्वांडो के बारे में। ताइक्वांडो क्या है और इसे किस तरह से खेला जाता है?
1: ताइक्वांडो मार्शल आर्ट की एक विधा है जो कोरिया से प्रारंभ हुई।
0: जी,
1: ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज हैं, वहीं मार्शल कलाओं का उद्भव और विकास हुआ है। और मूल रूप से ताइक्वांडो कोरियन कराटे से बोलते थे और कोरिया से ये फैली, तो ये कोरियन मार्शल आर्ट है। ये अन्य मार्शल आर्ट की तरह है लेकिन इसमें पैरों का उपयोग ज्यादा किया जाता है और ये एक स्पीड बेस्ड खेल है।
0: जी, और जैसे अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें तो मार्शल आर्ट में कौन कौन सी खेल खेले जाते हैं और उनमें क्या भिन्नताएं होती है?
1: मार्शल कलाएं का उद्भव आत्मरक्षा के लिए हुआ और जैसा कि हमने इसका इतिहास में देखा है कि इसकी जड़ें भारत से ही आगे की तरफ बढ़ी हैं। एक बौद्ध धर्मा हुए जो भारत से बौद्ध भिक्षु आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने चाइना से लेके फिर चाइना, जापान, कोरिया, अब ये नॉर्थ ईस्ट की कंट्रीज में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये आत्मरक्षा की एक कला विकसित थी जिसे स्थानीय जो कलाएं थी उनके अनुरूप ढाल करके एक नया नाम दिया गया।
0: जी।
1: और जो अति लोकप्रिय है विश्व में उसमें जूडो है, कराटे, ताइक्वांडो, कुंगफू और भारत की कल्लरी पट्टू
0: जी
1: अति लोकप्रिय है।
0: जी जी जी।
1: जो केरल में खेली जाती है। और हम मार्शल कलाओं की जड़ों का इतिहास वहीं केरल से ही प्रारंभ करते हैं, उसी कल्लरी पट्टू से। और मार्शल कलाएं एक कला थी, एक अभ्यास के लिए थी, शारीरिक और आत्मिक उन्नति के लिए इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन प्रायः कई मार्शल कलाएं लुप्त प्राय होने लगी तो उन्हें प्रतियोगिताओं में परिवर्तित किया गया, उन्हें ऐसे खेलों के रूप में ढाला गया।
0: जी जी जी जी जी। अगर हम बात करें तकनीक की तो इसमें किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इस खेल के नियम क्या है?
1: मार्शल कलाओं में जितने भी द्वंद्वात्मक खेल हैं
0: जी
1: उनमें हम जानते हैं कि भार वर्ग के अनुसार कंपटीशन होता है, आयु वर्ग के अनुसार होता है और भाई वर्ग के अनुसार होता है, ताकि समान की समान के साथ प्रतियोगिता हो।
0: बिल्कुल।
1: तो ताइक्वांडो में जैसे कि मैंने बोला मार्शल कलाएं आत्मरक्षा की कला है और ये आत्मरक्षा के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण अंग है जिनका उपयोग करता है मनुष्य। एक हाथ हो गए हमारे दोनों और एक ये दोनों पैर हो गए।
0: जी।
1: सारी कलाओं में इन्हीं का उपयोग किस तरह किया जाता है इसी से आगे फैली। और ताइक्वांडो विशेषकर ये पैरों की कला है, इसे तीन कोरियन वर्ड से मिलकर बना है, ताई क्वान डो, किक, पंच और आर्ट। इट इज द आर्ट ऑफ किक एंड पंच, हाथ और पैर चलाने की कला है ये। और इसमें विशेषकर पैरों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है क्योंकि पैरों की लेंथ ज्यादा है, उसका मास ज्यादा है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। बाकियों से इसमें जो मुख्य प्रमुख चीज है वह है स्पीड और पावर।
0: जी।
1: इसमें रिएक्शन फोर्स है, कंसंट्रेशन है, बैलेंस है, ब्रीथ कंट्रोल है और मास का यूज है।
0: जी।
1: इसमें हम अपोनेंट की अटैक और डिफेंस की बजाय हर अटैक का एक डिफेंस करते हैं।
0: जी।
1: और जैसा पैरों का उपयोग है, अगर पैरों को ऊपर की तरफ मारा तो उसके ज्यादा अंक हैं, टर्न करके मारा तो उसके ज्यादा अंक हैं, स्टमक पे पेट पे मारा तो कम अंक हैं, और कमर के नीचे फाउल है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इसमें पॉइंट डिडक्ट होते हैं।
0: जी। और ये कितने मिनट का गेम होता है?
1: ये दो दो मिनट के राउंड होते हैं।
0: जी। अब आलोक जी, हम आपसे ये ताइक्वांडो की रैंक के बारे में जानना चाहेंगे। ताइक्वांडो की रैंक के हिसाब से बेल्ट का कलर निर्धारित किया गया है, इसके बारे में आप हमें बताएं।
1: मार्शल कलाओं में बेल्ट का बड़ा महत्व है और ऐसे ही ताइक्वांडो में भी बेल्ट, हम देखते हैं कि ज्यादातर मार्शल कलाओं की ड्रेस जो है वो व्हाइट रहती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जैसा कि पहला इसी का सिंबल है कि व्हाइट मतलब पीस,
0: पीस,
1: और पहली बेल्ट जो वो पहन के आता है वो व्हाइट बेल्ट पहन के आता है, यानी कोरा कागज है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है तो इसे प्लांट के साथ रिलेट किया गया कि कोई प्लांट जब ग्रो करता है तो वो जब उसकी पत्तियां निकलती वो येलो रहती पीली, तो दूसरी बेल्ट हुई पीली, तीसरी हुई हरी, वो जो पत्तियां हैं जब थोड़ा और मैच्योर होती हैं तो वो हरा रंग लेती हैं, उसके बाद नीला, ब्लू बेल्ट, क्योंकि वो जो पेड़ है वो जो ग्रो कर रहा है टूवर्ड्स

0: स्काई और आसमान का कलर नीला है, तो नीला, फिर उसके बाद लाल, लाल मतलब ये काफी सीख चुका है द डेंजर, और आखिरी में ब्लैक, मार्शल आर्ट का चैंपियन हो गया,
1: बिल्कुल
0: मतलब वो कला में माहिर हो चुका है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसे ब्लैक बेल्ट, उसमें सारे कलर समाहित हो गए। तो ये शांति से प्रतीक होके आदमी की ग्रो की कला है, और जितना ही आप अभ्यास से इस कला में महारत हासिल करते जाते हैं उतनी ही शालीनता और विनम्रता आप ओढ़ते जाते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक रैंक से दूसरे रैंक में खिलाड़ी कैसे प्रवेश पाता है और ब्लैक बेल्ट पाने में लगभग कितना समय लग जाता है?
0: दो तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं, एक जैसे कि फाइट होती है जो पॉइंट के आधार पे होती है, दूसरा कि सभी मार्शल कलाएं, क्योंकि ये कला है इसमें अटैक और डिफेंस का एक सीक्वेंस है, एक्सरसाइजेस हैं, तो इन अटैक और डिफेंस के एक्सरसाइजेस के एक सीक्वेंस को बनाकर, जैसे कराटे में काता कहते हैं और ताइक्वांडो में पूमसे कहते हैं, ये अटैक और डिफेंस का सभी दिशाओं में कॉम्बिनेशन है, इसे करने का एक अभ्यास की कला है ये, कि एक पूमसे आप पूरा करते हैं तो उसमें आपकी स्पीड है, स्पीड कंट्रोल है, पावर कंट्रोल है, बैलेंस है, एक्यूरेसी है, ये अपने आप एक कंप्लीट एक्सरसाइज होती है पूमसे। जैसे हमारे सूर्य नमस्कार की कला है कि वो कई व्यायामों की एक श्रृंखला है, ऐसे ही पूमसे एक पूरे एक व्यायाम की श्रृंखला है, तो एक इसका भी एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, और ये एक पूमसे या काता अगर कंप्लीटली एक व्यक्ति कर रहा है तो ये पूर्ण एक्सरसाइज हो गई ब्रीदिंग के इसमें उपयोग के साथ।
1: सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ताइक्वांडो खेलते वक्त किन चीजों की आवश्यकता होती है और जो पोशाक पहनी जाती है इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: महत्वपूर्ण है क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स है, द्वंद्वात्मक खेल है, इसमें चोट लगने की संभावनाएं हैं, तो जितने प्रोटेक्टिव गार्ड्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। खिलाड़ी चेस्ट गार्ड पहनते हैं, हेड गार्ड पहनते हैं, माउथ टीथ के लिए भी गम गार्ड शील लगाते हैं
1: जी,
0: और अपनी शिन के लिए भी प्रोटेक्टिव गार्ड लगाते हैं, और जैसे ड्रेस की बात मैंने आपसे कही कि सफेद ड्रेस पहनते हैं और रैंक के लिए वो अपनी बेल्ट पहनते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर बात करें ताइक्वांडो की तो वर्तमान में भारत की स्थिति क्या है?
0: ताइक्वांडो की भारत में पिछले कई दशकों से काफी आगे प्रगति हुई है, इसमें मध्य प्रदेश की भी ताइक्वांडो बहुत आगे की तरफ बढ़ा है। लतिका भंडारी से लेके कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और थोड़ा ऊपर नीचे प्रदर्शनों में होता रहता है, लेकिन पिछले दशकों के मुकाबले अभी वर्तमान स्थिति में ताइक्वांडो खेल प्रदेश में भी आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इसने बहुत बेहतरीन खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए हैं।
1: अब आलोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सेल्फ डिफेंस के लिए कितना कारगर है ताइक्वांडो, खासकर महिलाओं के लिए?
0: जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो शुरू में हम उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, स्किल को छोटे छोटे भागों में सीखते हैं, और उसी भागों को जब जोड़ते हैं तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्किल हम सीख जाते हैं अभ्यास के द्वारा। स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट एंड प्रैक्टिस द इजीएस्ट से शुरू करते हैं, तो शुरू में जब हम कोई कौशल सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस कम रहता है, उसका कारण ये रहता है कि उसमें हमारी महारत नहीं है, हम उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते। जैसे जैसे अभ्यास के द्वारा एग्जीक्यूशन आने लगता है तो कॉन्फिडेंस आने लगता है,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम अटैक और डिफेंस की प्रक्रिया को सीख रहे हैं, तो स्पेशली जब कोई लड़की कोई महिला इसके सीखती है तो इंटरनली वो फील करती है कि उसने इस कौशलों को अब आत्मसात कर लिया है, आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सकता है, यह उसके आत्मशक्ति को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है। केवल किसी का हौसला इसलिए नहीं बढ़ा दिया जाएगा कि कुछ बातें और मोटिवेशनल स्पीच दे दी जाए, जब वो किसी चीज को करेगा और करके गुजरेगा और जब स्किल अटैक और डिफेंस की सीख लेगा तो कॉन्फिडेंट फील करेगा, और कॉन्फिडेंस का फिजिकल से ज्यादा मेंटल रिलेशन है,
1: बिल्कुल,
0: मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है,
1: तो
0: और यह अभ्यास उसे शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाने के साथ ही कहीं ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत बनाता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात की आपने। अब कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो ताइक्वांडो में अपना करियर बनाना चाहते हैं?
0: ताइक्वांडो में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो अपना अभ्यास रखें और अभ्यास के साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान रखें।
1: जी,
0: शारीरिक शिक्षा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पाठ्यक्रमों से भी जुड़े रहें
1: जी,
0: और साथ में अपना अभ्यास जारी रखें, क्योंकि अभ्यास के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। खिलाड़ी के लिए वो सारी सुविधाएं, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो शोहरत से संबंधित हो, नेम फेम सारी चीजें हैं अगर आप टॉप लेवल तक पहुंचते हैं और देश और प्रदेश का नाम रोशन करते हैं।
1: बिल्कुल, आलोक जी आप हमारे स्टूडियोज में आए और इतनी अच्छी बात आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत, होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
3: 19 मई 2000

0: व्यासोला को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
1: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
2: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
3: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
0: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
4: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

अभी आप खेल जगत में सुन रहे थे भेंट वार्ता, जिसका विषय था ताइक्वांडो की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं। विशेषज्ञ थे आलोक मिश्रा, भेंटकर्ता था मनीष गजभिये।

धर्मात्मा फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी मुकेश कंचन की, गीतकार थे इंदीवर और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सोहनी महिवाल से।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।
1: यह आकाशवाणी है, प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
1: श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त

0: सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे है। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुनि जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूड़ियाटम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा प्रतिष्ठित केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में वे मूलिकुलम स्थित नेपथ्य कूड़ियाटम केंद्र के कलात्मक निदेशक के रूप में कार्यरत है।
1: श्री मार्गी मधु इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कूड़ियाटम, द एंशिएंट सांस्कृत थिएटर ट्रेडिशन ऑफ केरला, रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। Born on 19 May 1966, he is a son and disciple of Padma Shri Moorikulam Kochukuttan Chakyar and nephew and disciple of the legendary Padma Bhushan Ammanur Madhava Chakyar. Trained under eminent masters including Ammanur Madhava Chakyar, Moorikulam Kochukuttan Chakyar, P.K. Narayanan Nambiar and M. Madhavanunni, he completed traditional Gurukula training. He has served for nearly 3 decades as lecturer and assistant professor in the Department of Theatre at Sri Shankaracharya University of Sanskrit. He has also served as guest faculty at the National School of Drama and Film and Television Institute of India. His contributions have been recognized with numerous honors, including the Sanskriti National Award, Kerala Kalamandalam Award, Kerala Sangeet Nadaga Academy Award, and the prestigious Sangeet Nadaga Academy Award. He currently serves as Artistic Director of Moorikulam Nepathya Koodiyattam Center.
0: Margi Madhu Dwara Prastut Chakyar Kutka Katha Sandarbh Is Prakar Hai. Kiratam, Rajanakar Melpatur Narayana Bhattadiri. Katha Sandarbh, दिव्य पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए पांडवों में अर्जुन भगवान शिव की कठोर तपस्या और आराधना करते हैं। अर्जुन के अहंकार का नाश करने के उद्देश्य से भगवान शिव किरात का वेश धारण कर उनके सामने प्रकट होते हैं। उसी समय अर्जुन का वध करने के लिए मूकासुर जंगली सुअर का रूप धारण करके आता है। अर्जुन और किरात रूपधारी भगवान शिव दोनों उसके ऊपर बाण चलाते हैं और उसका वध कर देते हैं। इसके बाद यह विवाद उत्पन्न होता है कि सुअर को किसने मारा। इसी विवाद के परिणाम स्वरूप अर्जुन और भगवान शिव के बीच युद्ध होता है।
1: We shall now present the story background of the Chakyar Kuta performed by Shri Margi Madhu. Kiratam, author Melpatur Narayana Bhattadiri. Story context. In order to obtain the divine Pashupatastra, Arjuna performs intense penance and worships Lord Shiva. To rid Arjuna of his pride, Lord Shiva appears before him in the guise of a Kirata. At that time, the demon Mukasura, who has assumed the form of a wild boar, approaches to kill Arjuna. Both Arjuna and the hunter shoot the boar and kill it. A dispute then arises over who slew the animal, leading to a fierce battle between Arjuna and Lord Shiva in disguise.

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार्कूत सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यार्कूत प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी त्रिशूर।
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं। श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger, and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani, a gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions. Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet prastut kar rahe hai. इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: टुनाइट श्री अमल एंटनी प्रेजेंट्स फोर लाइट वोकल सॉन्ग्स। द लिरिक्स ऑफ ऑल सॉन्ग्स हैव बीन रिटन बाय Shri Rafiq Ahmed, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T.S. Radhakrishnan, a noted music director who

0: मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yawning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes, and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: वृश्चिक मास की शीतल प्रभात में जब प्रकृति नवजीवन का श्रृंगार धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: In the cool freshness of a Vrishika dawn, as nature adorns itself with new life, butterflies fluttering from flower to flower weave dreams of many colors. They inspire us, too, to dream and to embrace the beauty of imagination.

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक You were listening to a presentation of Malayalam Light Songs by Sri Amal Antony. The songs have been written by Sri Rafiq Ahmed and composed by Sri T.S. Radhakrishnan. He was accompanied by Sri Wilson K.X. on keyboard, Sri Babu Varghese on rhythm pad, Sri C.N.K. Murthy on flute, and Sri C. Sri Kumar on tabla. With this, We come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station
2: of Akashwani Samachar Seva ke saath main Aparna Singh. भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
3: India's development assistance.
4: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
2: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जाँच जारी है और सरकार इस पर लगातार नज़र बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।